श्रोताओं, आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 मई सन 2026 सुबह के 5:53 और 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे 6:05 पर कार्यक्रम सुप्रभात रविंद्र सिंह के साथ।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आप ये कार्यक्रम सुनेंगे 7:05 पर। सोनू भट्ट आपके साथ रहेंगी और इसके बाद आप सुनेंगे 10:05 पर ज्योति अहलावत के साथ वेस्टर्न म्यूजिक। 11:05 पर कार्यक्रम होगा बॉलीवुड ट्रेल्स और वेस्टर्न म्यूजिक आप सुन सकते हैं ज्योति अहलावत के साथ। 12:05 पर, 1:05 पर आप सुनेंगे रेनबो हेल्पलाइन बबीता त्रिपाठी के साथ।

कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर आप सुन सकते हैं 3 बजे, सृजन राजपूत की पेशकश रहेगी, और इसके बाद 4:05 पर स्वाति गुप्ता लाएंगी अल्फा जेल, और सिटी लाइट कार्यक्रम होगा 5:05 पर। मैसेज मसाला मिक्स 6:05 पर आप सुन सकते हैं नीरजा चतुर्वेदी के साथ, और वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम होगा 7:05 पर सुहासिनी, ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगी, और 9 बजे आप सुनेंगे आपकी याद आती रही रेखा चौधरी के साथ, रंगी महफिल कार्यक्रम होगा 11:05 पर। तो श्रोताओं, ये थी एक झलक हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। आप सुन रहे 102.6 मेगाहर्ट्ज पर FM रेनबो। स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 6 बजने जा रहा है, कुछ ही पलों में अब आप समाचार सुनेंगे, बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन

और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार जी दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है एफएम रेनबो के सभी प्यारे श्रोताओं का। कार्यक्रम है सुप्रभात और मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र सिंह। भाई हमेशा की तरह जिंदगी से जुड़ा एक विषय आपके साथ साझा करता हूं। आज भी कुछ ऐसा ही करने जा रहा हूं। आज का विषय है मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही। अब भाई ये अधूरा है तो इसे पूरा कर देते हैं। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, पर गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। और हम तो देखिए घर से निकल आए हैं, हैं? और अगर हम भी अपने घर बैठे रहते तो हमारी आवाज और हमारी ये थीम आप तक कैसे भला पहुंच पाती। वैसे आप अपनी मंजिल पाने को क्या क्या करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी आप कितना रास्ता तय कर चुके हैं ये जरूर बताइएगा, है ना। फिलहाल तो सुबह हो गई, चादर अगर तान कर अभी भी लेटे हैं तो उठ जाइए, क्योंकि ये गीत कह रहा है सुबह हो गई मामू। और ये गीत होते भी इसीलिए हैं, आपको उठाने के लिए, आपको जगाने के लिए, और थोड़ी बहुत जो सुस्ती बची है ना आपके अंदर, भैया हटाओ उसको, जाना है बहुत आगे।

तो भाई सुबह हो गई, उठ जाइए। हम तो उठ चुके हैं भाई, हम यहाँ आ चुके हैं आपसे बात करें, और बात ही हो रही है दिल से दिल टक कर। यही इस प्रोग्राम की खूबसूरती है कि भाई जब हम आपसे मिलते हैं तो कुछ ना कुछ बात करने के लिए, ताकि आपका एक विचार मेरे विचार के साथ मिल जाए तो हमारे पास दो विचार हो जाए। कहते हैं ना कि वो अगर हम पैसे पर टिके हैं और एक रुपया हमारे पास है, एक रुपया आपके पास है, एक रुपये का आदान प्रदान हम एक दूसरे के साथ करते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है? एक रुपया बचता है। और अगर हम एक विचार आपके एक विचार के साथ साझा करते हैं तो हमारे पास दो विचार होते हैं, है ना? यही तो होती है ज़िंदगी की खास बात। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम सवेरे सवेरे अपने विचार आपके साथ व्यक्त करें और आपके विचार हम तक पहुँचें। बस इससे खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन भटकाव भी खूबसूरती हो सकती है। ये आज हम आपको बता रहे हैं कि भटकना सिर्फ भटकना नहीं होता है। जैसे कहते हैं ना, परखना मत परखने को है, परखना मत परखने पे कोई अपना नहीं होता। तो ऐसे ही भटकना मत, हर भटकना भटकना नहीं होता। समझिए क्यों? क्योंकि जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। भटकने का सिलसिला तो जिंदगी का हिस्सा है, आपकी जिंदगी का भी हिस्सा रहा होगा। अब जरा सोचकर बताओ कि उस भटकने ने आपको भटकाया या फिर कुछ सिखाया? उस भटकने ने आपकी हिम्मत तोड़ी या फिर जिंदगी को जीने का एक नया अंदाज सिखाया? क्योंकि हम सब एक सपना लेकर निकलते हैं आगे कि उस सपने को पूरा करें, और उस सपने के बीच बीच में कई ऐसे रास्ते मिलते हैं जिनसे हम अनजान होते हैं, लेकिन उन्हीं रास्तों पर चलते हुए, उन्हीं रास्तों पर भटकते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, और उस भटकने को भटकना नहीं कहते हैं। बात तो सिर्फ ख्वाब की है कि ख्वाब कैसे पूरा करना है, उसके लिए हम भले ही इधर उधर रास्तों पर भटके, लेकिन भटकाव मन में नहीं होना चाहिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6।

0: आपके लिए।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: तो भाई साहब वापस आ गए छोटे से ब्रेक के बाद और बात चली है कि भाई जिंदगी में भटकना क्या जरूरी होता है और इस भटकते भटकते हम जिंदगी के किस मुहाने पर पहुंचते हैं। तो पीछे भी हमने ये रखा कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, है ना। तो इसको कैसे समझा जाए, क्या सिखाती है ये जिंदगी, इसको भी समझा जाए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना हमारी ज़िंदगी में आती हैं, कहीं अटके कहीं भटके, सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है और चलते चलते हम उस मुहाने तक पहुंच जाते हैं कि उम्र कब बीत जाती है पता नहीं लगता। फिलहाल ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, भटकने का सिलसिला हमारी ज़िंदगी में रहता है, लेकिन मज़े की बात पता क्या है, ज़िंदगी भर हमको ये सिखाया गया कि घोड़े की तरह सामने देखो, इधर उधर मत ध्यान दो, सीधे चलो। अब भाई बचपन से अब तक यही सुनता है, बड़ी कोशिश की कि भाई भटकना ना पड़े, लेकिन जिंदगी की दौड़ जब शुरू हुई तो भटकाव के साथ शुरू हुई। और सच बताऊं जैसे ही भटकते भटकते धक्के खाने पड़े ना, वैसे ही दिमाग की बत्ती जल गई, तब समझ में आया ओ बेटे की भटकना ही तो जिंदगी है। तभी मुझे याद आया राहुल संकृत्यायन का वो हिंदी निबंध अथातो घमक्कड़ जिज्ञासा, है ना, यानी घूमने में भी कुछ बात है, भटकाव में भी कुछ खास है, जरूरी है। और भटकते भटकते मटरगस्ती हो जाए तो फिर कहीं नहीं क्या, यानी जिंदगी को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है ये हमें पता होना चाहिए, बस फिर क्या है, सफर बेहद सुहाना हो जाता है, रास्ते कैसे भी क्यों ना मिले।

0: ऐसी है जिंदगी, है ना। और ऐसे ही हम बस जिंदगी को बिताते चले जाते हैं। आपके नमस्कार संदेश आते रहेंगे हमारे पास, तो बस हम समझ रहे हैं कि दिल के तार आपके जुड़े हैं। और अगर आप सुन रहे हैं तो वाकई आप जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता है आप रास्ते तलाश रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और बस हम जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो जिंदगी के रास्तों पर हमें चलना कैसे है ये समझ में आ जाता है। लेकिन हम और आप मिलते कैसे हैं, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसको कभी कभी हम भटकाव कह देते हैं, धक्के खाना कह देते हैं। लेकिन इन्हीं भटकाव में हमें कुछ अपने भी मिलते हैं। लेकिन हमने एक बड़ी अच्छी बात कही, जो एक निबंध की बात की राहुल सांकृत्यायन की, अथातो गुमक्कड़ जिज्ञासा, उसमें लिखा हुआ है बड़ा खूबसूरत बात कि दुनिया में मनुष्य जन्म एक ही बार लेता है और जवानी भी केवल एक ही बार आती है। साहसी और मनस्वी तरुण तरुणियों को इस अवसर से हाथ नहीं धोना चाहिए। कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ों, ये संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। वो कहते ना, इस पूरे सार को हम अगर शायरी के जरिए कहें तो ये कह सकते कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां। जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहां। सच बताऊं, जो सीधे चलता है वो सिर्फ एक रास्ता देखता है, और जो भटकता है वो 10 रास्ते देखता है। तो अनुभव किसके पास ज्यादा हुआ। इसलिए मटर गश्ती कभी कभी हमारी जिंदगी में जरूरी हो जाती है। बस एक बात हमारे साथ होनी जरूरी होती है, और वो है मेहरबानियां जिंदगी की। कोई साथ, कोई अपना हो ना हो, लेकिन जिंदगी के अनुभव जब साथ में होते हैं तो सब आसान हो जाता है। जिसने भटकते हुए थपेड़ खा लिए ना, उसे कोई हरा नहीं सकता। बस जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए।
1: एहसास तू तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में दिलदार तू।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
3: तो देखिए भाई, हम पता भी बताते रहते हैं धीरे धीरे में कि आप कहां पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 102.6 एफएम रेनबो पर रविंद्र के साथ मौजूद हैं, कार्यक्रम है सुप्रभात और हम बता रहे हैं जिंदगी के जीने के राज, है ना। तो जुड़े रहना आपको बस हमारे साथ और आपके प्यारे प्यारे संदेश हम तक पहुँच रहे हैं, जो हम पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये प्रोग्राम संदेशों को पढ़ने का नहीं, लेकिन आपके एहसास हम तक जरूर पहुंच जाते हैं, है ना। बड़ी खुशी होती है कि आप प्रातःकाल उठकर

अपनी जिंदगी के लिए प्रयास लगातार कर रहे हैं। खैर, जिंदगी की जब प्रयासों की बात आती तो हम किस तरफ देखते हैं? हम देखते हैं उन लोगों की तरफ जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया होता है। वो एक ऐसे पड़ाव पर होते हैं जहां सब कुछ पा लिया होता है और उसके बाद भी जिंदगी उन्हें दिए जा रही होती। हम सोचते हैं काश हम भी वहां पहुंच जाए। कौन कौन से? दो बेहतरीन किरदार मैं आपको बता देता हूं। दो बेहतरीन किरदार, दो उदाहरण हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है, एक है भारतीय सिने जगत के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और दूसरे हैं महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। एक कलाकार और दूसरा खिलाड़ी। अब अमिताभ जी को अपनी पहली सुपरहिट फिल्म देने के लिए 12 फ्लॉप फिल्मों से होकर गुजरना पड़ा था, और वहीं क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी एक टिकट कलेक्टर थे। एक समय तो क्रिकेट छोड़ने का उन्होंने मन ही बना लिया था। भटकाव हुआ, लेकिन भटकाव के बावजूद उन्होंने कोशिशें जारी रखी और एक दिन ऐसा आया कि सब कुछ बदल गया। भाई साहब, हथौड़े की कौन सी चोट पत्थर के लिए आखिरी होगी नहीं पता होता, बस इतना पता होता है कि उसे तोड़ने के लिए जज्बा और कोशिश दोनों का संगम होना जरूरी है। भटकने का मतलब रास्ता गलत लेना नहीं है, भटकना मतलब अपना रास्ता खुद बनाना है।

0: हम भी यहाँ।
1: देखा तो जिंदगी हमारे ये इम्तिहान लेती रहती हैं। और ओ बेटे की किसी ने बचपन में सुना है तो उन्हें याद आ गया, तो हम कहते हैं कि भाई हमारे आपके दिल के तार जब दिल से जुड़ते हैं तो बेटे की याद ही आ जाता है। और कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें खो देते हैं रास्ते में, कोई साथ नहीं रहता, साथ रहते हैं वो अनुभव जो भटकने के बाद हमें मिलते हैं, है ना, तभी तो हम जिंदगी के रास्तों पर आगे बढ़ते हैं। खैर अभी हमने बात की उन किरदारों की जो भटकते भटकते कुछ पा गए, लेकिन एक वक्त लगा उनको। अब बात करते हैं उन लोगों की जो निकलते ही नहीं, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो भाई उम्र निकल गई। अब तो अभी ये तीन लाइन है भाई साहब, तीन लाइन है। क्या तीन लाइन है? लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो उम्र निकल गई। भाई ये तीन लाइनें ता उम्र पीछा नहीं छोड़ती भाई साहब। डर अच्छा है पर डर के आगे जीत भी है। तुम समंदर के किनारे बैठकर तैरना कैसे सीख सकते हो भाई, पानी में तो उतरनी पड़ेगा ना, और उतरने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी, डर को मिटाना पड़ेगा क्योंकि तैरना तभी आएगा। इसलिए गुमराह मत हो अपने विचारों से भी, क्योंकि ये विचार भी हमें गुमराह करते हैं। गुमराह होने का मतलब भी समझ में आना चाहिए, महज कह देने से कोई गुमराह नहीं होता भाई। गुमराह वो नहीं जो रास्ता भूल गया, सुनिए ध्यान से, गुमराह वो नहीं जो रास्ता भूल गया, गुमराह वो है जिसने रास्ता ढूंढना ही बंद कर दिया। और अगर आपको एक स्टार चाहिए कहीं का भी, देश का, मोहल्ले का, सोसाइटी का, तो उस स्टार को खोजने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्टार आपके अंदर है। उसको जमीन पर लाइए, जमीन पर लाइए, लाइए जमीन पर। जिंदगी मौत से तभी कटेगी भाई साहब जब आप मटरगस्ती करते हुए आगे बढ़ेंगे। गीत सुनिए, आनंद लीजिए, बातें होती रहेंगी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: वेलकम बैक। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर वापस आ गए हैं और बात वही है कि भटकने को भटकना नहीं कहते हैं, और धीरे धीरे करके वक्त जो है कह रहा है कि भाई चलते रहो, क्योंकि बात करते करते वक्त कब बीत जाता पता नहीं लगता, और ऐसे ही होते हैं जिंदगी के पल। इसलिए हर पल में जीना सीख लो, यही जिंदगी का उसूल है भाई साहब, नहीं तो हम उस पल को गंवा देंगे जो हमारे पास से निकल रहा है ना। कितनी छोटी सी बात, और ये छोटी सी बात समझते समझते हमें हमारी उम्र बीत जाती है। तो भाई साहब जरा सीधा सुन लो, आपकी उम्र 20 है, 30 है, 50 है, क्या फर्क पड़ता है भाई। अब देखो बूमन ईरानी 46 साल की उम्र के बाद हिट हुए। रास्ते पर ध्यान रखिए, हम भी जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो रास्ते पर पत्थर होंगे, लोग हंसेंगे, हम गिरेंगे, लेकिन याद रखना पड़ता है कि जो GPS है ना, जब हम अपने किसी वाहन से जाते हैं तो GPS जो है ना, वो जब रास्ता भटकता है तो बोलता है रिकैलकुलेटिंग, समझ गए। वो ये नहीं कहता कि घर वापस जाओ। इसी तरह जिंदगी के रास्तों में हम अगर कभी भटकते हैं तो हमारा इंटरनल GPS क्या कह रहा है, रिकैलकुलेटिंग या क्विट, इसको आपको समझना होगा भाई। एक्सपर्ट कहते हैं भटकना ब्रेन के सीखने का तरीका है। जब आप कंफर्ट जोन से निकलते हो तब आप न्यूरल पाथवे बनाते हो, इसलिए जो रिस्क नहीं लेता वो ग्रोथ नहीं करता। गिरो, उठो, सीखो, यही सक्सेस का फार्मूला है, और ये करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए निकलना पड़ता है, और जब हम निकलते हैं तभी हमारे कदमों में होती हैं। क्या होती हैं ये गीत बताएगा आपको कि हमारे कदमों में क्या होती है जब हम एफर्ट करते हैं।

यही तो हम उतनी देर से कह रहे हैं कि बुलंदियां हमारे कदमों में होगी, कदमों में होगी, कदमों में होगी, और अब पता नहीं आप कदम देख रहे हैं, हैं? कदम मत देखिए, अपने एफर्ट्स देखिए, अपने प्रयास देखिए कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, होता है, सब कुछ होता है जिंदगी में, भटकाव होता है, लोग भी गलत मिल जाते हैं कई बार, लेकिन हम मन के भटकाव से हमेशा बचें। हम भटकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तीन और एग्जाम्पल बता देते हैं। देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वॉचमैन की नौकरी की, 10 साल स्ट्रगल, और आज कितनी तारीफ है उनके काम की। कल्पना चावला, करनाल के छोटे से स्कूल से नासा तक का सफर, रास्ता आसान था क्या उस दौर में जब लड़कियों को पढ़ने की ज्यादा इजाजत नहीं दी जाती थी उस वक्त, समझिए। और तीसरा किरदार बहुत ही अहम, जानते कौन है? वो है आप। जी हाँ, जो ये शो सुन रहे हो, क्योंकि सुनने वाला भी निकल चुका है अपने रास्ते पर। और जब आप अपने रास्ते पर निकल जाते हैं तो एक ही बात कहूंगा कि चलना तेरी शान है, रुकना तेरी शान नहीं। इन बातों को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। खैर, यहां प्रोग्राम का सिलसिला चलता रहेगा, कार्यक्रम तो पता ही आपको कौन सा चल रहा है, सुप्रभात। और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रविंद। बातें बहुत सारी हो गई हैं और गीत भी बहुत सारे बज गए। चलिए एक और प्यारे से गीत के साथ छोड़ते हैं आपको, क्योंकि जिंदगी में इधर उधर भटकाव भले ही हो, रिश्तों की परिभाषा बार बार हमें सोचनी क्यों ना पड़ती हो, एक चीज हमेशा है कि हमें सिर्फ या तो माइंड में इंग्लिश का वो तीन शब्द बोल दें, ऑल इज वेल, और या फिर हिंदी में बोलना है हमें, सब कुशल मंगल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
1: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी

विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार 3रे दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

और इसी की तरह अगर आपसे भी हमारा पता कोई पूछे तो आप आकाशवाणी रेनबो बेझिझक होके कह दीजिएगा, क्योंकि हम में से कोई ना कोई लगातार 24 घंटे सातों दिन 365 दिन साल के यहाँ आपको जरूर मिलेगा, आपको एंटरटेन करता हुआ, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता हुआ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 20 मई 2026 की बुधवार की इस खूबसूरत सी सुबह में। प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, मैं हूँ आपके साथ सोनू भट्ट। बाहर का टेम्परेचर लगभग 34 डिग्री सेल्सियस, सुबह से ही गर्मी ने अपना कहर जो है वो ढाना शुरू कर दिया है। वेल चल तो मई का महीना रहा है, लेकिन गर्मी ऐसी है जैसे जून के मिड में हम पहुंच गए हों, और इसके बाद का जो महीना ये जून शुरू होने वाला है ना, इसको तो सोच कर ही ऐसा लगता है कि पता नहीं गर्मी कौन सा रंग अपना उस दौर में दिखाने वाली है। खैर, तैयारी अपनी पूरी रखिएगा, अपना सेहत का ध्यान रखिएगा, अपने आपको हाइड्रेट रखिएगा, जहाँ भी जाते हैं अपने आपको आप कवर करके ज़रूर जाइएगा, यानी कि आप स्कार्फ ले सकते हैं, आप अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, और अपनी पानी की बॉटल हमेशा अपने साथ इंटैक्ट रखिएगा। 43 टेम्परेचर जाने वाला है मैक्सिमम आज का, यही बताया है मौसम विभाग ने। तो बस ध्यान रखिए अपना और सुनते रहिए आप इसी तरह से आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली एनसीआर में, भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ के जरिए। साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन AIR हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए, और प्लेटफॉर्म है हमारा OTT का भी एक वेव्स, उसके जरिए भी आप हमें सुन सकते हैं। दिल से दिल तक पहुँच रहे हैं हम, जुड़े रहिए।

0: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एच 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। तो श्रोताओं, आज बात होगी नेशनल प्रोग्राम ऑफ टॉक्स की शुरुआत के बारे में। 29 जुलाई 1953 को ऑल इंडिया रेडियो ने नेशनल प्रोग्राम ऑफ टॉक्स अंग्रेजी की शुरुआत की। ये कार्यक्रम देश के बौद्धिक वर्ग और आम जनता के बीच संवाद का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा। ये एक साप्ताहिक कार्यक्रम था जिसमें समसामयिक मुद्दों, साहित्य, संस्कृति और शिक्षा जैसे गंभीर विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जाती थी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को सशक्त बनाना और देश भर में सांस्कृतिक विविधता के प्रति जागरूकता फैलाना था। तो ये बात हुई नेशनल प्रोग्राम ऑफ टॉक्स की शुरुआत के बारे में। अगले अंक में आपसे बात होगी पहले रेडियो संगीत सम्मेलन के बारे में। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एच 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल. कितनी खूबसूरती से साथ मांगा गया. ऐसे आप मांगेंगे तो ज़रूर आपको साथी मिल जाएगा ज़िंदगी में. सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर. मैं हूँ आपके साथ सोनू भट्ट और आप हमें सुन रहे हैं 102.6 MHz पर दिल्ली एनसीआर में, भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के जरिए. चलिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े हुए इतिहास की. 20 मई का ये खूबसूरत सा दिन है, लेकिन इतिहास में क्या माने रखता है, कौन कौन सी घटनाओं को अपने भीतर समेटे हुए, ये भी आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है. तो 20 मई 1498 में आपको लेकर चलते हैं, यानी कि 1498 में, जब पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत के केरल के कारिकट बंदरगाह पहुंचे और ये यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्र के रास्ते भारत की यात्रा का पहला प्रयास था, जिससे भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज हुई. वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा 1497 में शुरू की थी और वह अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को पार करके पहुंचे थे भारत. कालीकट में 3 महीने बिताने के बाद वो वापस पुर्तगाल लौटे थे. उसके बाद रेस्ट जो है वो हिस्ट्री है. 1609 में अब हम आते हैं, इस दिन विलियम शेक्सपियर की कविताओं का पहला संग्रह, जिसमें करीबन 154 कविताएं थी, सोनेट्स के नाम से प्रकाशित हुआ और ये जो संग्रह है वो अंग्रेजी साहित्य में एक मील का पत्थर माना जाता है. 1873 सैन फ्रांसिस्को के एक बिजनेसमैन को, जिनका नाम लेवी स्ट्रॉस था और उनके साथ ही जेकब डेविस को, दुनिया की पहली जीन्स बनाने का, आधिकारिक रूप से नीली जीन्स बनाने का जो पेटेंट है वो मिला था. और ये एक तरह से फैशन इंडस्ट्री में, कपड़ों की दुनिया में क्रांति लाने वाला पल था. जैसे जैसे दशक बीतते चले गए, नीली जीन्स का जो क्रेज़ है वो बहुत बढ़ता गया, जिसे हम ब्लू डेनिम कहते हैं. और आज दुनिया भर के लोगों में, हर वर्ग के लोगों में, हर उम्र के लोगों में ये अपनी पहचान बनाए हुए है और एक तरह से कहा जा सकता है सभी की पहली पसंद है. वेरी कंफर्टेबल आउटफिट और उसके साथ ही साथ इस ब्लू जीन्स का क्रेज़ ना किसी भी आते जाते बदलते फैशन से बदला नहीं है, इनफैक्ट बढ़ा ही है. 1932 में जब हम आते हैं तो हम बात करते हैं हमारे गरम दल के नेता और क्रांतिकारी विचारों के जनक विपिन चंद्र पाल की, जिनका निधन हुआ 20 मई को. और ये आज़ादी के आंदोलन के दौरान मशहूर लाल बाल और पाल जो टिकड़ी थी उसका हिस्सा थे और उन्होंने अमूल्य योगदान दिया स्वतंत्रता संग्राम में. 20 मई 1990 को नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने, जिसे 24 अप्रैल 1990 को अंतरिक्ष में

भेजा गया था। पहली बार अंतरिक्ष से खींची हुई तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी थी। और 2011 में आज ही के दिन झारखंड के पर्वतारोही प्रेम लता अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। 55 साल की उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला बनी थी और उनके साहसिक कार्य के लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो इतिहास से जुड़ी ये बातें जो मैंने अब तक पहुंचाई, ताकि मेरी और आपकी जानकारी जो है वो साझा रूप से यूं ही इसी तरह से बढ़ती चली जाए। सुनते रहिए आप आकाशवाणी रेनबो।

है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: बिल्कुल, आप सुनिएगा जरूर मन की बात और जानिएगा कि कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन सी बातें उसमें इस बार आप तक पहुंचाई जा रही है। सुनते रहिए आप इसी तरह से आकाशवाणी रेनबो।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तला दिल तक आपकी वाणी आकाशवाणी। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, आपका अपना मॉर्निंग मैगजीन शो है। आज है विश्व मापन दिवस। हर साल 20 मई को मनाया जाने वाला विश्व मापन दिवस हमारे दैनिक जीवन में जो माप विज्ञान है, मापन विज्ञान है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। GPS नेविगेशन से लेकर जब हम मेडिकल फील्ड में जाते हैं, यानी कि चिकित्सा, खुराक और निर्माण, सुरक्षा, सभी तक के मामलों में मापन विज्ञान जो है विश्व स्तर पर एक स्थिरता और एक विश्वसनीयता जो है वो सुनिश्चित करता है। और ये जो मेट्रिक प्रणाली है, ये जो पूरा वैश्विक सहयोग है, इस जो कॉर्पोरेशन हमारा ग्लोबल लेवल पर, उसको संभव बनाती है। 1999 में अंतर्राष्ट्रीय भार एवं मापन समिति CIPM द्वारा इसे 20 मई को ये मनाने के लिए जब घोषित किया गया, तो उसके पीछे का कारण था 1875 को पेरिस में मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर जो हुए थे उसकी याद में इसको मनाया जाने लगा। इस समझौते ने क्या किया था, इसने वैश्विक स्तर पर एकीकृत और विकसित हो रही मेट्रिक प्रणाली की नींव रखी थी, जिसे बाद में इस तरह से मिली रिकग्नाइजेशन, एक दिन के रूप में एक ऑब्जर्व किया गया। और इस दिन जो है विश्व मापन दिवस वाले दिन, इस दिन क्या किया जाता है, जो भी लोग, जो भी इन संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, उनका जो योगदान है उस योगदान पर भी प्रकाश डाला जाता है, उनके योगदान को मान्यता दी जाती है, जो भी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति हैं। साथ ही साथ जो OIML है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि मापन संगठन, और अंतर्राष्ट्रीय मापन ब्यूरो BIPM के नाम से जो जाना जाता है, इसको संयुक्त रूप से विश्व मापन दिवस का ये लोग आयोजन करते हैं। और इन दोनों ही संगठन जो है वो ये सुनिश्चित करते हैं कि जो विश्वव्यापी मापन जो प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, वो सुचारू रूप से काम करे और उसका परिणाम जो है वो बिल्कुल सटीक निकले। हर साल एक थीम के अंतर्गत इसमें काम किया जाता है, तो इस बार भी एक थीम रखी गई है, माप विज्ञान नीति निर्माण में विश्वास का निर्माण, यानी कि बिल्डिंग ट्रस्ट इन पॉलिसी मेकिंग, ये इस बार की थीम है और इसी के अंतर्गत काम किया जाएगा। तो जो भी लोग अभी हमें सुन रहे हैं और इस मापन विज्ञान के कार्य से जुड़े हुए हैं, इस कार्य क्षेत्र में जुड़े हैं, आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहिए आप आकाशवाणी रेनबो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR चल रहा है आपका अपना मॉर्निंग मैगजीन शो और अब टाइम है आपको आज के एक और खास दिन के बारे में बताने का। आज है विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे। हर साल 20 मई को मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य है जो कि हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, खाद्य सुरक्षा है और जैव विविधता है, उसको बनाए रखने में मधुमक्खियों के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में आम जन में जागरूकता फैलाना। पहला विश्व मधुमक्खी दिवस जो है वो 20 मई 2018 को मनाया गया था। हम सोचते ना छोटी सी मधुमक्खी क्या करती होगी। एक छोटी सी मधुमक्खी बहुत बहुत कुछ करती है और एक ये जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है ना उसे बनाए रखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक ऐसी भूमिका निभाती है जिसे रिप्लेस हम नहीं कर सकते, उसका रिप्लेसमेंट संभव नहीं है। और ये जो तारीख है वो इसीलिए चुनी गई क्योंकि मधुमक्खी पालन के जो अग्रणी रहे एंटोस जॉनसा, उनका जन्मदिन आज के दिन 20 मई को था। 1734 में स्लोवेनिया में पैदा हुए थे। दुनिया के आधुनिक मधुमक्खी पालन के पहले शिक्षक हो रहे और मधुमक्खियां पर्यावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण पराग कणों यानी कि पॉलिनेटर्स में से एक होती हैं। दुनिया की लगभग एक तिहाई फसलों और 90% यानी कि 90% जंगली फूलों के पॉलिनेशन में मदद करती हैं जिससे खाद्य उत्पादन जो है वो संभव हो पाता है। और इनको संरक्षण की बहुत ज़रूरत है क्योंकि कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग जो होने लगा है, जंगलों की कटाई जहाँ तहाँ हो रही है और जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, नित नई परेशानियाँ जो आम आदमी के सामने आ रही हैं वो हमारे पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले हमारे जीव जंतुओं और ये छोटे छोटे जो हमारे प्राणी हैं इन तक भी पहुँच रही है, इनके जीवन चक्र को भी परेशान कर रही है, बाधित कर रही है। तो इन सब की वजह से मधुमक्खियों की जो आबादी है वो लगातार घट रही है, उनके अस्तित्व और विकास को भी कहीं ना कहीं खतरा जो है अब दिखने लगा है। तो इस दिवस के माध्यम से इन जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए, इनके जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए और इनके साथ ही साथ एक हेल्दी इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरत है कि हम इनके संरक्षण के लिए काम करें। और उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि पहले हम इनके बारे में जाने समझें और देखें कि किस तरह से ये छोटा सा जीव जो है हमारे इस बहुत बड़े से इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। एक ऐसा पार्ट जो नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी अस्तित्व को खो सकती हैं। तो ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए, पढ़िए इनके बारे में और जहाँ तक आप व्यक्तिगत रूप से इसमें कर सकते हैं योगदान ज़रूर कीजिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं

उत्तराखंड में तो हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक का जन्म हुआ। सुमित्रानंदन पंत नए युग के प्रवर्तक के रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य में उभरे। सुमित्रानंदन पंत ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते रहे जिनका प्रकृति का जो चित्रण था वो उनके समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन माना गया। आधी सदी से भी ज्यादा लंबे उनके रचना काल में आधुनिक हिंदी कविता का पूरा युग समाया हुआ है। उन्हें पढ़ने वाले ये बात बखूबी जानते हैं। पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से वे नवाजे गए। आधुनिक हिंदी साहित्य के एक युग के प्रवर्तक कवि ये माने गए। उन्होंने भाषा को, जो उनकी भाषा थी ना, उसको मैं और भी निखार लाया, संस्कार दे रहे उसको, और भी जितना सामर्थ्य उस भाषा में था उस पूरी तरह से उभार कर सामने रखने का जो श्रेय है वो उन्हीं को गया। उसके साथ ही साथ जो नए विचार थे, नई भाषा थी, उनके चलते भी बहुत सी स्मृति मिली इनके रचना साहित्य को। और हमेशा ही वो बहुत सशक्त और ऊर्जावान कवि रहे और उन्हें प्रकृति का कवि माना जाने लगा था। लेकिन कहते हैं कि पंत वास्तव में मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि रहे। इनकी मुख्य रचनाओं में वीणा, पल्लव, चिदंबरा, युगवाणी और साथ ही साथ युगपत, कला और बूढ़ा चांद शामिल है। और भी बहुत सी रचना है इनकी जो कि पहुंची पाठकों तक। 28 दिसंबर 1977 को उन्होंने इस दुनिया से विदा ली और आज 20 मई की जब हम बात कर रहे हैं इनकी जयंती पर, हम इन्हें याद करते हैं। और इसी के साथ मैं लेती हूं आपसे इजाज़त अभी गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के इस पहले हिस्से से, क्योंकि गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का दूसरा हिस्सा लेके रविंद्र स्टूडियो में आ गए हैं। तो आप इनके साथ जुड़िए, मेरी और आपकी मुलाकात होगी दिल के तराने गाने नए पुराने में, जो कि 9 से 10 के बीच का समय रहेगा, जिसमें हर 9 से 10 के बीच के हर 15 मिनट में, यानी कि 9:15, 9:30 और 9:45 पर हम ले चलेंगे आपको सुनहरे दौर में और सुनवाएंगे आपको एक रेट्रो फ्लेवर को लिया हुआ ब्यूटीफुल सा ट्रैक। साथ ही साथ नए जमाने के गीत भी होते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी रेडियो, दिल से दिल तक।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है सोनू भटका। आपने सुना तमाम जानकारियां उनके पास थी और इतनी प्यारी प्यारी बातें उन्होंने कही कि हम बाहर दरवाजे खड़े होकर बड़ी प्यारी प्यारी बातें सुन रहे थे। थोड़ी देर के लिए तो हमें ऐसा लग रहा, अरे क्या मैं किसी को सुन रहा हूँ। फिर सुनते सुनते मुझे याद आया, अरे मेरा भी तो प्रोग्राम है, तभी तो मैं आ गया यहाँ पर आपसे दो चार होने के लिए। क्योंकि बात दिल की है ना भाई साहब, तो दिल के तार तो दिल तक तभी जुड़ पाएंगे जब हमारी आपकी मुलाकात होगी। तो मुलाकात से पहले एक प्यारा सा गीत, उसके बाद बढ़ेंगे अगले सफ़र की तरफ, मतलब अगले गीत की तरफ। फिलहाल मैं हूँ रविंद्र सिंह, प्रोग्राम वही है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। तो तेज़ी से बोलिए गुड मॉर्निंग।

गीत अगर अच्छे हों तो फिर सफ़र और खुशनुमा हो जाता है, और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम आपके सफ़र को और बेहतर कर दें, क्योंकि इस समय जो मौसम अपने मिजाज को बदल रहा है वो कहे थे कि भाई कहीं मन ही नहीं लगता उस मौसम की वजह से। क्या हुआ चलिए बता देते हैं कि क्या कहता है मौसम का हाल। दरअसल अब जो है भीषण गर्मी और लू का दौर जो है जारी है इस वक्त, और ये जारी रहने वाला है, और ऐसा कह भी दिया है मौसम विभाग ने, साफ स्पष्ट किया है, मतलब स्पष्ट किया उन्होंने कि 20 से 25 मई तक दिल्ली के कई इलाकों में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो आप भाई सावधान हैं, अगर घर से बाहर निकलना चाह रहे हैं तो दोपहर के वक्त तो बिल्कुल भी ना निकलें, और निकलें तो फुल कपड़े पहन के निकलें, और पानी या छाता, ये पानी छाता दोनों ही चीज़ें लेकर निकलें अगर बहुत ज़रूरी हो। और विभाग ने ये कह दिया मौसम विभाग ने कि 6 दिनों तक तेज़ धूप और गर्म हवा और अतिरिक्त तापमान हमारी परेशानियों को बढ़ाएगा। और जानते हैं तापमान कितना रहा है, 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। 19 मई का जो सीजन का चौथा दिन रहा वो सबसे ज़्यादा गर्म दिन महसूस किया गया, और राजधानी में लू यहाँ पर दर्ज की गई। इससे पहले अप्रैल में 3 दिन और मई में 1 दिन लू चली थी। अब आप समझिए कि अभी लू चल रही है, इसलिए आप अपना ध्यान रखिए, और अभी 1 हफ्ते तक लगभग ऐसा ही मौसम रहने वाला है। ऐसे में आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि पारा जो है मैक्सिमम जो रहने वाला है वो 46 डिग्री सेल्सियस, और जो मिनिमम रहने वाला है वो 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। थोड़ा ध्यान रखिए, हमारी यही कोशिश रहती है कि आपकी सेहत से जुड़ा कोई अगर सवाल है, कोई खबर है, तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएं, और हमने आप तक पहुंचाए, इसलिए आप अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट ही तो हमारे मुस्कुराने की वजह है, हमारे आपसे जुड़ने की वजह है। वैसे गर्मी के मौसम को जिस तरह का हाल है, कहते हैं कि कहीं मन ही नहीं लगता।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

तेरा होना, तेरा होना बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं कि कुछ चीज़ों का होना वाकई ज़रूरी होता है, जैसे हमारे दोस्त, हमारे साथी और हमारे आसपास रहने वाले लोग जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन ज़िंदगी में अगर हम रास्तों से होकर गुजर रहे हैं और उन रास्तों पर हमें कोई पथ प्रदर्शक मिल जाता है, यानी रास्ता दिखाने वाला मिल जाता है, तो और बेहतर हो जाता है। और यही आज के दौर में भी ऐसा रहता है कि कौन रास्ता दिखाएगा कि हमारा जो रास्ता, जिस रास्ते से हम होकर गुजर रहे हैं, वो रास्ता बिल्कुल साफ है और वहाँ से हम आराम से बिना किसी बाधा के गुजर सकते हैं। और ये बताती है हमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि ट्रैफिक तो ज़्यादा रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अचानक से कोई प्रोग्राम निर्धारित होता है और उस प्रोग्राम के चलते वो रास्ते हैं थोड़ा सा बाधित हो जाते हैं, और हमें अगर उन रास्तों की जानकारी नहीं होती है तो हमारे लिए परेशानी होती है। लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार कोशिश करती है कि अपनी एप्लीकेशन के ज़रिए, अपनी वेबसाइट के ज़रिए आप तक रास्तों की जानकारी पहुंचा दे, ताकि आप अपने गंतव्य तक सहमत समय पर पहुंच सकें। तो आज जो बात 20 मई 2026 को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जो एडवाइजरी जारी है, उसके मुताबिक 11 बजे से 3 बजे तक चूँकि फुल ड्रेस रिहर्सल है भारत मंडपम की तरफ, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, इस रास्ते से होकर ना गुजरें, क्योंकि जो SP मार्ग और मथुरा रोड है वो लगभग बंद उसको मानिए, तो इस रास्ते से होकर गुजरने से आप बचें। आप अगर जाना ही चाहते हैं तो आपको रिंग रोड के होकर, रिंग रोड और वंदे मातरम मार्ग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो आप NH8 से धौलाकुआं वाला जो रास्ता है वो खुला हुआ है, उसके ज़रिए आप एयरपोर्ट तक का रास्ता तय कर सकते हैं। और कुछ लोगों को सलाह ये भी दी गई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट स्टेशन से आप मेट्रो पकड़ सकते हैं, तो कोशिश करिए कि आप भारत मंडपम वाले रास्ते की तरफ से अगर होकर गुजर रहे हैं तो वहाँ पर फुल ड्रेस रिहर्सल है, जिस वजह से ये रास्ता बाधित है और यहाँ आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। और सबसे बेहतर ये है कि आप जिस गंतव्य की तरफ जा रहे हैं वहाँ से 30 मिनट पहले निकलें तो आपको असुविधा नहीं हो।

ओके, बस थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ी सी एहतियात बरतें, तो आप बहुत स्मूथ जाएंगे और समय से अपने काम पर पहुंचेंगे, है ना, क्योंकि उधर कोई आपका रास्ता देख रहा है।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
6: पता का चाय, गजब का स्वाद। केले का छिलका सड़क पे, ना भाई ना। चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर, ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: तो आप सुन रहे हैं हमें ध्यान से। तो आपको बहुत सारी हमने जानकारी मिली और इसके साथ साथ ये भी समझ लूंगा कि कार्यक्रम जब चल रहा है तो यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं जो दिल के तार हमारे जोड़ देती है, और ये जानकारियाँ कहीं ना कहीं आपके काम की होती हैं। अगर आपके काम की नहीं तो आपके आसपास जो आपके साथ ही हैं, सहयोगी हैं, उनके काम की ज़रूर होती है और हमारी कोशिश भी रहती है। तो कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, और मैं हूँ आपके साथ रविंद्र सिंह।

और खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब चीजें हमारे आसपास की खूबसूरत हो जाती हैं और उस खूबसूरती को हम बरकरार रखते हैं, क्योंकि यह बात अपने देश की हो रही है और जहाँ खासकर दिल्ली की, और यही खासियत हम दिल्ली वालों के लिए और खूबसूरती लेके आती है। कहते हैं कि भाई महिलाओं के लिए जो पिंक स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं उसकी सुविधा हर कोई उठा रहा है, और अब तो इन कार्ड की संख्या भी जो है 8 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। और ये जो संख्या है अपने आप में बताती है कि जो भी मुफ्त यात्रा बहनें कर रही हैं, माताएं कर रही हैं, उनके लिए ये एक विश्वास का जरिया है कि उन्हें लगता है कि अब हमारे लिए यात्रा तो मुफ्त है, लेकिन इस मुफ्त होने के साथ साथ जो उनको सुविधा मिल रही है वो सुरक्षित भी है। और ये है भरोसा एक दूसरे के ऊपर, और कहीं ना कहीं जब इस तरह के काम होते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे सम्मान के लिए, और इसके साथ साथ बदलते आधुनिक युग के साथ जब चीज़ें बदल जाती हैं तो हमारे लिए जीवन जो है जीना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए जो अब तक 8 लाख पिंक स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं, और ये कहना भी है सरकार का कि ये जो कार्ड लगातार इसकी बढ़ती संख्या ये बता रही है कि महिलाओं को ये भरोसा है कि सुरक्षित और सम्मानजनक और डिजिटल यात्रा का जो उनका अनुभव है वो बड़ा सुखद रहा है। तो इस यात्रा का आप लाभ उठाते रहिए, और जिस तरह की सुविधाएं हमें मिल रही हैं ज़रा पीछे मुड़ के देखिए और सोचिए कि हम कहाँ से कहाँ तक आ पहुँचे हैं, और अब इस आधुनिक युग में पूरी दुनिया में हम जिस तरह से देश हमारा आगे बढ़ रहा है, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, हमारे लिए हम जो सफ़र है वो बहुत सुगम हो गया है, बहुत आसान हो गया है हर किसी के लिए। तो बस करना केवल इतना है कि सुविधाएं तो हमें मिल रही हैं, लेकिन जो संसाधन हमको दिए जा रहे हैं उसका हमें भी उतना ही ध्यान रखना। हमें दूसरे से उम्मीद नहीं करनी कि भाई वो इसका ध्यान रखें, बल्कि हम जहां जिस जगह पर बैठे हैं और जिस संसाधन का लाभ उठा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी भी उतनी होती है जितनी सरकार की होती है। इसलिए लुत्फ उठाइए पिंक स्मार्ट कार्ड का, लेकिन आप भी उतने ही स्मार्ट बन जाइए, तभी तो हम एक दूसरे को एक दूसरे का बंधु कह पाएंगे। और गीत भी कुछ ऐसे कहता है कि जिंदगी में अगर कोई सबसे करीब, सबसे प्यारा और सबसे अच्छा होता है तो वो है हमारा दोस्त। हमारा वर्ताव जो एक दूसरे के प्रति बेहतर होता है तो फिर हम एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं और सब कुछ बेहतर हो जाता है जिंदगी में।

तो भाई आप हमारे बंधु हैं, इसीलिए तो किसी की प्लेलिस्ट हमसे जुड़ रही है, तो किसी के दिल के तार हमसे जुड़ रहे हैं, कोई सलाम भेज रहा है, तो कोई कह रहा है कि वाह मज़ा आ गया। बस यही दिल की बातें होती हैं और दिल तक पहुंचती हैं जानकारियां, अगर काम की होती हैं तो फिर सफ़र तो ज़िंदगी का और आसान हो ही जाता है। तो चलिए एक और बढ़िया सी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं, जो कि DSEU में स्नातक कोर्स से जुड़ी हुई है और दाखिले से जुड़ी हुई। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे थे दाखिले का, यहाँ पर उनको बताना चाहेंगे भाई, दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय यानी DSEU ने 12वीं के बाद संचालित विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए स्नातक दाखिला पोर्टल खोल दिया है। तो आप तैयार रहिए, विश्वविद्यालय ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 13 जून को रात 11:59 तक आप आवेदन कर सकते हैं। 13 जून, ध्यान रखिए, ठीक है। और छात्रों की सुविधा के लिए जो एडमिशन ब्राउजर है वो भी जारी कर दिया गया, और दाखिला के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं admission-ug.seu.ac.in के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। और वहां पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही अभ्यर्थियों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश हैं, उनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो फिर आप ध्यान रखिए, जाइए इसकी वेबसाइट पर admission-ug.seu.ac.in पर, और उसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करिए, आपके लिए प्रवेश खुला हुआ है, स्नातक दाखिला पोर्टल आपके लिए खोल दिया गया है, तो फिर किस बात की आपको चिंता है। तो जाइए आवेदन करिए और शुरू करिए एक नई उड़ान भरने के लिए अपना ये सफ़र। हर ये दिल है ना, कई बार धड़कता है जब ऐसी जानकारियाँ एडमिशन को लेकर हो या नौकरी को लेकर हो या कुछ नया हमारी ज़िंदगी में होने को हो, तो क्या होता है, दिल ढुक ढुक ढुक ढुक ढुक ढुक ऐसे धड़कता है ना। फिर सुनते हैं गाना।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी

0: कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: तो आप जुड़े हैं हमारे साथ, कार्यक्रम चला है गुड मॉर्निंग दिलियंस यार। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र, और इसी के साथ एक प्यारे से गीत के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। आपका दिन यूं ही शुभ बीते, सोनू भट्ट आ गई हैं प्रोग्राम लेकर। अगर आप रुचि रखते हैं नए और पुराने गीतों के संगम में, तो फिर जुड़ जाइए दिल के तराने गाने नए पुराने में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर। इस गीत के साथ आपको छोड़कर जाते हैं, फिर होगी मुलाकात किसी और दिन।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी। स्वागत आप सभी का दिल के तराने गाने नए पुराने में। मैं हूं आपके साथ सोनू भट्ट और ये वही प्रोग्राम है जिसमें हर 15 मिनट पर हम ले चलते हैं आपको सुनहरे दौर में और वहां से चुनकर लाए हुए गीत को आप तक पहुंचाते हैं और फिर उसके साथ नए जमाने के गीतों का मिश्रण, एक बहुत ही प्यारा सा मिक्सचर आप तक पहुँचाते चले जाते हैं थ्रू आउट द शो। और इसमें आपकी भी भागीदारी आप सुनिश्चित कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आप हमें ट्रैफिक की अपडेट दे सकते हैं दिल्ली NCR की 9868107070 हमारे व्हाट्सएप नंबर पर।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावरग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। टाइम होता जा रहा है आपको सुनहरे दौर में लेकर चलने का, हमारे हिंदी सिनेमा जगत के। मूवी है आए दिन बहार के, 1966 की ये फिल्म जिसमें नजर आए धर्मेंद्र, आशा पारेख, बलराज साहनी और राजेंद्र नाथ मुख्य भूमिकाओं में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से कहानी को लेकर, एक बहुत ही अच्छे से प्लॉट को लेकर ये फिल्म जो है आगे बढ़ती है। बहुत सारी चीज़ें इसमें एक रास की तरह शुरू होती हैं और बाद में फिर वो रिवील होते हैं, एक हैप्पी एंडिंग होती है फिल्म की। और ये फिल्म सभी को बहुत पसंद आई, एक उस समय की एक हिट फिल्म मानी गई और इसके सभी गाने एक से एक बेहतरीन थे। जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना, वो गाना जो दो हीरोइंस इस फिल्म में थी उन पर फिल्माया गया। और आपको बताएं कि उनमें जो आवाज़ें हैं वो एक लता मंगेशकर की हैं, एक आशा

सॉन्ग्स। और अब मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सीता एंड गीता फिल्म से एक बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर, जो कि फिल्माया गया है हेमा मालिनी और संजीव कुमार पर। हेमा मालिनी का इसमें डबल रोल था, एक हेमा मालिनी के जो फर्स्ट रोल था उसके हीरो थे धर्मेंद्र, और जो उनका डबल रोल था उसमें उनके हीरो थे संजीव कुमार। ब्यूटीफुल मूवी, एकदम क्लासिक। आपको जब भी समय मिलेगा इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा।

0: एजेंसी द्वारा जनहित में जारी।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: आकाशवाणी पर एक बार फिर से टाइम हो गया है दिल की तराने गाने नए पुराने में आपको रेट्रो फ्लेवर तक पहुंचाने के लिए। और अब मैं आ गई हूँ आपके लिए पराया धन फिल्म से एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक लेके। 1970 फिल्म 1 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म में नजर आए थे राजेश रोशन के साथ हेमा मालिनी। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक, बहुत ही पॉपुलर गाना किशोर कुमार की आवाज़ में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा,

0: बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी इस यात्रा का मुख्य ध्यान भारत और इटली के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर रहेगा। इस दौरान विशेष रूप से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान वर्ष 2025 से 2029 के दौरान संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की भी समीक्षा की जाएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान की ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि 1947-48 के युद्ध में पीरू सिंह का अदम्य साहस, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान भारतीय सैन्य इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में सदा अमर रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस

0: Yes, dear listeners, you know, there's such a beautiful innocence in the songs of that era. Simple lyrics, memorable tunes, and emotions that felt so genuine. And before I play up another retro gem, time for me to take a short little break. But stay with me because there's lots that's lined up on the other side. Stay with me.
1: Ye hai Akashvani aur aap sun rahe hai FM Rainbow.
2: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा
3: स्वस्थ रहने का फंडा रोज खाएं अंडा NECC द्वारा जनहित में जारी

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: That's right. How's your Wednesday morning going? We do hope and pray that it's not too hot and it's going absolutely smooth like butter, isn't it? The show where you are tuned in is called The Matchless Music Hour, and we are celebrating 90 glorious years of Akashvani. Yeah, there's much in store for you in the upcoming programs, and of course it'll culminate not too soon. Of course, 8th of June is the day when Akashvani began officially its journey in 1936. But I have to say that you simply cannot have a retro playlist or classic playlist without a little sparkle from the one and only singer par excellence, melodramatic voice and music that simply

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को

0: प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी। नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे से बंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और ओडिशा में लू की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी पर इस वक्त बबिता त्रिपाठी की वाणी आप सुनेंगे बॉलीवुड ट्रेल्स यानी बीटी विद बीटी का एकदम शुरुआत हो चुकी है, प्रारंभ हो चुका है और ये आरंभ एकदम प्रचंड है, एकदम जबरदस्त है। पता है क्यों? क्योंकि बीटी विद बीटी होता ही कुछ ऐसा ही है, यानी बॉलीवुड की ढेर सारी अपडेट्स, उसके साथ बॉलीवुड की ढेर सारे धमाकेदार ढींचे गाने। फिलहाल तो भंवरा आया है, भंवरा किस लिए आया है? वर्ल्ड बी डे है आज, तो चलिए भंवरे को एंजॉय करते हैं और इसके साथ ही शुरुआत करते हैं अपने फेवरेट बॉलीवुड शेयर्स की। तो आकाशवाणी रेनबो के साथ बने रहिए, बॉलीवुड की ढेर सारी खबरें, उसके साथ आपके लिए एक छोटा सा सवाल जिसका जवाब देकर बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। ई का होता है भाई, बताएंगे इस गाने के बाद। फिलहाल तो भंवरे का स्वागत करते हैं।

देखिए जी, भंवरे के काटने का सवाल ही नहीं उठता। और रही बात नैया डूबने की, तो अगर आप आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़े हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी नैया डूब जाए, क्योंकि नैया पार लगाने के लिए हम जो प्रयास हो सकता है वो करते रहते हैं, आपको पूरी तरह से गाइड करते रहते हैं, हर तरह की इन्फॉर्मेशन, हर तरह की एंटरटेनमेंट आप तक पहुंचता रहता है यहां से। तो आप बिल्कुल आकाशवाणी रेनबो के साथ दिल के साथ, दिल से दिल तक जुड़े रहिए और आपकी नैया पार लगाने की गारंटी हमारी। फिलहाल

बॉलीवुड की खबरें आप तक पहुंच रही हैं, भरपूर एंटरटेनमेंट पहुंच रहा है, क्योंकि सुन रहे हैं आप बबिता त्रिपाठी के साथ बॉलीवुड ट्रेल्स, बीटी विद बीटी चल रहा है। यहाँ पर बॉलीवुड की ढेर सारी खबरें तो होंगी, जो अपडेट्स हैं वो पहुंचेंगी, साथ में 11:30 बजे आपके लिए एक सवाल भी पहुंचेगा जिसका जवाब आपको देना है व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। उसके बाद बन सकते हैं आप बॉलीवुड सरताज। अगर आप बॉलीवुड सरताज बन गए तो आपको मौका मिलेगा हमसे बात करने का, हम आपको कॉल मिलाएंगे, हम भी धन्य हो जाएंगे और आप भी धन्य हो जाएंगे अपनी वाणी सुनाकर। आकाशवाणी पर सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। ये मौका पाने के लिए आपको क्या करना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि इन्हीं बातों में छुपा होगा वो सवाल जिसका जवाब आपको देना है व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। सुनते रहिए बीटी विद बीटी बॉलीवुड ट्रेल्स बबिता त्रिपाठी के साथ।

और एक और सोनी गुड़ी के बारे में आपको जानकारी दे दूं, 8 साल बाद कमबैक करने के लिए एकदम तैयार हैं। एक के बाद एक फिल्मों की अनाउंसमेंट बता रही है कि अब वो उनका जो कमबैक है ना, वो कोई छोटा मोटा नहीं होने वाला है, धमाकेदार ही होने वाला है। बात कर रही हूँ प्रीटी वुमन की। यस, प्रीति जिंटा की बात कर रही हूँ, अब जो हो गया है प्रीति जी जिंटा। यस, यही उनका इब वाला नाम है। और आपको बता दूं, लाहौर 1947 की घोषणा तो ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें वो सनी देओल के साथ आने वाली हैं। ये फिल्म आएगी 13 अगस्त को, और उसके बाद हम सब सोच रहे थे कि अभी तो प्रीति जिंटा इसी फिल्म से कमबैक कर रही हैं, अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा नहीं है, लेकिन 1947 लाहौर 1947 की चर्चा गर्म है, क्योंकि प्रीति जिंटा भी हैं इस मूवी में, सनी देओल के साथ वो भी। और मूवी के बारे में काफ़ी कुछ आप जान गए होंगे, अगर आप रेगुलर सुनते होंगे बॉलीवुड रील्स। तो नहीं जानते तो आपको बता दूँ कि 13 अगस्त को ये सिनेमाघरों पर मूवी आ जाएगी, तो जान जाएंगे। उसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हम बिल्कुल बताने के लिए तैयार हैं कि ये प्रीटी वुमन एक और मूवी साइन कर चुकी है, और इसका नाम है वाइब। यस, इसकी वाइब्स आनी शुरू हो गई हैं। डायरेक्ट किया है कुणाल खेमू ने, और एक्टिंग भी वो ही कर रहे हैं, और इसमें प्रीति अहम रोल में नजर आने वाली है, और भी बहुत सारे सितारे होंगे इसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुणाल खेमू ही हैं इस फिल्म में, वंशिका धीर हैं, स्पर्श श्रीवास्तव भी हैं। बाकी की जानकारी बहुत ज़्यादा अभी नहीं आई है, लेकिन हाँ, ये मूवी 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, यानी लाहौर 1947 के 1 महीने बाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: और आकाशवाणी रेनबो पर चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स बबिता त्रिपाठी के साथ। और अब बॉलीवुड की एक और खास बात, यस, कॉकटेल 2 के बारे में काफी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। अगर आप रेगुलरली बॉलीवुड ट्रेल्स सुनते हैं तो आपको पता है कॉकटेल 2 बन रही है। एक्टर हैं शाहिद कपूर और एक्ट्रेस हैं कृति सेनन। रश्मिका मंदाना भी इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगी और एक्साइटमेंट तब बढ़ जाती है जब नई नई चीजें रोज कुछ कुछ हमें दिखाई जाती हैं या बताई जाती हैं या सुनाई जाती हैं। और सुनाई इसलिए जाती हैं क्योंकि नया गाना रिलीज हुआ है और आप ना सिर्फ इसे आप सुन सकते हैं बल्कि देख भी सकते हैं। यस, कॉकटेल 2 का नया गाना है माशू का जो रिलीज हो चुका है। अगर आपने अभी नहीं देखा तो देख लीजिए, काफी मजेदार है, काफी रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिलेगी आपको। और साथ में इसमें इस गाने के बारे में बताऊं तो प्रीतम ने इस गाने को कंपोज किया है और अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं और बाकी की चीजें आप गाना देखेंगे तो समझ जाएंगे। और बात ये भी बता दूं कि शायद और कृति सेनन काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस नजर आ रहे हैं, मूव्स तो होते ही इनके खास हैं। तो अगर आपकी एक्साइटमेंट बढ़ गई है तो आप इस मूवी को नहीं बल्कि इस गाने को देख सकते हैं और मूवी आने के लिए थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। इतना इंतजार तो बनता है, अच्छी अच्छी बातों के लिए छोटा छोटा इंतजार बनता है ना। सुनते रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स बबिता त्रिपाठी के साथ, यानी बीटी विद बीटी।

वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको पता है ना कि 11:30 हो चुके हैं और लगभग इसी समय आपके लिए एक सवाल आ जाता है जिसका जवाब अगर आपने सही दे दिया ना, तो हो सकता है आपकी किस्मत और जवाब दोनों अगर सही हो गए तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बॉलीवुड सरताज बना सकता है। और बॉलीवुड सरताज क्या करते हैं, बॉलीवुड सरताज हमसे बात करते हैं, अपनी आवाज़ सुनाते हैं और उनसे हम बात करना ज़रूर पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे लिसनर्स जुड़ें, डायरेक्टली जुड़ें। तो फटाफट अगर आप बॉलीवुड सरताज नहीं बने तो भी बेनिफिट ये है कि आपका नाम तो अनाउंस होगा ही अगर आपने जवाब दिया है तो जवाब तो ज़रूर ही देना है। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है और अपनी किस्मत आज मानी है। अपकमिंग फिल्म लाहौर 1947, इसकी बात की थी मैंने और ये भी बताया था कि सनी देओल के अपोजिट कौन सी हीरोइन है। अब बारी आपकी, आपको बताना है कि लाहौर 1947 में सनी देओल के अपोजिट इस मूवी में हीरोइन कौन है भाई, आपको बताना है व्हाट्सएप मैसेज करके। और मैसेज करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले अपना नाम, उसके बाद शहर का नाम, उसके बाद

आंसर, मतलब उस हीरोइन का नाम लिखना है जो इस मूवी में सनी देओल के अपोजिट है, यानी 1947 लाहौर में जो सनी देओल के अपोजिट हीरोइन है उनका नाम लिखना है, उसके बाद भेज देना है। व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर चाहिए होगा आपको, ये बात तो बताना भूल ही गई, और वो नंबर है 9868107070 9868107070। ये है वो नंबर जो आपको बॉलीवुड सरताज बना सकता है। बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ, बीटी विद बीटी, ऑन योर आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

टू मच फार यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी दूरी टू मच फार हो आपके लिए, बॉलीवुड वाले पूरा ध्यान रखते हैं कि आपका जो इंतज़ार है वो ज़्यादा ना हो। बस थोड़ा इंतज़ार करवाते इसलिए हैं कि आपकी एक्साइटमेंट बढ़ जाए, थोड़ा सा बेसब्री थोड़ा बढ़ा देते हैं ना, तो उसका मज़ा कुछ और हो जाता है। अब बंदर फिल्म जो आने वाली है ना, उसका इंतज़ार तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ट्रेलर का तो खास तौर से नहीं करना है। लो जी, कल ही यानी 21 मई को रिलीज कर दिया जाएगा ट्रेलर, और 5 जून को ये मूवी सिनेमाघरों पर दस्तक भी दे देगी। बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं, दमदार कहानी, शानदार स्टार कास्ट और अनुराग कश्यप का निर्देशन, इसी वजह से बंदर फिल्म को 2026 की एक्साइटिंग फिल्मों में गिना जा रहा है। और मैं तो ख़ास तौर से इंतज़ार इसलिए भी कर रही हूँ कि बी फॉर बंदर, बी फॉर बॉबी देओल और बी फॉर बबीता त्रिपाठी, मतलब बी का कॉम्बिनेशन एक और आ रहा है। देखते हैं क्या होगा इस बी वाली फिल्म में, मतलब बंदर बॉबी देओल की लीड वाली फिल्म में।

0: वैसे ये मूवी जब आई थी ना, जिस मूवी का आप गाना सुन रहे हैं, अलग ही कमाल धमाल मचाई थी, और इस गाने ने तो जबरदस्त डांस करवाया था, याद आया कुछ? चलिए फिर से वो मूव्स याद करते हैं।
1: देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया।
0: अरे कर ही डालते हैं वो डांस।

थोड़े दिनों में ही अगर एक मूवी रिलीज ना हो जाए हमारे इस फेवरेट एक्टर की ना, तो हमारा भी दिल नहीं लगता। और मैं बात कर रही हूँ अजय देवगन की। यस, प्रदर्शित हुई थी 2007 में एक फिल्म जिसका नाम कैश है, और इसके बाद जोड़ी नहीं बनी निर्देशक के साथ, यानी अनुभव सिन्हा के साथ। निर्देशक अनुभव सिन्हा थे इस मूवी के, और अजय देवगन इस मूवी में हीरो थे। काफ़ी टाइम हो गया और ये इंतज़ार अब ख़त्म होने को है। ऐसी हवाएं चल रही हैं, ऐसी बॉलीवुड में खबरें उड़ रही हैं, और ख़बर अब ये उड़ी है कि 19 साल बाद अनुभव सिन्हा के साथ अजय देवगन एक एक्शन थ्रिलर मूवी में नजर आने वाले हैं जल्द ही। सुनील शेट्टी, ईशा देओल, रितेश देशमुख और जायद खान, और भी लोग मुख्य भूमिकाओं में हैं, और ये सब मिलकर एक मूवी में नजर आएंगे, तो गलियारे में, सिनेमाई गलियारे में हलचल तो बनती है। लेकिन हमारे लिए तो पहला तू, दूजा तू, तीजा तू। आप सुन रहे हैं बीटी विद बीटी, बॉलीवुड ट्रेल्स, बबीता त्रिपाठी के साथ। सवाल दोबारा नहीं सुनना चाहेंगे? सुनाते हैं इस गाने के बाद।

बॉलीवुड सरताज अगर आप बनना चाहते हैं तो आप जाग जाइए, कोई नींद नहीं आनी चाहिए। अपकमिंग फिल्म लाहौर 1947 में सनी देओल के अपोजिट हीरोइन कौन सी है, जानते हैं तो बताइए व्हाट्सएप मैसेज करके 9868107070 पर। आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम और भेज देना है इसी नंबर पर। क्या पता बॉलीवुड सरताज बन जाए, नहीं भी बने तो आपका नाम तो शामिल होगा ही, कोई बुरा सौदा नहीं है, फटाफट करिए।

तो आकाशवाणी रेनबो पर कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जब बात ही नहीं होती है और हम आपसे बात न करें ऐसे कैसे हो सकता है। तो लीजिए, आपसे मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि आप सबके नाम तो शामिल ज़रूर ही होंगे और मेरे पास जो मैसेजेस हैं उनकी लिस्ट बड़ी लंबी है, तो मैं सोच रही हूँ इस लिस्ट को थोड़ा शॉर्ट करती हूँ, फटाफट आप सबके नाम लेती हूँ। और शायद मेरे कंप्यूटर महाशय ने भी यही कहा कि अगला गाना आप क्यों सुना रही भाई, अब इतने सारे नाम आए हैं उनको कौन पढ़ेगा, कब पढ़ेंगे आप, और क्या ही हो जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ा, तो क्या पता आपकी कोई लिसनर आपका कोई नाराज हो जाए, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। तो जब ऐसी बातें हमारे और कंप्यूटर के बीच में हुई तो हमने डिसाइड किया कि चलिए आप सबके नाम फटाफट पढ़ देते हैं जिन्होंने सही, ज्यादातर सही जवाब ही दिए हैं। गलत जवाब तो शायद किसी एक का हो तो हम उनका नाम भी क्यों ही छोड़ें, आपने अगर कोशिश की है तो लीजिए। सलीम मलिक मेरठ से सही जवाब के साथ शुरुआत करते हैं और उसके बाद सुनीता शर्मा शालीमार बाग से सही जवाब, और उसके बाद किसका नाम है भाई, ये नाम है मोहम्मद सरफराज आलम का जो कि अररिया बिहार से लिख रहे हैं, और जी अनंत त्यागी मोदीनगर से लिख रहे हैं, दिल्ली सुल्तानपुरी से राजेश कुमार, और इन्होंने भी शायद सही जवाब दिया है क्योंकि नाम अभी दिख रहा है जग, और वो नहीं दिख रहा, आंसर नहीं दिख रहा, जगह का नाम भी दिख गया है। सबसे पहले आपको यही लिखना है ताकि शामिल हो जाए नाम। और इरशाद अशरफी ने ऐसा ही किया है, नागौर राजस्थान से सही जवाब के साथ इन्होंने आंसर दिया है, दानिश खतौली से, और उसके बाद मिसेस धर्म भाटिया रोहतक से सही जवाब लिख रहे हैं। उसके बाद निधि नंदा भी दिल्ली से सही जवाब के साथ शामिल हो चुकी हैं इस शो में। प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं, विपुल कुमार गुड़गांव से लिख रहे हैं, चित्रंजन सक्सेना नोएडा से, मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्तिनगर से, आनंद ठाकुर गुड़गांव से, कविता देवभूमि उत्तराखंड से लिख रही हैं, लाहौर 1947 में। भाई इतना लंबा आपको आंसर लिखने की जरूरत थी क्या है, आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना चाहिए था। किससे बात कर रही हूँ मैं, ये बात कर रही हूँ शैलेंद्र वर्मा दिल्ली वाले से, तो आप अगली बार से ऐसा ही करिएगा। राजेश शर्मा कहा

से लिख रहे हैं, ये ख्याला से लिख रहे हैं, जोया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से लिख रही है, वाह जोया स्वागत है आपका। विनीत कुमार बदायूं उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं, और उसके बाद ऋषु कटारिया पवन कटारिया पंजाब से, आसिफ सैफी मेरठ से, सेलीन फ्रॉम नवी मुंबई, और मोहम्मद फुरकान कहाँ से, मेरठ से, और उसके बाद लंबी लिस्ट है भाई, ओ माय गॉड इतनी लंबी लिस्ट। नेक्स्ट जो जवाब है ना, नाम आपने बाद में लिखा है, क्या करूँ अब मुझे स्किप करना पड़ेगा, जल्दी है, टाइम नहीं है। राहुल कुमार सूरत से लिख रहे हैं, नीलेश कुमार मलहरा छतरपुर से लिख रहे हैं, ये कहाँ है पता नहीं, आप फटाफट अपना नाम और अपने शहर का नाम पहले लिखा करिए प्लीज़। उमेश कुमार ख्याला से, अमर मुंबई से, अमर के बाद क्या लिखा है, जाहिद मुजफ्फरनगर से, उसके बाद मैसेज आ रहा है किसका नाम नहीं लिखा, बहुत सारे मैसेजेस में पहले नाम नहीं लिखा, अब मुझे स्किप करना पड़ेगा। किशोर को ये कुणाल ये पटना से लिख रहे हैं, अमरावती महाराष्ट्र से पंकज का सही जवाब, उसके बाद मेरठ से ये कान्हा का मैसेज है, ईशा का धर्मशाला से, और अपना नाम क्यों नहीं लिखते पहले, जयंत जी पटना से, उसके बाद फिर कुछ लंबी बात लिखी गई है जयराम खोरवाल की तरफ से, बाद में पढ़ूंगी। बसंत तोमर मेरठ से, नीतीश कुमार भी कुछ लिख रहे हैं, और सुदर्शन मुखी अनीता मुखी नीतीश कुमार के बाद, हरी सिंधु बठिंडा से, रोहित श्रीवास्तव दिल्ली से, और जिन्होंने अपना नाम पहले नहीं लिखा, मेरी गलती बिल्कुल नहीं है, मैंने कहा था सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे तो शामिल ज़रूर होगा, और जिन्होंने ये काम किया है उनका नाम शामिल हो चुका है। फिलहाल एक गाना लौट कर आते हैं, बॉलीवुड सरताज को ढूंढ कर लाते हैं।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: और आकाशवाणी रेनबो पर समय आ चुका है जब आप सबको इंतजार होता है कि आज बॉलीवुड सरताज कौन बनेगा या बनेगी। तो यस, आप ये जानने का समय भी आ गया है कि आज के बॉलीवुड सरताज कौन है। वो खुद अपने आप अपना नाम बताने को तैयार हैं। हेलो, कौन बोल रहा है भाई?
3: मैं शालू बोल रही हूँ।
2: शालू, आपका स्वागत है आकाशवाणी रेनबो पर। कहाँ से बोल रही हैं आप?
3: शादीपुर दिल्ली से बोल रही हूँ।
2: शादीपुर दिल्ली से शालू बोल रही हैं। शाह से शालू होता है और शाह से शादी होता है और बी से बबीता होती है और बी से बॉलीवुड होता है। तो बॉलीवुड ट्रेल्स में बबीता त्रिपाठी यानी बीटी विद बीटी चल रहा है और शाह से शालू, शाह से शादीपुर वाली आ गई है। हेलो
3: हेलो मैम।
2: शालू, कैसा लग रहा है आपको आकाशवाणी रेनबो पर बात करके, अपनी आवाज सुन के?
3: मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा, सब दिन क्या बोलूँ
2: समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूँ।
3: यस मैम।
2: चलिए, मैं जो जो पूछूंगी वो आपको बताना है, ठीक है?
3: Yes,
2: अब मैं पूछ रही हूँ कि जो सवाल था उसका जवाब बता दीजिए कि अपकमिंग फिल्म लाहौर 1947 में सनी देओल के अपोजिट कौन सी हीरोइन लीड रोल में?
3: प्रीति जिंटा नाम है।
2: प्रीति जिंटा, बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ आज बन जाती हैं शादीपुर वाली शालू बॉलीवुड सरताज। कॉन्ग्रेचुलेशंस शालू।
3: थैंक यू मैम।
2: तो शालू, आपकी नर्वसनेस देख के ना मैं थोड़ा सा खुश हो रही हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई भी लड़की डरते डरते या कोई भी पहली बार कॉल करता है और कहता है कि मैं पहली बार बात कर रही हूँ, मैं थोड़ा नर्वस हूँ, या पहली बार बात कर रहा हूँ थोड़ा नर्वस हूँ, उसके बाद इतनी सारी बातें कर जाता है वो। तो शालू, कुछ कहना चाहेंगे आप?
3: इतनी खुशी भी हो रही है।
2: इतनी खुशी क्या करती है शालू?
3: पहली बार मेरा कॉल, मतलब आंसर, जवाब तो मैं बार बार देती थी, पहली बार मैं सरताज बनी।
2: तो बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप सब को मौका मिले। तो आपका नाम देखा मैंने भी सोचा कि चलो ट्राई करते हैं ये शादीपुर वाली शालू कैसे हैं। तो कैसी हैं और क्या करती हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। शालू, क्या आप कुछ काम करती हैं, घर पे रहती हैं, पढ़ाई करती हैं, क्या करती हैं?
3: मैं पढ़ाई तो मैंने बीए कर लिया है, पर चार्जर का काम करती हूँ।
2: चार्जर का?
3: मेरे पापा पहले रेडियो भी बनाते थे।
2: अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा काम, मतलब हमारी हमारी फील्ड से जुड़ा हुआ काम है।
3: मैम, मेरा रेडियो भी बड़ा, अभी तो 4-5 रेडियो पड़ा है मेरे पास।
2: क्या बात है।

तो एक रेडियो तो आप गिफ्ट कर ही दीजिए, मेरा वाला खराब हो रहा है। चलिए शालू, फिर आपसे बात करते हैं इस बारे में, डिटेल में बात करनी होगी, फिलहाल सबको नहीं बताना है। और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, इसी तरह से दिल से दिल तक फिर से आप फिर से कभी बात करेंगे और डिटेल में, ठीक है शालू? ओके, बाय बाय, थैंक यू। तो ये थी शालू आज की बॉलीवुड सरताज। आप भी बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज अगर आप ध्यान

इनकी बात तो सुन ली, मेरी बात भी ध्यान से सुनिए। एक बजे आपके लिए लेकर आऊंगी रेनबो हेल्पलाइन और हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगी और बहुत बढ़िया विषय पर बात होगी, संकट से सम्मान तक, महिलाओं के पुनर्वास की दिशा में प्रयास। इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान होंगी वो होंगी आर विमला, जो कि IAS हैं, रेजिडेंट कमिश्नर महाराष्ट्र एंड सेक्रेटरी महाराष्ट्र सदन में। तो उनसे बात करेंगे और इस विषय पर बात करेंगे। आप भी अपने सवाल रख सकते हैं। बॉलीवुड ट्रेल्स फिलहाल यहीं तक। बाय बाय, बबीता त्रिपाठी से इस टाटा बाय बाय, लौट कराऊंगी 1 बजे। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए।

0: प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपोलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई, जहां उन्होंने शी जिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे की जाँच जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 75,157 पर जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में

सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी पर रेनबो हेल्पलाइन, ये है समय जो कह रहा है कि शुरुआत हो ही जानी चाहिए रेनबो हेल्पलाइन, क्योंकि आपके लिए काफी हेल्प करता है। हर तरह से, हर तरह के टॉपिक आप तक पहुंचते हैं ताकि आपके लिए कोई भी मुसीबत, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप किस तरह से हेल्प लें, किस तरह से अपने आप को गाइड करें, वो दिशा दिखाता है ये शो रेनबो हेल्पलाइन। आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी और आज रेनबो हेल्पलाइन में महिलाओं के लिए खास तौर से बात, संकट से सम्मान तक, महिलाओं के पुनर्वास की बात होगी, महिलाओं के पुनर्वास की दिशा में प्रयास आज का टॉपिक है, संकट से सम्मान तक, महिलाओं के पुनर्वास की दिशा में प्रयास। और इसके लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ी हैं वो भी हमेशा की तरह एकदम खास हैं, आर विमला जी, और ये है IAS रेजिडेंट कमिश्नर एंड सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में। तो चलिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की रेजिडेंट कमिश्नर एंड सेक्रेटरी, चलिए हम बात करते हैं उनसे और सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं आकाशवाणी रेनबो पर। तो विमला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद बबिता जी।
1: तो चलिए इसी के साथ हम बहुत सारी बातें करें, आप सबके सवालों को भी जोड़ लेते हैं और वो कैसे जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे किस तरह से, फोन नंबर्स के जरिए या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए। फोन नंबर्स 2342-1080 या 2342-1084 दो नंबर्स हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज करना चाहते हैं, अपना सवाल लिखना चाहते हैं तो 9868107070 का सहारा लीजिए और अपना व्हाट्सएप मैसेज हम तक पहुंचा दीजिए, अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ। तो मैं चाह रही हूं कि विमला जी से सबसे पहले जवाब मांग लूं कि भाई इस

0: टॉपिक से, इस विषय से हमारा क्या मतलब है, ऐसी ज़रूरत ही क्यों पड़ी?
1: बबीता जी, हम अगर देखें और सोचें कि हमारे देश में हम कहते हैं कि नारी शक्ति है, नारी देवी का रूप है, घर में समान हक होना चाहिए
0: जी।
1: पर अक्सर हम लोग देखें कि हर जगह आज की नारी कई जगह असुरक्षित है। घर के भीतर अगर हो तो घरेलू हिंसा होता है, मानसिक उनको कुछ सामना असंतुलन सहना पड़ता है, दहेज की बात होती है, आर्थिक निर्भरता होती है। सार्वजनिक स्तरों पर मतलब आमतौर पर अगर हम लोग देखें, अक्सर भी हम लोग देखते हैं कि सड़कों में, बाजार में, पार्क में छेड़छाड़ में अक्सर उनको सामना करना पड़ता है। रात के समय शौचालय जाते समय भी उन्हें असुरक्षितता होती थी। सार्वजनिक परिवहन में हमने अनेक ऐसे उदाहरण देखे हैं जहाँ पे वो असुरक्षित है। कार्यस्थल पर अनफॉर्चुनेटली यौन उत्पीड़न होती है, वेतन में भेदभाव होता है, मानसिक दबाव होता है, और शैक्षणिक में तो रैगिंग की बात होती है, कभी कभी शौचालयों का प्रबंधन नहीं होता है, तो एक असुरक्षित वातावरण होती है। डिजिटल में आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत तरह से हम लोग देखते हैं डीप फेक्स है, साइबर बुलिंग है, फर्जी प्रोफाइल बनाए जा रहे हैं, निजी तस्वीरों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और सामाजिक मैं आश्चर्यचकित हुई थी कि महिला बाल विकास, जब मैं सेक्रेटरी थी मुझे लगा था कि बाल विवाह खत्म हो गया है, पर बाल विवाह अब भी शुरू है। तो इस तरह के जो आपदा महिलाओं पे है, मानव तस्करी होती है, रोजगार की असुरक्षा होती है, तो हर तरह से आज हम लोग देखें, हम कह रहे कि महिलाएं की डेवलपमेंट हो चुका है, बट एट द सेम टाइम हम अनुभव करते कि कई प्रकार के इन्हें डिफिकल्टीज है और असुरक्षित कई जगह वो फील कर रही है। तो आज हम लोग यही सोचना और समझना चाहते हैं कि इससे बाहर गवर्नमेंट काफी सा पहल उठा रही है और वो लोगों तक पहुंचाना चाहिए और वो आगे कैसे बढ़ सकती है, इस पे हम लोग चर्चा करना।
0: हाँ, और आपने जैसे बताया कि इस तरह से इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है, और हम सबको पता है कि हम महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हेजिटेशन ज़रूर है हम महिलाओं में। बहुत सारी बातें हैं जो उनके दिमाग में चल रही होती हैं, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, और खुद अपने लिए वो शायद प्रायोरिटी अपने आप को नहीं रख पाती हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उन रीजंस की भी बात करेंगे, और उसके बाद वो उससे निकलते हुए किस तरह से बहुत सारी गवर्नमेंट योजनाएं हैं या अपने लिए किस तरह से वो हौसला बांधकर आगे बढ़ सकती हैं, इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और चर्चा नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं, बात आगे नहीं बढ़ेगी। और हम चाहते हैं कि महिलाएँ सशक्त हों, सुरक्षित हों, और कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके लाइफ को वो भी पूरी तरह से इंजॉय करें जैसे कि समाज में होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहता है, और आज विमला जी बहुत अच्छे से आप सबको गाइड करने के लिए तैयार हैं। अगर कहीं आप महिलाओं को या आपको लग रहा है कि कहीं कहीं आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं लेकिन उसका सलूशन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से उसका निकाला जा सकता है हल, तो ठीक है, आपके लिए ही तो ये नंबर्स हैं जिनका उपयोग करके आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं। हमारी अतिथि आपका पूरे तरह से अच्छी तरीके से गाइड करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 2342108024, 2342108484, ये दोनों हमारे नंबर्स हैं जिन पर आप कॉल कर सकती हैं, या आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए भी अपना सवाल हमको लिख कर भेज दीजिए। 9868107070 ये हमारा नंबर, जिसका लाभ उठाइए और फटाफट व्हाट्सएप मैसेज कर डालिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: ये है आकाशवाणी और आकाशवाणी पर शो चल

0: है रेनबो हेल्पलाइन। आपके साथ हूँ मैं बबीता त्रिपाठी और मेरे साथ हमारी अतिथि आर विमला जो कि IAS हैं, रेजिडेंट कमिश्नर एंड सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में। तो चलिए उनसे हम बात करते हैं और आज विषय क्या है, आज का विषय है संकट से सम्मान तक, महिलाओं के पुनर्वास की दिशा में प्रयास। आपने बताया विमला जी कि हर तरह से हर फील्ड में आप देख लीजिए कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी ज़रूर देखने को मिलती है। वो बात अलग है कि अभी बहुत सारे पुरुष ये कहने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे या महिलाएं हैं कि सशक्तिकरण के नाम पर बहुत सारे फ़ायदे भी उठाए जा रहे हैं, ऐसी भी चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर ज़मीनी तौर पर देखा जाए तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो महिलाओं को, चाहे वो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं या फिर बाहर किसी तरह का वायलेंस हो, और बहुत सारे ऐसे केसेस आपको हर दूसरे दिन दिख जाएंगे जहां पर बहुत पढ़ी लिखी महिला थी, बहुत अच्छे परिवार से थी, लेकिन शादी के बाद या शादी के पहले उसके साथ कितना गलत व्यवहार हुआ, वायलेंस हुआ, और कई बार ये चीज़ें बाहर तक नहीं आ पाती हैं। आप क्या कहेंगी?
1: बिल्कुल, अगर हम लोग देखें तो महिला की असुरक्षितता घर में तो है ही और बाहर तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की उन्हें डिफ़िकल्टीज़ उनका सामना करना पड़ता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मुझे लगता है कि वन स्टॉप सेंटर, सखी वन स्टॉप सेंटर जो गवर्नमेंट ने स्थापित किए, प्रत्येक जिले में ये ऐसा एक सेंटर स्थापित किया है कि जो पीड़ित महिला है सबसे पहले चाहती है कि जब वो पीड़ित हो कि कहीं ना कहीं मुझे आश्रय मिले। तो ये जो सेंटर होता है जिले के प्रत्येक जिले में होता है जहाँ पर महिला जा सकती है। 800 से ज़्यादा हमारे देश में ये सेंटर्स हैं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में दो भी हैं। तो वहाँ अगर ये पहुँचे तो 5 दिन का आश्रय तो इन्हें मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा इनको मेडिकल हेल्थ जो सपोर्ट होता है, लीगल सपोर्ट चाहिए, और बेसिकली जो उनको काउंसलिंग चाहिए रहता है, पुलिस की जो सपोर्ट चाहिए रहते, तो हर प्रकार से इनको इस वन स्टॉप सेंटर जो सखी के नाम से ही जाना जाता है, उन्हें इस तरह का सपोर्ट मिल सकता है। तो वहाँ बेशक कई महिलाएं जो मैंने देखा भी है और इस पर मैंने रिसर्च भी किया है, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि महाराष्ट्र में 10,000 से ज्यादा महिलाएं यहां पर पहुंची थी, और जब वो यहां पर पहुंची तो हर बार उन्हें ऐसे हर बार आधार मिला हुआ है, वो आगे बढ़ चुकी हैं। उनको सपोज उनको कुछ लीगल सपोर्ट चाहिए था या हेल्थ का था ये था, बिकॉज वहां पे बेड्स अवेलेबल होती है, डॉक्टर अवेलेबल होता है, काउंसिलर्स अवेलेबल होती है, पुलिस वहीं पर आके इनका जो FIR दर्ज करा लेते हैं, तो परिपूर्ण तरह से वो सुरक्षित तो रहती है। इसके अलावा उसको सारा सपोर्ट मिलता है और उसकी गाइडेंस भी मिल जाती है कि 5 दिन के बाद उसको कहां जाना, ये भी बड़ा प्रश्न हो सकता है।
0: अच्छा।
1: तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है जिसमें संबल है, तो इसमें वो जाकर के जो हमारा महिला सहायता केंद्र है जो हॉस्टल्स होती हैं, तो वहां जाकर वो आश्रय ले सकती है, कंटिन्यूअसली 2 साल के पीरियड तक वो वहां रह सकती है। तो इस तरह से अलग अलग योजनाएं गवर्नमेंट की, और सबसे बड़ी बात है कि 181 हेल्पलाइन है। तो 181 हेल्पलाइन में अगर किसी ने भी फोन किया तो उन्हें तुरंत जवाब मिलता है। जैसे हमें आज ही मैंने या कल कोई पेपर में देख रही थी किस तरह के सपोर्ट महिलाओं को इस प्रकार से 181 हेल्पलाइन से मिल पाया है। तो गवर्नमेंट से हर तरह से हमें ऐसी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि महिलाओं तक हम लोग पहुंचे, उनको ये आधार मिले कि वो अकेली नहीं है। जबकि इस तरह का उनके लाइफ में कुछ किसी भी प्रकार की तकलीफ आए तो वो गवर्नमेंट को सपोर्ट सीख कर।
0: आपने जैसे कहा कि बहुत सारी महिलाओं को किस तरह से वो वन स्टॉप जो सेंटर है वो हेल्प कर रहा है, बट ऐसी जगहों पर भी क्या कोई प्रयास किए जाते हैं जहाँ पर महिलाओं के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है, गांव देहात के एरिया हैं, ऐसा ही कुछ सवाल है, तो मैं सोच रही हूँ कि उन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं जो हमारे लिसनर हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी, सबसे पहले तो मेरा मैम साहब को नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश।
1: हाँ जी,
2: मेरा सवाल ये ऐसा है कि जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं, तो उनको पुनर्वास कैसे किया जाए, क्योंकि कई महिलाएं ऐसे हैं जो अपनी आवाज उठा नहीं पाती हैं या उनको कानून का ज्ञान नहीं है, क्योंकि कई बार उनके पास जो है फोन नहीं दिया जाता है, क्या बोलते हैं कि, तो किस तरह से वो अपना हेल्प ले सकती, क्योंकि उनके पास फोन जो हिंसा करते हैं वो फोन तो नहीं दे सकते, उनको पता कि हमारी कंप्लेंट होगी तो फिर वो कैसे कर सकती है।
0: चलिए, थैंक यू सो मच अपने सवाल के लिए। आप जवाब सुनिएगा रेडियो पर, और ये आप ही की जो आपका सवाल है ये बहुत अच्छी बात है कि ये एक पुरुष की तरफ से ये सवाल आया है जो कंसर्न दिखा रहे हैं कि महिलाओं को किस तरह से असुरक्षित माहौल मिल रहा है गांवों में कई बार।
1: तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैं स्वयं सहायता गट की बात आपसे कहूँगी कि हर जिले में, हर गांव में आज की तारीख में जो NRLM आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता गट उपलब्ध है, वहाँ अगर महिला जाए तो सारी महिलाएं इनके साथ जुड़ी रहती है और अच्छा। उनका

0: ये सारा नेटवर्किंग ही इसी काम के लिए रहता है कि जो सबसे पीड़ित महिला हो तो उसे पहले तो घर से बाहर निकाल कर गट में स्थापित करवाना, उनको सपोर्ट देना, फिजिकल मेंटल जो भी है काउंसलिंग कराना, तो ये अपने गांव में ही इनको सपोर्ट मिल सकता है। तो ये जाकर स्वयं सहायता गट में शामिल हो जाए, और करीबन हमारे देश में 90 लाख से ज़्यादा भी इस तरह के गट हैं, तो ये आपको वहाँ से सपोर्ट मिल सकता है। या तो फिर आंगनवाड़ी सेंटर है, आप आंगनवाड़ी सेंटर में अगर चले जाए तो वहाँ पे आंगनवाड़ी गाड़ी जो दीदी होती है उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, या फिर आशा वर्कर भी होती है, मेडिकली अगर भी हो वो तो वो आपको सपोर्ट कर सकती है। ग्राम पंचायत कार्यालय होता है जहाँ पे हमारे जो प्रधान होते हैं, ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहे तो जो पटवारी होते हैं उनके कार्यालय में भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो प्रत्येक गांव में इस तरह की कार्यालय हैं जहां पे आप अप्रोच कर सकते हैं, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि वहां आपको हर तरह का जो सपोर्ट है वो ज़रूर मिल जाएगा। और पास के पुलिस स्टेशन में भी जो सेंटर्स हैं कुछ ऐसे, वहां पे काउंसलिंग के लिए भी लोग रहते हैं, वो आपको निश्चित रूप से हेल्प कर सकते हैं।
1: एक और सवाल इसी बीच हमारे पास आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको भी लाइन पर ले ही लेते हैं और देखते हैं उनका सवाल क्या है, और ये भी पुरुष की तरफ ही है, सही है। हेलो,
2: हेलो,
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
2: ज्योत्स्नी भुपेजा, LPP तुमपुरा, दिल्ली से मैं बात कर रहा था।
1: जी बताइए
2: मेरा
1: सवाल।
2: प्रश्न था कि किसी भी युग में महिलाएं विधवा या कहते हैं डिवोर्सी हो जाती थी, तो उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, और आज के युग में 3,000 रुपये मंथली दे रहे हैं प्लस फ्री बस पास, तो सदुपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ उस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि कौन सी सरकार ने या कुछ शासन ने ज्यादा बेहतर करके दिखाया है। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।
0: तो मैं समझती हूँ कि जो स्कीम है हर स्टेट के अलग अलग प्रकार की स्कीम है। तो दिल्ली में फॉर एग्जांपल आप बता रहे थे कि 3,000, और निश्चित रूप से जो फ्री बस की पासेस हैं, हम देखते हैं कि आमतौर पे महिलाओं को घर से बाहर निकलना सपोर्ट मिलता नहीं है। तो एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स अगर मेरे पास ना भी हो तो मैं महाराष्ट्र का निश्चित रूप से कह सकती हूँ जहाँ पे मैंने काम किया है, कि जितनी भी महिलाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से बाहर निकलना चाहती थी, आधी आबादी तो महिलाओं की है, तो ये घर से बाहर निश्चित रूप से निकल सक रही हैं, जहाँ पे इनको एम्प्लॉयमेंट है वहां तक पहुंच पा रही है।
1: जी, सवाल
0: स्कूल
1: बताइए।
0: के एजुकेशन अपन अगर हम लोग देखें तो उनके नंबर ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट्स है वो
1: नहीं,
0: कम
1: नहीं,
0: हो
1: हम
0: चुके हैं।
1: फटाफट
0: तो ये
1: सवाल
0: सारे
1: बताइए क्योंकि
0: रिफ्लेक्शंस
1: आप
0: होती हैं
1: कौन ले
0: जिससे
1: सकते।
0: हमें नंबर्स मिल सकता है। पर जो हमारे वेबसाइट्स होती हैं, तो जैसे पोषण ट्रैकर
1: वही
0: है
1: बता रही
0: हमारा,
1: है वो,
0: उसमें हमको
1: आपको
0: इन्फॉर्मेशन
1: कोई
0: मिल सकती है कि
1: स्पेसिफिक
0: महिलाओं
1: सवाल
0: को
1: है तो
0: कितने
1: बताइए।
0: सपोर्ट मिल रहा है। वहां से आपको प्रत्येक वेबसाइट में मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन कि कहाँ कहाँ
1: सवाल
0: पे क्या क्या
1: सुनिए।
0: सपोर्ट मिल रहा है।
1: तो इस तरह से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और मेरे पास अभी लगातार कॉल्स आ रही हैं, लेकिन कुछ कॉल्स हम अभी अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो सवाल अगर हमने कवर कर लिया है, हमने जिसका जवाब दे दिया है मैम ने, अगर आप वो सवाल रिपीट नहीं करेंगे तो आपकी कॉल लेने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राजेश कुमार चौहान जालंधर से लिख रहे हैं, इन्होंने कहा है कि मैम आज हमारे देश में बेटियाँ हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेटियों के प्रति संकीर्ण मानसिकता रखते हैं, इन्हें आगे बढ़ने के मौके नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगी?
0: सच कहे तो हमारे स्कंद पुराण में भी लिखा है कि एक बेटी 10 बेटों के बराबर होती है, पर दुर्भाग्य की ये बात है कि जब बेटी पैदा होती है तो हम इसका जो सब सेलिब्रेशन नहीं करते, दुख मानते।
1: जी
0: तो इसीलिए हमने शासन की तरफ से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो इसके तहत अगर हम लोग देखें तो बेटियों को पढ़ाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए हमारे स्कीम्स के तहत हम लोग बच्चों को जो सपोर्ट दे रहे हैं, तो आज तक हम लोग देखें कि 640 जिले में इस तरह से ये स्कीम चल रही है, और लड़कियों को जन्म के उपरांत उनको सुरक्षा के लिए, उनकी शिक्षा बढ़ाने के लिए उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो प्रधानमंत्री मातृत्व योजना जो है, तो इसमें पोषण की बात होती है कि महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको बच्चों को जो न्यूट्रिशन की बात होती है या आयरन टैबलेट्स की बात होती है, तो ये पहुंचाने के लिए, तो इस तरह से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना है या जननी सुरक्षा योजना है, जहाँ पे अगर लड़की पैदा हो तो 1,400 रुपये या 1,000 रुपये माता और शिशु के मृत्यु दर में कमी करने के लक्ष्य से किया गया है। तो अलग अलग प्रकार की योजना है जिसमें महिला अपने बच्चों को सुरक्षित रखे। ICDS की जो योजना है, इसमें जो परिपूर्ण पोषण ट्रैकर होता है, जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं जो इनको अपना खाना देती हैं, जो मील हॉट मील हो सकता है या जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होता है, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कराने के लिए जो जननी सुरक्षा योजना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे या लड़कियां असुरक्षित कब होती है कि जब वो घर में जच्चा और बच्चा साथ में रहता है. अगर इंस्टीट्यूशन में जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो एक तो उनकी देखभाल भी होती है और वहां उनकी डिलीवरी हो तो बच्चे को

0: इंजेक्शन ज्यादा अच्छा मिलता है, टीका लगने में सुविधा हो जाती है। तो अलग अलग तरीके से महिलाओं को जो है, जैसे गर्भवती महिला से लेकर बच्चे पैदा होने तक और आंगनवाड़ी में जो है 6 साल के बच्चे तक, तो इसमें परिपूर्ण सेवा होती है, जिसमें पोषण तो होता ही है, स्वास्थ्य की ध्यान रखी जाती है, स्कूल की शिक्षा आंगनवाड़ी में मिल जाती है। तो 6 साल के बच्चे को नॉर्मली कहते हैं कि 1000 डे जो विंडो होता है, तो जब से प्रेग्नेंट औरत होती है उस विंडो में जब हम लोग बच्चे को टारगेट करें, तो पैदा होने के पहले जो है 300 डेज और पैदा होने के बाद 2 साल, तो बच्चे की मैक्सिमम ग्रोथ उसी में होती है। तो गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम्स दिए हैं लोगों के लिए, इसमें सारा यही एम्फेसिस किया है कि आंगनवाड़ी में ये सारा 360 डिग्री ग्रोथ वो बच्चे का हो। तो आंगनवाड़ी सेंटर इज द बेस्ट प्लेस जहाँ पे महिलाओं को जाकर ये सारे स्कीम्स के फायदा मिल सकता है, और वहाँ सभी महिलाओं ने जाना चाहिए। कई बार जो है फैमिली भेजती नहीं है, तो महाराष्ट्र में ऐसी भी स्कीम निकाली थी कि सब लोग आकर अपना पॉटलक एक साथ बैठ के खाना खाए, तो सास को भी ले आए अपने घर से, बच्चों को भी ले आए जो अगर पैदा हो, तो एक साथ रहना। समाज के में बदल कब आएगा? जब हम खुद हो, जैसे अभी हमारे साथ जो बंधे हुए सारे भाई लोगों के ही फोन आ रहे हैं मुझे पूछने के लिए, जो हमारे बंधु है।
1: जी
0: तो ये सपोर्ट जब घर से मिलता है तो मुझे लगता है स्त्री को पनपने में ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये संदेश भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी श्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि ये पहल कोई भी हो, हम कितनी भी कोशिश कर ले, अल्टीमेटली फैमिली सपोर्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप और मैं अगर हम लोग बाहर है और बात कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे परिवारों ने हमारे इस तरह का एक पोषक वातावरण दिया था जहां हम बड़ा सा हो सके।
1: जी
0: तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: तो सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं या बाद में जुड़े हैं, जिनको नहीं पता कि किस तरह से वो हम तक कनेक्ट कर सकते हैं, तो फटाफट फोन नंबर्स लिख लीजिए। और आज हम बात कर रहे हैं संकट से सम्मान तक, महिलाओं के पुनर्वास की दिशा में प्रयास, इस विषय पर। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट हैं आर विमला, जो कि आईएएस हैं, रेजिडेंट कमिश्नर एंड सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो उनसे हम बहुत डिटेल में जानना चाहेंगे और जान भी रहे हैं, तो फटाफट आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए 2342-1080 या 2342-1084 पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करिए इस नंबर पर 9868-1070-70 9868-1070-70। आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन, आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी। One more time.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आकाशवाणी रेनबो पर रेनबो हेल्पलाइन चल रहा है, आपके साथ हूँ बबीता त्रिपाठी और मेरे साथ है हमारी एक्सपर्ट आर विमला जो कि IAS हैं, रेजिडेंट कमिश्नर एंड सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में। और अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं संकट से सम्मान तक महिलाओं के पुनर्वास की दिशा में प्रयास इस विषय पर, और आप सबके जो सवाल हैं वो लगातार आ रहे हैं। अगर अभी तक सवाल नहीं पूछा है तो फ़ोन घुमाइए, 2342108 मिलाइए या 2342108 पर कॉल कीजिए। अगर दिल्ली NCR के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 011 लगाकर इस ये नंबर डायल कर सकते हैं, और आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, 9868107070 इस नंबर पर। तो अभी फिलहाल मेरे पास एक सवाल कॉल के थ्रू आया हुआ है और मैं चाह रही हूं कि वो सवाल लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हेलो।
5: हेलो,
4: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
5: मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
4: जी राजेंद्र जी, सवाल बताइए।
5: तो पहले तो बहुत मैम्स को गुड आफ्टरनून।
6: गुड आफ्टरनून।
4: गुड आफ्टरनून जी।
5: जी, मेरे एक दो छोटे छोटे सवाल है और अगर आप अनुमति दें तो मेरे एक दो छोटे छोटे सजेशन भी हैं।
4: जी, तो सवाल बताइए, सजेशन तो मैम दे रही हैं।
5: हाँ जी, सवाल मेरा ये है मैम कि जो है ये 33% जो आरक्षण गवर्नमेंट ने दिया हुआ है फीमेल को, क्या ये पर्याप्त है? ये 50% ही होना चाहिए। और दूसरा सवाल है कि क्या नारी डिफेंस में कानून बनाने से बात बन जाएगी? हमें इसके लिए अपनी मानसिकता में भी जो है चेंजिंग नहीं लाना चाहिए। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि हमने नीति निर्देशक तत्व में सिर्फ इतना लिखा है संविधान में कि नारी के प्रति आप सिर्फ सम्मान का भाव रखें, इसको कंपल्सरी क्यों नहीं बनाएगी? ये करना ही है आपको, सिर्फ लिखा सम्मान का भाव रखें। उसी तरह के संस्कृत धर्म में हमने लिखा है नारी हमारी बुत है, दासी गुलाम है, हमारी सहचरी जीवन साथी थोड़े हैं, तो इसमें करेक्शन की आवश्यकता नहीं है क्या? तो
4: आपके सवाल का प्लीज जवाब लीजिए, लेकिन इतने सारे सवाल एक साथ मत पूछिए, एक सवाल एक बार में। और अभी जो आपने जो नारी के आरक्षण की बात की और जो इन्होंने बहुत सारी बातें की, उसका जवाब आप एक साथ दे दीजिए प्लीज।
6: तो महिला के आरक्षण देने का कारण क्या था कि समान अवसर प्रदान करे या राजनीतिक भागीदारी बढ़े, भेदभाव कम हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, नेतृत्व का सामना करने उन्हें मिलने? तो ये आरक्षण हमने जो किया हुआ है संविधान में भी है कि समानता का अधिकार है, तो ये ऐसे नहीं है कि अवसर की बात है। ये इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि दोनों समक्ष समान है और उन्हें इस तरह से अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो भेदभाव का भी निषेध इस तरह से किया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए, बट महिलाओं के लिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात है कि 15(3) जो तहत अनुच्छेद है अपने संविधान का, उसमें हमने विशेष कानून महिलाओं के लिए बनाई है। और इसी के तहत अगर हम लोग आज देखें तो महिला सुरक्षा कानून हो, आरक्षण हो, पुनर्वास की योजना हो, आश्रय घर हो, हेल्पलाइन हो, ये सारे उसी के तहत है। तो इसीलिए ये कहना सही नहीं होगा कि महिलाओं को एनफोर्स करने की बात नहीं आ रही है या उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमारे संविधान में है और लोगों को मिल भी रही है। हमारे जितने भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उस हर स्कीम में महिलाओं को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अगर हम लोग देखें तो पहले MG नरेगा था, अभी विकसित भारत जी राम जी है, इसमें महिलाओं को सेम वेजेस की बात आती है। तो गवर्नमेंट या किसी भी स्कीम में एक्सपेक्टेड ये है कि गाइडलाइंस है तो गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए और एनफोर्समेंट भी हो रहा है, जैसे पॉश है या इस तरह की स्कीम्स जो आ रही है कि जो महिलाओं को अगर वो डिप्राइव्ड है या पीड़ित है तो उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है. तो इसीलिए मैं नहीं मानती हूँ जो मेरे श्रोता कह रही है कि उनको उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन की बात है. निश्चित रूप से माइंडसेट की बात जरूर है,
4: बिल्कुल,
6: क्योंकि आज भी हम लोग अगर देखें तो जैसे हमारे श्रोतागण जिन्होंने भी फोन किया है, इनकी जरूर इच्छा है, प्रकट शक्ति है कि महिलाओं के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े, उनको एक इक्वल स्थान मिले हमारे समाज में. पर हर एक व्यक्ति के मन में जब तक ये न आए, और ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं है या जिस तरह से हक मिलने की बात नहीं है, ये घर से शुरुआत होती है कि घर में किस तरह से हम लोग अपना पोषक आता जो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं अपने बच्चों के लिए, और वहीं से शुरुआत होगी. अगर हमने वहां से शुरुआत की कि इक्वल जो बच्चा लड़का या लड़की हो, इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन ना हो इनकी पढ़ाई में, इनके पोषण में, इनके देखभाल में, तो ऑटोमेटिकली ये समाज में आगे बढ़ती जाएगी बात, तो तब ये आरक्षण की बात निकल जाएगी. पर आज की तारीख में निश्चित रूप से आवश्यक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आज भी कई विषमताएं हैं. तो जो हमारे बंधु कह रहे हैं कि इसको बढ़ाना चाहिए, मैं नहीं मानती कि बढ़ाना है, अभी तो निश्चित रूप से 50% तक तो कई जगह हो चुका है, कहीं कहीं हमारे 33% रिजर्वेशन है. तो रिजर्वेशन बढ़ाने से ही बात नहीं बढ़ेगी, ये अगर हम लोग रिजर्वेशन के प्रति जो रियल रूप जो महिलाओं को जो सपोर्ट करना है, और स्पेशली जो हिंसा की बात होती है महिलाओं के अगेंस्ट, ये जब तक ये डिग्निटी और रिस्पेक्ट की बात है, नॉर्मली ये पुरुषों के प्रति कोई इतनी तरह इस तरह का अनडिग्निफाइड बिहेवियर होता नहीं है. तो माइंडसेट हमारे घर से, हमारे समाज से ही शुरू होगा, तभी चेंज हो सकता है.
4: इसी तरह का एक सवाल शैलेंद्र वर्मा का भी है कि इन्होंने लिखा है, घर में बेटी और बेटे का फर्क होता है, इसे कैसे खत्म किया जाए?
6: भाई ऐसा है कि ताली तो घर में ही बजेगी और मतलब वहीं से शुरुआत होगी. तो अब जैसे मैं अपना निजी उदाहरण दूं तो हम लोग चार भाई बहन थे, तो अपने पेरेंट्स से हमें तो कभी ऐसा कोई भेदभाव मेरा हुआ नहीं, या मैं जो समाज में उसे निकली हूँ, हाँ मैं पढ़ाई करी हूँ और मैं आज मैं दिल्ली स्थित काम कर रही हूँ, तो मेरे पति फिलहाल तो मुंबई में है. तो हमको किस तरह का एटमोसफेयर घर में मिलता है, हमको किस तरह का सपोर्ट मिलता है, और आमतौर से मुझे लगता है ये पुरुष को ही फर्स्ट स्टेप उठाने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो ये जो डिफरेंस ऑफ थॉट्स है, अगर हम लोग देखें तो हमारे संस्कारों में या हमारे जो भी गाइडलाइंस है समाज के, तो नॉर्म्स तो जेंडर ओरिएंटेड जब बने हैं, जबकि पुरुष प्रधान संस्कृति हमारे यहाँ है कि बेटी जब होती है तो जैसे लोग बर्फी या बांटते हैं, पेड़े नहीं बांटते. तो हमारा ये माइंडसेट जो है ये घर से जब बदलेगा,
4: हाँ,
6: तो वहां से पहल शुरू होगी, तो तभी हम ये इतने सारे जो योजनाएं हमारी गवर्नमेंट से हम दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि समाज में बदल आए, तब
4: बिल्कुल. और एजुकेशन की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, और जो गवर्नमेंट ने योजनाएं बनाई है उन सब का लाभ लेने की जरूरत है. और उनके बारे में एक बार फिर से हम चाहते हैं कि आप गाइड करें, के बारे में बताएं. एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं और लौट कर आते हैं तो उन सभी योजनाओं के बारे में जानते हैं और उसका लाभ क्यों और कैसे, क्यों नहीं ले पा रहे और कैसे लिया जा सकता है, उस पर और चर्चा करेंगे. आपके सवाल हैं तो अभी भी आप लिख कर भेजिए या कॉल करिए.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: संकट से सम्मान तक, महिलाओं के पुनर्वास की दिशा में प्रयास, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन में। एक्सपर्ट IAS रेजिडेंट कमिश्नर एंड सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हमारे साथ हैं और आप सबके सवालों का जवाब दे ही रही हैं, साथ में बहुत सारी योजनाएं भी बता रही हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से बनी हैं ताकि सभी महिलाओं को लाभ मिल सके। एक बार उन योजनाओं की तरफ फिर से रुख करेंगे और अगर कहीं आप मिस कर रही हैं जानने में, समझने में, तो अपना सवाल लिखकर भेज दीजिए या कॉल करके हम तक पहुंचा दीजिए। 2342-1080 या 2342-1084 पर कॉल करना है, 9868-1070-70 पर व्हाट्सएप मैसेज करना है फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत कम है। सभी योजनाओं को एक बार फिर से सुनना चाहेंगे ताकि कहीं कुछ मिस हो गया हो तो वो सब लोगों तक पहुंचे।
3: हमने जैसे सोशल स्कीम्स, वेल्थ हेल्थ की स्कीम्स हो, इन सब के बारे में बात किया, बट बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये आजीविका एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड स्कीम्स जो हैं, जो महिलाओं को सही स्थान समाज में जो दिलाती है, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट मिलती है महिलाओं को, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, तब वो उसे वॉइस मिलती है फैमिली में और अपने आप को भी वो पनप पाती है। तो इसीलिए हम लोग इस बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ये इसमें छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए जो ऋण मिलता है, 3 प्रकार का इसमें जो ऋण होता है, शिशु और युवा जो है, तो 50,000 से लेकर ये हमें करीब करीब 50,00,000 तक का इसमें हमें सपोर्ट मिल सकता है महिलाओं को अगर कुछ बिजनेस करना हो। अच्छा। तो जैसे शिशु होता, किशोर होता, शिशु होता है 50,000, किशोर 5,00,000, तरुण

0: 10 लाख और 20 लाख तक की उनको सूक्ष्म उद्यमी बनने के लिए सपोर्ट मिल सकता है। आज तक 51 करोड़ से ज़्यादा इनको लोगों को ऋण मिल चुका है और इस साल में 20 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए टारगेट बनाया है गवर्नमेंट ने। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना जो है PMEGP जिससे हम लोग जानते हैं, जिसे तो खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड है या खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, प्रत्येक जिला में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर होता है या ऑनलाइन है, KVIC ऑनलाइन, इसके तहत ही अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट योजना की बात है कि 15 से 35% इन्हें मार्जिन मनी जो है ये सब्सिडी के रूप में मिलता है। अगर एक इन्होंने सपोज 5 लाख का लोन लिया है तो इसे कमी कमी लड़की औरतों को तो 35% वापस देना नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जो इन्हें अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना है तो परियोजना में उनको 50 लाख मिलते हैं।
1: अच्छा।
0: सर्विस कुछ यूनिट सेटअप करना है तो इन्हें 20 लाख रुपए मिलते हैं। तो इस तरह से छोटे उद्योग, सूक्ष्म लघु उद्योग वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि SC ST या महिला के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ की राशि तक का ऋण इन्हें मिल सकता है। और इस तरह का गवर्नमेंट से, बैंक से सपोर्ट वहां जाके वो अगर अप्रोच करे तो इन्हें निश्चित रूप से सपोर्ट मिल सकता है। स्टेप योजना जो है जिसके अंतर्गत लोगों को सपोर्ट अगर चाहिए तो ये अपने वहां पे डिस्ट्रिक्ट में या केंद्र में जाके सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, तो बेसिकली स्किलिंग की जो महत्व होती है, तो स्किल जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसमें से सिलाई हो, कंप्यूटर हो, हस्तकला हो, इसका तो मिलता ही है, पर सॉफ्ट स्किल्स जो है वहां से भी लोगों को मिलता है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो तो वहां पे स्किलिंग की बात होती है। और अभी जो है हम लोग महिला ई हार्ट है या शी मार्ट है, क्योंकि एक बार मैन्युफैक्चरिंग कर लिया तो मार्केटिंग कहां करे, ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती महिलाओं को। तो शी मार्ट के तहत अभी सब जगह शी मार्ट शुरू हो रहे हैं तो वहां जाके वो मार्केटिंग कर सकती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम मुझे लगता है जिसमें फिनोमिनली चेंज हुई है, महिलाएं लखपति दीदी बन गई है, जो है आजीविका मिशन NRLM का जो है, और जिसके साथ मैं भी महाराष्ट्र में 4 साल तक जुड़ी रही। तो आज तक इसमें 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी है, मोर देन 91 लाख इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप संगठित हुई है। तो इसमें ऋण हो, कौशल प्रशिक्षण हो, उद्यमी सहयोग हो, तो हर तरह से एक परिपूर्ण विकास महिला का तब हो सकता है जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट।
1: बिल्कुल।
0: और ऐसे कई स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही, तो ये वेबसाइट में देख सकते हो या ग्राम पंचायत कार्यालय में चले जाइए, आपके जिला कार्यालय में चले जाइए, तो वहां आपको निश्चित रूप से इंफॉर्मेशन मिलेगी। बस यही है कि एक अपना कदम उठाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग जब तक खुद अपना सपोर्ट सीख नहीं करते हैं, जाते नहीं है, तो मिलना सपोर्ट मुश्किल हो जाता है। पर मुद्रा योजना के लिए जो है नंबर हेल्पलाइन जो दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, 1800180111, ये जो मुद्रा की स्कीम के लिए है, या इसमें स्टैंड अप का भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, जनधन योजना, या एक अपनी इंश्योरेंस की भी बात होती है कि हमने अपना इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। तो प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना ये ग्रामीण लोगों के लिए स्पेशल है, या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो महज 436 रुपीज में, 436 रुपए में, या महज 20 रुपए में आपको साल भर का इंश्योरेंस मिल सकता है, 2 लाख या तक का, अगर एक्सीडेंट हो या डेथ हो किसी की फैमिली में। तो ये इस तरह का सपोर्ट भी है कि अलॉन्ग विद एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ इंश्योरेंस, सेल्फ प्रोटेक्शन और हेल्थ कार्ड जो है, आयुष्मान भारत, तो अपना हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निःशुल्क हेल्थ सपोर्ट गवर्नमेंट से मिल रहा है। तो अलग अलग स्कीम में है कि एक परिपूर्ण डेवलपमेंट महिला की है। तो स्वस्थ धान्य दुकान तो होते ही, जहाँ पे आपको फेयर प्राइस शॉप्स में फूड जो है कंसेशनल रेट्स में मिल रहा है। तो जैसे हेल्थ हो, फूड हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हर तरह से, जैसे उज्ज्वला योजना है तो गैस हमें जो मिलता है, सिलेंडर का सब्सिडी मिल रहा है, जल जीवन मिशन के तहत हमें घर में अच्छा पानी मिल रहा है, महिलाओं को जाके दूर दूर तक पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इफ यू सी कि जो ये 360 डिग्री जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जब लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि विमेन रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट और असेंबली की बात चल रही है, ये हो कब पाया, क्योंकि जहां से शौचालय से शुरुआत हुई, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि महिला शौचालय के लिए कहां जाए, घर में वो कर नहीं पा रही थी, बाहर असुरक्षित थी, तो वहां से शुरुआत होके फ्रॉम टॉयलेट टू द पार्लियामेंट, ये इतना बड़ा एक सफर है कि जहां पे महिलाओं की पूरी तरह से डेवलपमेंट हुई है।
1: और जिस तरह से आपने बताया स्कीम्स की लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है, और किसी भी तरह से कोई भी एंगल से कोई चीज छोटी नहीं है जहां पर उनको हेल्प नहीं मिल रही हो, तो प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि उनको अवेयरनेस नहीं है, क्या है कि लोग, महिलाएं जो है सपोर्ट, उनको इतने सारे सपोर्ट होने के बावजूद, इतनी सारी स्कीम्स होने के बावजूद, वो अभी भी बहुत सारे घरों में असुरक्षा की भावना है, बहुत सारी हेजिटेशन है, वो प्रॉब्लम कहां से अराइज हो रही है?
0: ये ऐसा है कि भाई किसी भी चीज में हमें अपनी स्वयं जो है स्टेप उठाना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग देखें कि सोशल मीडिया में आजकल महिलाएं और सभी हम लोग इतने एक्टिव

0: क्योंकि बहुत इजी होता है
1: हाँ।
0: पर अगर किसी स्कीम के लिए कहीं जाना है, बैंक का लोन भी लेना, तो फॉर्म भरने में हमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं
1: हाँ।
0: तो ये स्टेप्स लिए बिना हमको तो सपोर्ट मिल नहीं सकता है ना।
1: मैम
0: तो
1: एक सवाल तो, और था कि एलिजिबिलिटी क्या सभी के लिए, सभी महिलाओं के लिए?
0: 18 से 50 तक का मोस्ट ऑफ द स्कीम, जितनी भी स्कीम्स है 18 से लेके 50 तक है। सिर्फ जननी सुरक्षा है वो 19 से है, क्योंकि लड़की तो 17 में प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। 18 से प्रेग्नेंट शादी होगी, शादी की उम्र कम बढ़ाने में भी जो चल रहा है गवर्नमेंट का कि 21 कर दे महिलाओं के लिए, पर अभी हुआ नहीं है, पर ये भी कोशिश है।
1: अच्छा।
0: तो स्टेप पहला तो हमें ही लेना पड़ेगा
1: जी,
0: क्योंकि अगर हम अपना स्टेप उठाकर जा नहीं सकते। मैं मानती हूँ कि कई कई औरतों को पीड़ित होती है, तो इसीलिए सखी वन स्टॉप सेंटर है, आंगनवाड़ी सेंटर है, जहाँ पे इतना तो हम लोग एफर्ट कर सकते हैं। अब किसी रूप से ऐसा हो कि महिला बहुत पीड़ित है, शोषित है, तो पुलिस स्टेशन है ही। और ऐसे एकाध इंस्टेंसेस हो सकते हैं कि रिस्पांस कभी कभी हमें लगता है ठीक से मिला नहीं है या रिस्पांस नहीं हो रहा है, पर आमतौर पे आजकल जो जिस तरह की पहल चल रही है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, सर्विसेज एक्ट है, तो गवर्नमेंट भी सशक्त बनाती जा रही है सिटीजन्स को। तो एवरी स्टेप पर लोगों, और ऑल इंडिया रेडियो में अगर हम देखें तो रोज हम लोग इस तरह की योजनाएं सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: पर हम लोग सुनते कैजुअली, लेते नहीं है सीरियसली। तो हम लोग इसको जितना एफर्ट गवर्नमेंट कर रही है आप तक पहुंचाने का, जैसे आज का ये प्रोग्राम है सवाल जवाब, हम सब लोगों से सुन के उनका जवाब दे रहे हैं। तो वी आर देयर, जैसे एक दरवाजा खुला हुआ गवर्नमेंट ने रखा है, ओपन रखा है आपके लिए, पर आपको भी उस दरवाजे तक पहुंचने का कुछ ना कुछ सपोर्ट करके आगे बढ़ने की जरूरत है, ऐसा मैं मानती हूँ।
1: तो कदम हमें ही उठाना होगा, महिलाओं को ही उठाना होगा। बाकी हेल्प के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, बस अवेयरनेस नहीं है। और अवेयरनेस, जैसा कि मैम ने कहा कि आकाशवाणी रेनबो तो आकाशवाणी के माध्यम से तो पहुंच ही रहा है, ये रेनबो हेल्पलाइन तो है ही, साथ में और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, या उनके लिए क्या सुविधाएं हैं वो बताने के लिए, या किसी भी फील्ड में जो भी अवेयरनेस है वो देने के लिए आकाशवाणी रेनबो हमेशा तत्पर रहता है। और रेडियो लगभग हर घर में पाया जाता है, नहीं तो आजकल मोबाइल में है, कहीं भी सुनते हुए आप इसका लाभ उठा सकते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो बहुत सारी बातें हुई और बातों का सिलसिला तो ऐसा लग रहा है कि चलता रहे, क्योंकि हम महिलाओं की बात हो रही है, हमारे अधिकारों की बात हो रही है और दो महिलाएं बात कर रही हैं। तो ऐसे में बात रुके ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करें, समय की जो बाउंडेशन है उसको भी हमें फॉलो करना होगा, क्योंकि आशियाना शो शुरू होने वाला है 2 बजे, उससे पहले हमें वाइंड अप करना होगा। लेकिन चलते चलते मैम आप कुछ कहना चाहेंगी, और हेल्पलाइन नंबर तो बता ही दीजिए उसके साथ साथ।
0: मैं यही कहना चाहूंगी कि हेल्पलाइन 181 तो है ही, इसके साथ आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, वेबसाइट है आजकल सारे सबके पास, मोस्टली सबके पास मोबाइल है, खुद के पास नहीं तो अपने सहेलियों के पास है, अपने परिवार वालों के पास है
1: जी।
0: और अगर वो बंद करके भी रख दिया हो तो गांव में ग्राम पंचायत कार्यालय है, तो ये नहीं कि हम कहीं जा नहीं सकते, आंगनवाड़ी सेविका आपके लिए उपलब्ध है, तो आप जाकर थोड़ा सा अप्रोच करें। और पर्सनली अगर मुझसे जीमेल या किसी तौर से जुड़ना चाहते तो मैं अपना vimshine@gmail.com, मैं विमशाइन नाम से ट्विटर पे भी हूँ। किसी भी प्रकार की आपको सपोर्ट लगे, एज ए इंडिविजुअल पैशन रहा है मेरा, तो आप निश्चित रूप से कभी कुछ लगे सपोर्ट तो मैं आपका ये माध्यम होकर ऑल इंडिया रेडियो से या गवर्नमेंट तक पहुंचाना संभव हो तो करूंगी। पर मेन जो आपको बताया कि हेल्पलाइन आपको गवर्नमेंट का तो है ही, ऑल इंडिया रेडियो है जो निश्चित रूप से 24 घंटे चल रहा है
1: जी,
0: डेली ये प्रोग्राम हेल्पलाइन वाली आती है
1: जी।
0: इससे बेहतर क्या कि मैंने देखा कि 5-6 लोगों ने इतनी जल्दी जल्दी फोन यहाँ पे आ रहे थे, और आश्चर्य की बात है कि सारे पुरुष ही हमसे बात कर रहे थे, हम दो महिलाएं भले यहाँ हो पर उत्सुकता इतनी है
1: हाँ।
0: और कि मतलब इस तरह की
1: कंसर्न है लोगों का, बट ये है कि कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि अवेयरनेस की कमी है, कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि ये योजनाएं काम कहाँ कर रही हैं। तो ये चीजें हैं, सिर्फ अवेयरनेस की वजह से या एजुकेशन की वजह से कई बार इनका लाभ हम कम उठा पाती हैं, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और ये हर परिवार की पुरुषों की जिम्मेदारी खासतौर से है, जैसा कि आपने कहा। तो आपकी बातों में तो बड़ा दम है और लग रहा है कि ये दमदार आवाज लगातार चलती रहे, लेकिन क्या करें, अभी जो समय की सीमा है तो हम फिलहाल आपसे आपको थैंक यू सो मच कहेंगे कि आइए और इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हमें, और ये योजनाएं हैं जो जिससे बहुत सारी महिलाओं को लाभ उठने वाला, आई एम श्योर अबाउट इट।
0: बहुत बहुत बधाई हो ऑल इंडिया रेडियो को, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
1: तो थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी हमारी गेस्ट आर विमला, IAS, रेजिडेंट कमिश्नर एंड सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। आज हमने बात की संकट से सम्मान तक महिलाओं के पुनर्वास की दिशा में प्रयास। आपके साथ मैं बबिता त्रिपाठी थी।

है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो आन आन शान या

0: सर्वशक्तिमान है।
1: मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है।
0: कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार।

जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई हवस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए प्रोग्राम हम कदम। जी, बुधवार दोपहर 2 से 3 बजे का वो समय जब हम डेडिकेट करते हैं हमारे इस प्रोग्राम को आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते के नाम और आपके हम सफर के साथ में। कदम से कदम मिलाकर चलने वाले इस सफर में बनते हैं हम आपके एक छोटे से हम सफर एक घंटे के लिए। 2 से 3 बजे के बीच में सिर्फ वेंसडेज को आप सुनते हैं इस प्रोग्राम को हमारे 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। वैसे डिफरेंसेस की बात हम हमेशा करते रहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, एडजस्टमेंट की बात करते हैं, एक दूसरे का साथ निभाना, ट्रस्ट बिल्ड करना, रिश्ते को मजबूत बनाना, ये सब चीज़ें हम करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमेशा जो है ना, ये एक अपहिल बैटल नहीं होती है किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए। आपके जो शेयर्ड इंटरेस्ट होते हैं ना, मतलब अगर डिफरेंसेस हैं तो उसकी एक अलग मेहनत है जो करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपके शेयर्ड इंटरेस्ट हैं तो वही क्या बात है, मतलब स्मूथ सेलिंग हो तो ऐसी हो। तो चलिए आज हम स्मूथ सेलिंग की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि आपके रिश्ते में जब आपके इंटरेस्ट भी एक दूसरे के साथ मिलते हो तो क्या वो वाकई में आपके रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, क्या वाकई में उतना स्मूथ सेलिंग होता है जितना कि मैंने अभी अभी कहा, नहीं। तो चलिए जानेंगे हम आज के हमारे इस प्रोग्राम में 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। आप सुन रहे हैं हम कदम, मेरे यानी स्वाति के साथ। मैं प्ले करने जा रही हूँ आपके लिए रेखा भारद्वाज की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी बर्फी। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

वो जो रुकी सी चाह बाकी है। कितनी खूबसूरत सी बात है ना, हमेशा कुछ अगर बचा रहता है, किसी भी रिश्ते की बात करें हम या फिर किसी भी गोल की बात करें, मतलब इन जनरल अगर हमारे पास आगे देखने के लिए कुछ रहता है, अगर हमारे पास आगे ढूंढने के लिए कुछ रहता है, आगे बढ़ने के लिए कुछ रहता है, तो हमेशा यू नो इट कीप्स अस गोइंग। कहते हैं ना कि हमेशा जो है अगर आपके सारे अरमान जो है फटाफट पूरे हो जाएं तो फिर एक टर्म आजकल जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बर्नआउट, वो हो जाता है। और रिलेशनशिप्स भी जो है ना अक्सर इस चीज़ से गुजरते हैं। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो प्रोग्राम हम कदम में, मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ। आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या शेयर्ड इंटरेस्ट होना या एक दूसरे के बहुत सिमिलर होने से आपके रिश्ते में जो है बेहतरी आती है, एक स्मूथ सेलिंग आती है या नहीं आती है। वैसे भाई जब आपके हॉबीज मिल जाएं तो अक्सर यही लगता है ना कि अरे भाई वी आर सो सिमिलर, जब एक जैसे होंगे, एक जैसा सोचेंगे तो फिर लाइफ में डिफरेंसेस जो है ना उसकी जगह बहुत कम हो जाएगी। लेकिन एनीवेज जब हम शादी की बात करते हैं, इस बहुत ही खूबसूरत से रिश्ते की बात करते हैं, तो दिमाग में क्या आता है? दिमाग में आते हैं जी सात फेरे, वो खूबसूरत सा लहंगा शेरवानी, टेस्टी खाना, ढेर सारे वादे, ये सारी चीज़ें जो हैं भाई ये तो हर शादी का हिस्सा होती हैं। लेकिन जो शादी में आप जो जोड़े में आजकल जो है एक जैसा कलर आप सेम रख लेते हैं ना, क्या ये कलर्स बाद में भी जाके आपके सेम रह पाते हैं या फिर जैसे ही इन कलर्स की चमक जो है थोड़ी सी फेड होने लग जाती है वैसे ही ज़िंदगी की असली पिक्चर में आपको समझ में आता है कि भाई इतना स्मूथ सेलिंग नहीं है और वही छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बहस जो हैं वो आपके बीच में आने लगती हैं। क्या उन कपल्स की लाइफ वाकई में ज़्यादा सॉर्टेड होती है जिनके इंटरेस्ट आपस में मिलते हैं या फिर डिफ्रेंसेस जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में स्पाइस को ऐड करते हैं? तो चलिए बात करते हैं इसी बारे में। अगर आप और आपके पार्टनर दोनों ही बहुत ही फूडी टाइप्स हैं तो और वीकेंड आते हैं आप दोनों जो हैं अपने फ़ोन पर नए कैफ़े, स्ट्रीट फूड जॉइंट्स की लिस्ट रेडी करके बैठ जाते हैं, आप दोनों को पता होता है भाई दिल्ली के बेस्ट छोले भटूरे खाने हैं तो कहाँ जाना है या शहर की बेस्ट सुशी जो है वो कहाँ पर सर्व होती हैं, तो सोचने में कैसा लगता है? लगता है ना बड़ा कूल है भाई, ना कोई लड़ाई झगड़ा, क्योंकि जब भी टेक अवे की बात हो या कहीं बाहर जाने की बात हो ना डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और सबके पसंद का ना हर बार हो नहीं पाता है। लेकिन अगर आप दोनों की पसंद एक ही हो तो आपको कितना कूल रहता है ये। भाई सुनने में तो वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है। और जब शेयर्ड इंटरेस्ट होते हैं ना तो अक्सर एक फ़ायदा तो ज़रूर होता है कि भाई क्वालिटी टाइम जब आप बिताना चाहते हैं, अपने पसंद का कोई भी काम आप करना चाहते हैं ना, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है सोचना नहीं पड़ता है। अदरवाइज़ हम सभी जानते हैं कि जब घर में दो लोग हों या चार लोग हों तो ऐसे में जो है ना सबके हिसाब से किसी भी काम को करना, ऑब्वियसली मैंने आपको बता ही दिया है कि चाहे बाहर जाने की बात हो, चाहे घर मंगाने की बात हो या वेकेशन डिसाइड करने की बात हो, छोटी से छोटी आउटिंग भी कभी कभी बड़ी पेनफुल हो जाती है जब लोगों के इंटरेस्ट आपस में नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में शेयर्ड इंटरेस्ट हो तो एटलीस्ट ये वाली जो एक परेशानी है ना उससे आपको छुटकारा जरूर मिल जाता है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आप सुन रहे हैं हम कदम मेरे यानी स्वाति के साथ। मैं प्ले करने जा रही हूँ शाश्वत सिंह की आवाज, बहुत ही अमेजिंग सा गाना है चुना है मैंने आप सभी के लिए फ्रॉम द मूवी मेट्रो इन दिनों। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम हम कदम में, मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ। लाइफ इन अ मेट्रो, जी लाइफ इन अ मेट्रो, जहां पे इतनी सुरीली हो सकती है, जो कि अभी अभी आपने सुनी, उसके साथ साथ बहुत स्ट्रेसफुल भी हो सकती है, इसके बारे में भी हम सभी जानते ही हैं। लेकिन उसके बावजूद अपने रिश्ते की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए कोशिश है ना, हमेशा बराबर ही करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, सबको करनी पड़ती है। और अगर आप लकी हैं और आपके पार्टनर के और आपके इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी हद तक सेम है या सिमिलर हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी मेहनत ना कुछ चीज़ों में कम हो जाती है। सब में नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है ना। आफ्टर ऑल परफेक्शन जो है वो तो एग्जिस्ट करती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्हीं इम्परफेक्शंस को जो है ना अपने हिसाब से ढाल लेना या खुद को उसके हिसाब से ढल जाना, यही चीज़ें तो हैं जो लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाकर रखती हैं। एनीवे, शेयर्ड इंटरेस्ट जो होते हैं वो जहाँ पर आपको एक नो बोर्डम जोन में रखते हैं, यानी कि आपके पास बात करने के लिए हमेशा एक कॉमन टॉपिक होता है, आप कभी भी बोर नहीं होते हैं। और इंस्टेंट प्लान्स तो जो मैंने आपको बता ही दिया जी, प्लान्स के ऊपर डिस्कशन करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना, क्योंकि आप दोनों का इंटरेस्ट तो एक जैसा ही है, तो ऑब्वियसली एक जैसा ही सोचते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो टीम स्पिरिट होती है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, भाई एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना, फिर चाहे वो शेयर्ड इंटरेस्ट के ज़रिए ही क्यों ना हो, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है। और वैसे भी अक्सर कपल्स थेरेपी का भी तो ये हिस्सा होता है ना, जब आप शेयर्ड एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर आप एक दूसरे के इंटरेस्ट में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे में आपके रिश्ते को जो है ना मजबूती तो ऑब्वियसली आती ही है। हाँ, इसके पीछे बहुत सारी साइंस होती है, मैं साइंस में नहीं जाऊँगी, यहाँ पर टेक्निकल बातें क्यों कर रहे हैं हम तो बात कर रहे हैं ना हम कदम के बारे में। तो हम कदम के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो मशी बातें तो मैं ज़्यादा कर सकती हूँ, लेकिन टेक्निकल बातें ना मैं ज़रा कम ही करूँगी। बट एनीवेज, ये आपके और मेरे बीच का एक इनसाइड जोक है, जिसे हम हमेशा जो है ना आपस में ही रखेंगे, क्योंकि आप और हम भी फिलहाल इस प्रोग्राम के जरिए हैं एक दूसरे के हम कदम। सुन रहे हैं इसे आप ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो। लेकिन ठहरिए जरा, शेयर्ड इंटरेस्ट हो गए, सिमिलैरिटीज आ गई, लेकिन भाई इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला फॉर्मूला जो है वो फेल हो चुका है। नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है जो मैंने चुना है, वो मैं प्ले कर देती हूँ। आती हूँ वापस इस खूबसूरत से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है हम कदम।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विश्व

देश भक्ति चैनल आराधना 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं प्रोग्राम हम कदम में, मैं हूँ स्वाति आप सभी के साथ। अभी जो बहुत ही खूबसूरत सा म्यूजिक आपने सुना फ्रॉम द मूवी विकी डोनर, ये था अभिषेक अक्षय का। और ये खूबसूरत आवाज़ें जो आपने अभी सुनी, ये थी अदिति की और उनके साथ क्लिंटन सेरेवो। मतलब क्या कोइंसिडेंस वाली बात है। देखिए ना, शेयर्ड इंटरेस्ट की मैं बात कर रही हूँ। अब ब्रेक के दोनों तरफ जो मैंने गाना प्ले किया ना, एक क्लिंटन सेरेवो की आवाज़ में था और उससे पहले जो मैंने आपको सुनवाया रॉकन मूवी का, वो डोमिनिक सेरेवो की आवाज़ में था, जो उनकी वाइफ हैं क्लिंटन सेरेवो की। और ये दोनों म्यूजिकल कपल, इन दोनों ने आज हमारे प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए। बट एनीवेज, 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आज के इस प्रोग्राम में, यानी कि हम कदम में, हम बात कर रहे थे कि शेयर्ड इंटरेस्ट। तो भाई बॉलीवुड कपल्स की जब हम बात करें, फिर वो चाहे सिंगर कपल्स हों, एक्टर कपल्स हों, या फिर किसी भी तरह से स्ट्रेट से जुड़े हुए हों, तो ऐसे में हमें लगता है कि भाई उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट, कितनी सेटल होती होगी ना। लेकिन हमारी मूवीज़ क्या दिखाती हैं? हमारी मूवीज़ तो हमें ये बताती हैं कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं। भाई एक शांत होता है पढ़ाकू लड़का होता है, एक चुलबुली बिना सोचे समझे बोलने वाली लड़की होती है। और इसी तरह के कुछ जब हम कंट्रास्ट दिखाते हैं तो वो जो है ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। पता है क्यों? क्योंकि असल ज़िंदगी में भी ना ज़्यादातर ऐसा ही होता है। डिफ्रेंसेस जो होते हैं वो हर रिश्ते का पार्ट होते हैं। आप कितने भी सिमिलर हो जाएं, डिफ्रेंसेस कुछ ना कुछ तो ज़रूर रहेंगे। अब चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल के नाम पर जब बॉलीवुड जोड़ी की बात आती है ना, तो मुझे तो राहुल सिमरन ही याद आते हैं। तो चलिए उन्हीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि राहुल जो है ना, उसको शांत कमरे में बैठ के किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। नहीं, मेरे ख्याल से उल्टा हो गया ना, मूवी में अलग था। तो चलिए ठीक है, सिमरन को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और राहुल को जो है घूमना बहुत पसंद है। उसको पार्टीज पसंद है, सोशलाइजिंग पसंद है, और सिमरन जो है वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। तो अब क्या होता है ना, जब आप लाइफ में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा दोनों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। भाई अब राहुल की वजह से सिमरन को जो है सोशलाइज करना पड़ता है, और सोशली वो जो है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर जब लोगों से मिलती जुलती है तो उसको उसका एक वैल्यू जो है वो समझ में आता है। लेकिन उसके साथ साथ जो राहुल है ना, उनको भी अपनी ज़िंदगी में एक ठहराव का जो अनुभव है वो होने लगता है। और उसके साथ साथ ये भी होता है कि जब दोनों के शौक अलग अलग होते हैं ना, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हर वक्त जो है आप एक दूसरे का साथ ढूंढें ही। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मी टाइम को लेकर ना बड़े ही ज़्यादा कहना चाहिए कि पर्टिकुलर होते हैं, हमें अपना मी टाइम चाहिए। तो ऐसे में शेयर्ड इंटरेस्ट में ना वो मिलना थोड़ा सा कम हो जाता है। और ऐसे में ज़रूरत होती है जब आपके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं तो दोनों अपना अपना मी टाइम है ना थोड़ा आराम से खोज लेते हैं। हर चीज़ के प्रोज हैं कॉन्स हैं, हर चीज़ के फ़ायदे हैं नुकसान हैं। शेयर्ड इंटरेस्ट की अपनी अलग वैल्यू है जो आपके रिश्ते को मजबूत बनाती है। उसके साथ साथ डिफरेंसेस अपना एक अलग मसाला है जो आपके रिश्ते में ऐड करते हैं। मज़े की बात यह है कि इन दोनों चीज़ों को देखने के कई तरीके हो सकते हैं। आप इसे कैसे अपनाते हैं, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं, अपनी वीकनेस बनाते हैं, ये ऑब्वियसली हम सभी के ऊपर होता है कितनी मेहनत हम अपने रिश्ते पर करते हैं। इन द एंड बात इसी चीज़ पर आ जाती है कि हम एक दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल हैं। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ वो म्यूज़िक जो आपके कानों पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। मैं प्ले करने जा रही हूँ अगला गाना श्रेया घोषाल की आवाज़ में, बहुत ही अमेजिंग सा, फ्रॉम द मूवी जब वी मेट। आप सुनते रहिए प्रोग्राम हम कदम, ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो। Oh,

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी

संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी

चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: AIR at 90.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ। आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम हम कदम में, मैं हूँ स्वाति आप सभी के साथ। शेयर्ड इंटरेस्ट के ऊपर की हमने आज बात, और बस इतना कहना चाहती हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पे हम लोग अपने कपल गोल्स को जो है दिखाने में, एग्जिबिट करने में, या फिर उनको देख देख कर प्रेशर लेने में ना आजकल बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसकी वजह से अक्सर जो है कपल्स प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि वो मैच करना चाहते हैं उन सभी को जो अपनी इंस्टाग्राम रील्स जो है या फिर कुछ इसी तरह की जो सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ को जो है आप दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ लोगों को एक कहना चाहिए कि एक प्रेशर जो है वो आने लगता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, दिक्कत ये आती है कि जब आपके इंटरेस्ट शेयर ना हो लेकिन उसके बावजूद आप ज़माने को दिखाने के लिए जो है उन्हें शेयर करना चाहते हैं, या फिर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करते हैं जो कि एक्चुअल में आपके हमको तुमको बेशक पसंद हो मगर आपके इंटरेस्ट की नहीं होती है। तो भाई इस तरीके का जो भी स्ट्रेस है ना वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ सहजता से नहीं आती है ना वो चीज़ जो है कई बार बड़ी परेशानी का सबब बन जाती है और आगे जाके फ्रिक्शन का सबब भी बन सकती है। चाहे आपके इंटरेस्ट शेयर्ड हो या फिर आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, हर तरीके से जो है ना अगर आपके कोर वैल्यू सेम है तो बिल्कुल जो है आपके ज़िंदगी में इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ इतनी ही मेहनत काफ़ी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को आप जो है सोशल मीडिया वर्दी बनाएं या फिर उस तरीके की औरों की रील्स देखकर आप ये सोचें कि हाँ जी हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। एनीवेज थोड़ा यहाँ पे प्रीची ज़्यादा हो रहा है तो चलिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ भाई मतलब की बात आप समझ गए ना। अगर आप मेरी भावनाएं समझ गए हैं तो उतना काफ़ी है, और वही है जो समझ जाना चाहिए। अगर एक दूसरे की बात हम समझ जाते हैं देन ऑब्वियसली वी हैव

ट्रस्ट बिटवीन अस. फिलहाल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगला प्रोग्राम जो है जो आप सुनने जा रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के बाद में, क्योंकि समय जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो अगला प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ जुड़ा हुआ, सेहत के समाधान जो प्रस्तुत करता है, नाम है उसका रेडियो डॉक्टर. और ये प्रोग्राम जो है आज आप सुनेंगे समर प्रॉब्लम्स और उनके आयुर्वेदिक जो सॉल्यूशंस हैं उसके ऊपर ये हमारा आज का प्रोग्राम रहेगा. और इसमें हमारे साथ आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट होंगे CGHS के, और वो आपको सेहत संबंधी जो सुझाव हैं और जो सॉल्यूशंस है, जो समाधान है, वो आपको देंगे. अगर आपकी गर्मियों से जुड़ी हुई परेशानियां और उसके आयुर्वेदिक जो सॉल्यूशंस होते हैं उससे जुड़ा अगर कोई भी आपका सवाल हो या आप कोई भी जानकारी लेना चाहें, तो प्रोग्राम के दौरान आप कॉल कर सकते हैं 0112342108 और 0112342108 पे, या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी जो सवाल हैं वो आप पहुंचा सकते हैं. नंबर है 9868107070. ज़रूर सुनिएगा अगला प्रोग्राम, क्योंकि गर्मी जो है वो बिल्कुल बहुत ही अपने पूरे फुल जोश में शुरू हो गई है, तो ऐसे में उससे बचने के लिए हमें बहुत से उपाय जो है वो अपनाने पड़ते हैं. उम्मीद करती हूँ कि अगला प्रोग्राम जो है वो आपकी सेहत से जुड़ा हुआ आपके बहुत ही काम का होगा. और ये भी उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की जो प्रोग्राम हम कदम आपने मेरे साथ सुना है, इसकी प्लेलिस्ट आपको ज़रूर पसंद आएगी. फिलहाल आज के इस प्रोग्राम को मैं यहीं पर समेटती हूँ. आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो. ये प्रोग्राम था हम कदम. मैं हूँ स्वाति और मैं आपसे करूँगी मुलाकात 4 से 5 बजे के बीच लेकर अल्फाजन. आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो.

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जब सूरज तपता है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, हमारे शरीर की जरूरतें भी बदल जाती हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा खास स्वास्थ्य कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और मैं हूं आपकी दोस्त शिल्पा गुप्ता। तेज धूप, बढ़ता तापमान और शरीर में घटती ऊर्जा, गर्मियों का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है। लू लगना, डिहाइड्रेशन, त्वचा संबंधी समस्याएं, थकान और पाचन संबंधी परेशानियां, लेकिन आयुर्वेद में हर मौसम के अनुसार स्वस्थ रहने के प्रभावी उपाय बताए गए हैं। रेडियो डॉक्टर में हमारा आज का विषय है समर प्रॉब्लम्स आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस, यानी गर्मी की समस्याएं और आयुर्वेदिक समाधान। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर बलजीत सिंह दबास। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में।
2: थैंक यू मैडम।
1: श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। हमारा फोन नंबर है 2342-1080, 2342-1082। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो 01 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज रेडियो डॉक्टर में हम बात करेंगे गर्मी की समस्याएं और आयुर्वेदिक समाधान पर अपने विशेषज्ञ से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि गर्मियों में सबसे आम स्वास्थ्य समस्याएं कौन कौन सी होती हैं।
2: मैडम, ऐसा है कि गर्मी का जो मौसम है, वो जो महीना चल रहा है अभी मिड मई से मिड जुलाई तक का है, इसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो काफ़ी पावरफुल हो जाती हैं और जो शरीर पर पड़ती हैं तो पानी को सोख लेती हैं। तो शरीर में पानी जब कम होगा तो खुश्की आएगी, डिहाइड्रेशन होगा, स्किन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी और साथ में लू लगना, जैसे सनस्ट्रोक बोलते हैं, या उल्टी, दस्त, ये सब बीमारियां ऐसी आ जाती हैं। आदमी को खसरा वगैरह इस मौसम में ज़्यादा निकलता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कफ है शरीर का कम हो जाता है, जो शरीर की ताकत है वो घट जाती है, शरीर दौरबल्ले हो जाता है, और जो वात है वो बढ़ता है, तो वात फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे मौसम के हिसाब से, तो परेशानियाँ ऐसे बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए गर्मी में हमें खास ध्यान रखना चाहिए उससे बचने के लिए। तो उसकी प्रिकॉशन जैसे मैं आपको बतलाऊंगा कि भाई आप गर्मी में अगर बाहर जा रहे हैं तो घर पानी पी के जाएँ पहले, तो उसके बाद सिर पे कोई कपड़ा रखें और छाते का प्रयोग करें। छाता लोग आमतौर पर जो छाते मिलते हैं ब्लैक कलर के हैं, ब्लैक जो है वो कलर जो है हीट को खींचता है अपनी तरफ, तो इसके लिए बेस्ट है कि आप वाइट कलर का छाता हो, जो वाइट है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेज देता है। इसलिए जो कपड़े हमारे पहनने वाले हैं वो भी लाइट कलर के हों या वाइट हों, वो डार्क कलर के

0: ना हो, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और कम से कम गर्मियों में 2 बार स्नान भी करना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं। और खाने में आजकल जो सीजन की जो चीज़ें होती हैं, जैसे आजकल तरबूज आया हुआ है, नींबू है, खरबूजा है, ककड़ी है, ये ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा पकौड़े समोसे इस तरह की जो चीज़ें, बाज़ार का जो खाना है उसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि बाज़ार का खाने में आजकल आपको पता ही है जो तेल यूज़ हो रहा है वो बहुत घटिया किस्म का तेल यूज़ हो रहा है। तो ये ज़रूरी है कि हम स्वयं अपने आप को बचाएँगे तभी बच पाएंगे। इसमें हर इंसान की अपनी स्वयं की जिम्मेवारी है। अब गर्मी तो यूं भी बढ़ रही है, और ये गर्मी जो है, जैसे आजकल देख रहे हैं आप, सब कारों में एसी है, बसों में एसी है, ट्रेन एसी चल रही हैं, तो हीट तो बाहर आ रही है ना, हीट आ रही है। तो आम आदमी जिसके पास कार नहीं है, यानी स्कूटर पर है या थ्री व्हीलर में है या पैदल है, उसके लिए ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्योंकि उसको जाना तो उसी रोड पे है, रास्ते से है, और वहाँ पे इतनी बुरी हालत हो जाती है लोगों की, पीने का पानी भी नहीं मिलता, तो कितनी दिक्कत होती है उन लोगों को, ये तो वो लोग बता सकते हैं, पर हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारा जो बेस है वो गाँव से है, और हम ये समझते हैं कि कितनी दिक्कतें आती हैं, ये हम ही लोग जान सकते हैं। शहर के आदमी शायद इस बात को ना समझें।
1: गर्मियों में समस्याएं तो काफ़ी होती हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार गर्मियों में शरीर का संतुलन कैसे बनाए रखें, यह हम आपसे जानेंगे, लेकिन इस प्यारे से गीत के बाद।

0: जैसे कि रेडियो डॉक्टर में सर हम आपसे बात कर रहे थे कि गर्मियाँ बहुत हैं और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार।
1: देखिए गर्मी में संतुलन बनाने के लिए देखिए बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री और जब बाहर हम जाते हैं आजकल देख रहे हैं टेम्परेचर 46 डिग्री।

0: उससे भी ऊपर चला गया, सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया। तो इतनी ज़्यादा गर्मी में अगर आप बाहर जाएंगे और बाहर कोई एक्सरसाइज करेंगे या दौड़ लगाएंगे या कोई भी फिजिकल वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो नेचुरल आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए इस ऐसी गर्मी में हल्का व्यायाम करना चाहिए, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना चाहिए, इससे बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ेगा। बाद में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको फीवर हो जाएगा, बुखार हो जाएगा और दूसरी कई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती हैं। इसलिए खाने पानी भी बार बार पीते रहिए आप, ये ज़रूरी है। बीच बीच में पानी पीजिए, नींबू का पानी डालकर नींबू पी सकते हैं आप दही की छाछ बना के शिकंजी बना के पी सकते हैं। ये चीज़ें लीजिए आप, ठंडी चीज़ें, संतरा ले सकते हैं आप, संतरे का जूस पी सकते हैं, मौसमी का जूस पी सकते हैं। जो इस सीज़न में जो चीज़ें पैदा होती हैं जिस एरिया में आप रहते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, उस वो चीज़ें आप इस्तेमाल करें। जैसे आजकल ये खरबूजा है, तरबूज है, ये चीज़ें यहाँ पैदा हो रही हैं, ये सब गर्मी को कम करने के लिए है, तो आप इनका सेवन करिए आप। और कोई भी तली भुनी चीज़ें, पकौड़े समोसे या पराठे वराठे मत खाइए आप, ठीक है, मसाले गर्म मसाले वगैरह सेवन मत करिए आप, तो ये प्रिकॉशन रखिए आप।
1: एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर, हेलो
2: शांति।
1: हेलो नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ
1: जी, बताइए आपके क्या प्रश्न है।
2: हाँ, मेरा कहना है कि जैसे कि हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं और जाहिर है कि आजकल ग्रीष्म ऋतु है, हमारे आयुर्वेद में भी एक कॉन्सेप्ट है ऋतुचर्या।
0: बिल्कुल,
2: तो ग्रीष्म ऋतु में जो ग्रीष्म ऋतुचर्या यानी ग्रीष्म ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं, कृपया विस्तार से बताएं। ओम शांति।
0: देखिए ऐसा है, ये जो ग्रीष्म ऋतु है, ये जो महीना हमारा चल रहा है अभी मई मिड मई से मिड जुलाई के बीच का है, इस टाइम जो सूर्य की जो किरणें हैं वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं और जल को सोखती हैं बॉडी के, उस बॉडी बॉडी नहीं ज़मीन पे भी जल होगा उसको भी सोख लेती हैं, तो आपको देखते हैं कि पानी की कमी हो जाती है। अब जो भी ठंडी चीज़ें हैं वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, ठंडी जगह में रहना चाहिए, खाना पीना ठंडा खाना चाहिए, कोई भी गरम मसाले मिर्चें ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आप जो सीजन की चीज़ें हैं, जैसे आपका मैंने बताया था आपको अभी तरबूज पैदा हो रहा है, वो खाइए आप, खरबूजा खाइए आप, नींबू का पानी पीजिए आप, दही की छाछ पीजिए आप, स्किंजी बना के पीजिए, तो ये ऐसी चीज़ें हैं। खस खस का जो है उसका शरबत

0: रहेगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये ज़रूरी है कि आप बाहर धूप में ना जाएं, अवॉइड करें, जाना बहुत ज़रूरी हो तो पानी पी के जाएं, साथ में सिर पे कोई कपड़ा कवर ढकें उसको, छाते का इस्तेमाल करें, ठीक है। और जो दिन का टाइम है करीब 11 से लेकर 4 बजे तक का, इसमें तो बिल्कुल बाहर निकलने की कोशिश ही ना करें, और ख़ास तौर से बच्चे और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए ख़ास विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और बोलिए आप क्या चाहते हैं।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: हेलो।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: हाँ, राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। 48 वर्ष मेरी उम्र है और 70-75-80 kg के आसपास मेरा वजन है। ओ पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है और वाइट मेरी स्किन है, जैसे अंग्रेजों की होती है ना, फॉरनर की,
1: जी
2: तो उस किस्म की मेरी स्किन है। तो सबसे पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर साहब दोनों को गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून जी।
0: हाइट
2: जी, डॉक्टर साहब मेरी
1: हाइट कितनी है आपकी? डॉक्टर साहब
2: हाइट मेरी 6 फिट।
0: 6 फिट है, चलो ठीक है, फिर उस हिसाब से वेट तो ठीक है आपका, कोई ज्यादा कम तो नहीं है।
2: डॉक्टर साहब मेरे 4 सवाल हैं, बड़े सीधे सादे भोले भाले।
0: हाँ बताइए।
2: पहला सवाल तो ये डॉक्टर साहब, चूंकि मेरी वाइट स्किन है तो लिहाजा मुझे गर्मी सूट वैसी नहीं करती।
0: हाँ बिल्कुल।
2: चूंकि चूंकि मेरी पित्त प्रवृत्ति है
0: जी हाँ,
2: तो डॉक्टर साहब हो ये रहा है कि मेरे को लीवर के आसपास काफी ना इन दिनों गर्मी जलन गैस बहुत बन रही है लीवर के आसपास।
0: हाँ जी हाँ।
2: तो मेरी जो डाइट वो 4 फुलके होती थी,
0: हाँ जी,
2: एक दो फुलके ही खा पा रहा हूँ। अब अगर मैं इनो पीऊ पानी में मिला के या लिमका पीता हूँ तो मुझे रिलीफ मिल रहा है, पर टेम्पोरेरी परमानेंट नहीं।
0: हाँ जी।
2: तो इसके लिए मैं क्या करूँ? दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुझे श्वसन एलर्जी भी है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ? घरेलू स्तर पर अगर आपके पास आते तो क्या करना पड़ेगा? तीसरा सवाल कि मुझे निद्रा की भी प्रॉब्लम है, तो मैं गर्मी मुझे और भी सूट नहीं कर रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? और चौथा आखिरी सवाल कि मुझे लीवर ये थायराइड या टॉन्सिल में से ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे को बोलने प्रॉब्लम, मतलब गले में ड्राइनेस, आंखों में ड्राइनेस। और एक छोटा सा सवाल और था कि गर्मी क्योंकि बहुत ज्यादा पड़ रही है तो आंखों में गर्मी जलन होती है, सीधी सी धूप पड़ती है, आंखों पर गर्म हवाएं चलती हैं, तो आयुर्वेदा कंपनी ने आरोग्य नेत्रम अमर नेत्रम दवा निकाली है, तो अगर इसको आंखों में डालें तो इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है? ये 5 सवाल है, प्लीज गाइड करें, मेरी बड़ी मेहरबानी होगी।
0: ठीक है, देखिए ऐसा है, स्किन आपकी वाइट है, ठीक है, और आपको जो गर्मी है वो शूट नहीं करती। आपकी एज कितनी है?
1: 48।
0: 48 है। और काम क्या करते हैं आप?
1: काम नहीं बताया था, इन्होंने कहा था 48 वर्ष उम्र है।
0: काम
1: 70-75।
0: वर्क क्या करते हैं सर आप?
1: सर लाइन कट गई है।
0: कट गई,
1: हाँ आप बता दीजिए वैसे ही।
0: अच्छा, तो ये जो है इसके लिए तो वही है कि गर्मी है ज़्यादा, मौसम सीजन भी गर्म का है, आपकी बॉडी में वैसे ही गर्मी है, तो नेचुरल खाने पीने का, अपना पथ्य का प्रयोग सही करें आप, और ए पत्ते का सेवन ना करें आप, दूसरा लाइफस्टाइल अपना ठीक रखें, गर्मी में बाहर ना जाएं, अंदर रहें, ठंडे स्थान पर जाएं, अगर आपके पास अच्छी हो तो आप किसी भी ठंडे एरिया में शिफ्ट कर जाएं गर्मी के टाइम पे। तो सारी चीज़ें इस तरीके की हैं। लीवर है आपका, भूख जैसे कम लग रही है तो भूख के लिए आप थोड़ा सा नमक और जो है आपका थोड़ा सा काला नमक डाल लें, थोड़ा सा अजवाइन डाल लें, थोड़ा अदरक डाल लें, उसको नींबू में भिगो कर रखें, उसको खाएं तो आपकी भूख लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये ऐसी छोटी चीज़ें हैं ना, ये लीवर के लिए आपको जो है, लीवर के लिए कई दवाइयाँ भी आती हैं, वैसे तो चिरायता वगैरह अच्छा लीवर में काम करता है, आप ले सकते हो, उसको लें आप, ठीक है ना। और पानी बार बार पीते रहें आप, ये बहुत ज़रूरी है। नींबू आपको शूट करता है, नींबू की शिकंजी लें, छाछ, दही की छाछ बन, दही की जो है लस्सी बना कर लें आप, संतरा शूट करता है, संतरे का जूस पी लें, अनार का जूस पी सकते हैं आप, ये चीज़ें लीजिए आप सारी। थायराइड के लिए जो है शीतली प्राणायाम करेंगे आपको गले के रोगों में फ़ायदा करेगा, शीतली प्राणायाम करें उससे भी आपको, आपकी ठंडक रहेगी, गर्मी कम हो लगेगी आपको।
1: और उन्होंने कहा था कि उनको एलर्जी हो जाती है।
0: देखिए एलर्जी किस चीज़ से होती है ये तो आपको देखना पड़ेगा, अभी क्या खाने से एलर्जी हो रही है उसको अवॉइड करना पड़ेगा।
1: अच्छा, और एक उन्होंने कहा था कि उनको निंद्रा की भी प्रॉब्लम है, कि जैसे गर्मी बहुत है उनको नींद नहीं आ रही है कुछ।
0: देखिए अपना अगर आप कैपेबल है तो एसी लगाइए अपना, और थोड़ा खाना खाने के बाद में आप आधा घंटा घूमिए, थकावट होगी तो नींद भी आ जाएगी।
1: और साथ में कह रहे थे कि उनको ड्राइनेस बहुत फील होती है, चाहे गले में भी आंखों में भी, गर्मी तो है
0: तो गर्मी में तो ड्राइनेस होती है, आप उसके
1: लिए क्या करें?
0: गाय का जो है, गाय का प्योर घी जो बाज़ार में गाय का घी मिलता है वो प्योर नहीं है, तो मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, पर आप अपना गाय का प्योर दूध लो, घी निकालो, उसको एक चम्मच सुबह शाम ले लो आप, तो गर्मी कम कर देगा गाय का घी, वो सबसे अच्छी दवा है, आप ले सकते हैं।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्कार सर, नमस्कार मैम, मेरा नाम योगेश है और मैं देहरादून से हूँ।

0: गर्मियों में भूख को लेकर काफी समस्या हो जाती है कि भूख कम लगती है, क्या करें?
1: देखिए वही है, क्योंकि गर्मी में लीवर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, लीवर गर्मी के अंदर, और लीवर का काम है सारा डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना। तो वहाँ जो है आपका, अपने एक बार तो टेस्ट वेस्ट कराओ भाई, आपका लीवर फैटी तो नहीं है, और खाना क्या खाते हैं आप, इसके भी डिपेंड करता है वेजिटेरियन है या नॉन वेज हैं, और क्या काम करते हैं, आपका काम का टाइमिंग क्या है, जो वर्क कैसा है आपका, तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। फिर आपकी सोच कैसी है, तो एक तो अपनी सोच को अच्छा रखो, पॉजिटिव सोच रखो अपनी। दूसरा आपका पेट प्रॉपर साफ होना चाहिए, पेट साफ होगा तो आपको भूख भी लगेगी, और उसके लिए आपको सुबह उठकर कम से कम 1-1.5 लीटर पानी पीना चाहिए खाली पेट, ठीक है। तो पानी पियेंगे तो आपका दीर्घ शंका होगी, पेट साफ हो जाएगा तो भूख भी लगेगी। आम मैं देखता हूँ कि आमतौर पर 90% लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, ज़्यादा होता है वो परेशान रहता है, कम वाले को पता नहीं चलता कॉन्स्टिपेशन है। पर जिसका भी पेट छाती से ऊपर जा रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे लेडी चाहे जेंट्स, समझो उसको कॉन्स्टिपेशन है। केवल प्रेगनेंसी में पेट ऊपर जाना चाहिए लेडीज़ का, उसके बाद तो जाना नहीं चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप किसी भी आयुर्वेदिक के डॉक्टर से वहाँ संपर्क कर सकते हो, और उसे आप एडवाइस लो, और उस तरीके से अपना खाना पीना ठीक करो, ये सबसे बेस्ट है। तो अपने आप को, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करो, फूड हैबिट्स चेंज करो अपनी, और पथ्य का आहार करो गर्मियों में विशेष तौर से, आप पथ्य को छोड़ दो।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी कहा कि गर्मी में पाचन खराब हो जाता है, तो इसके लिए क्या आयुर्वेदिक में भी कुछ उपाय है?
1: हाँ है, क्यों नहीं, आप जैसे आयुर्वेदिक में आप चिरायते का सेवन कर सकते हो, बहुत अच्छा है, लीवर के लिए काम करता है। बाकी दवाइयाँ तो बहुत कंपनियाँ दवाइयाँ बना रही हैं लीवर के लिए, बहुत दवाइयाँ बाज़ार में मिलती हैं, वो ले सकते हैं। बाकी भूख कम लग रही है तो सिंपल सा लवण भास्कर चूर्ण है, आपके हजमा का भूख को लगाएगा, ठीक है। बाकी ये आपका अदरक है घर में, आपके नींबू है, और उसमें अजवाइन डालो, और उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दो अदरक के, और डिबो दो उसको, उसको सेवन करो, एक दिन डुबा रहने दो, उसको सेवन करोगे तो आपकी भूख खुल जाएगी उसे।
0: एक और मैसेज है हमारे पास, यह है, लिखते हैं डॉक्टर बलजीत दबास और शिल्पा मैम को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, गर्मियों में आयुर्वेद में बच्चे, जवान और बुजुर्गों की डाइट कैसे अलग होगी, और ये फास्ट फूड का चलन हो गया है वो कितना हानिकारक है, और सुबह और शाम क्या करना चाहिए? थैंक्स। नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड से लिखते हैं।
1: चौहान जी, बात यह है कि जो फास्ट फूड है ना, ये तो समझ लीजिए बीमार करने का एक मीडिया आ गया है हमारे बीच में, कि लोगों को बीमार करेगा और पैसा कमाएगा। अब इसमें एक भी चीज़ अच्छी नहीं है फास्ट फूड में, क्योंकि लोग आलसी हो गए हैं, सबको बना बनाया खाना चाहिए, ना आदमी काम करना चाहता है ना महिलाएं काम करना चाहती, खाना कौन बनाए। तो सबसे आसान है कि फ़ोन करो, किसी टाइम भी खाना मंगा लो, रात के 12 बजे मंगाओ, 2 बजे मंगाओ। तो ये तो भाई हेल्थ के लिए इतना हार्मफुल है, आयुर्वेद के हिसाब से तो 7 बजे के बाद खाना खाना नहीं चाहिए, और यहाँ खाने का टाइम ही उल्टा है, सोने का टाइम भी उल्टा है, सो रहे हैं लोग 2-2 बजे, उठ रहे हैं सुबह 10 बजे तक, तो कहाँ से ठीक रहेंगे लोग। तो ये तो एक सिस्टम है, तो भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो भारत सरकार को सोचना चाहिए कि फूड हैबिट जो है, रात में भोजन मिल रहा है बंद कर देना चाहिए, रात को 10 बजे के 11 बजे के बाद तो कोई होटल कुछ खुला नहीं रहना चाहिए, अभी रात पूरी रात खुले रहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी पहुँच से बाहर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, पर ये आप अपने आप में कर सकते हैं, भी अपना खुद खाना बनाओ और खाओ भाई, बाज़ार से क्यों मंगाते हो, आपको कोई फास्ट फूड वाले आपके घर थोड़ी आते हैं देने के लिए, आप ऑर्डर करते हो तभी तो आता है ना खाना, तो अब मत करिए ना ऑर्डर, आप घर में बना बना खाना खाइए, आपकी वाइफ होगी या बेटी बेटा जो भी है, आप खुद बनाओ कुछ भी करो, मतलब तो मत खाइए बाहर का, ये ज़रूरी थोड़ी बाहर का खाना खाना, ये तो अपने ऊपर बात है ना।
0: मतलब ये खुद ही अपनी डाइट का ध्यान रखें कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्या पौष्टिक है क्या नहीं है। एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, हाय गुड हॉट नून, रिया फ्रॉम उत्तराखंड। ये लिखते हैं, माय फेवरेट ड्रिंक इन दिस बर्निंग समर इज चन्ना सत्तू एंड शुगर केन जूस एंड वुड एप्पल। वॉक करके आती हूँ इवनिंग में, तो बहुत हीट हो जाती है, तो कैसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे बॉडी कूल डाउन हो जाए?
1: देखिए वॉक कितनी फास्ट करते हैं आप भी डिपेंड करता है, स्लो करते हैं, मीडियम साइज मीडियम करते हैं या तेज करते हैं, और आपकी एज क्या है, ठीक है, आपकी हेल्थ कैसी है ओवरऑल, तो बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। अब आपकी आप ये तो आप हमें एज बताए, इतनी एज है, आप इतना वेट है, तो बताएंगे किस तरीके से करिए आप। तो आप मीडियम रास्ता अपनाइए, ना बहुत तेज़ चलिए ना बहुत स्लो चलिए, मीडियम चलिए। खाने पीने में गर्मी के मौसम में तो आजकल नींबू बड़ा सूटेबल है, आप नींबू की स्कंजी पी सकते हैं, आप दही की लस्सी बना सकते हैं, वो पी सकते हैं, सत्तू ले जो बता रहे हो आप, सत्तू लीजिए, बहुत अच्छा है, ठंडा है वो भी है ज़्यादा, तो ये मतलब जो भी ठंडी चीज़ें लीजिए, ठंडी जगह पर रहिए आप, ठीक है, तेज़ धूप में बाहर मत जाइए, तो सुबह शाम अपना बाहर का काम करिए, उस टाइम मत जाइए, अवॉइड करिए अपना, ये तो आपको देखना ना, ये हर आदमी की अपना इंडिविजुअल लाइफ। आयुर्वेद ये नहीं कहता कि भाई ये पैरासीटामोल

0: का बुखार उतर जाएगा? नहीं, वो कहता हर आदमी की अलग अलग नेचर है, तो उसके हिसाब से अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, अलग अलग सिस्टम होता है कि इसको फॉलो करना पड़ता है। हर जो रूल्स है वो है ये कि भाई सुबह उठ के आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठिए आप। अब कितने लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं बताइए मेरे को, लोगों को ब्रह्म मुहूर्त का ही पता नहीं किस टाइम होता है। फिर उठ के पानी नहीं पीते लोग, एक कप चाय पीते हैं तो यहीं से बीमारी शुरू हो जाती है, जबकि चाय तो पीनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो आप सुबह सुबह उठ के 1 लीटर पानी पीना चाहिए, उसके बाद आपको दीर्घ शंका होगी, दीर्घ शंका होने के बाद फिर वापस बैठिए और फिर 1 गिलास पानी कम से कम पीजिए, फिर आपको लघु शंका होगी। अब लोगों को दीर्घ शंका क्या होती है लघु शंका को ये भी नहीं मालूम होगा। और जब ये समझिए अगर आपको दीर्घ शंका होगी तो आपका पेट साफ हो गया, लघु शंका होगी तो आपका समझो खून साफ हो गया, किडनी काम कर रही सही। तो जब सारे सिस्टम काम करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव सोचिए आप पहले। और आपके जो दांत हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, दांत से ही आपका सकारात्मक सोच, दांत से ही पेट साफ खून साफ स्वस्थ रहेंगे आप। सीधा फार्मूला है, इसको फॉलो करिए, आपकी बीमारी आपके पास आएगी नहीं भाई। तो खाने पीने का तो कंट्रोल करना पड़ा, जीभ पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा आदमी ठीक रह नहीं सकता।
1: डॉक्टर साहब, जैसे सर्दियों में होता है, हमें ठंड लग गई तो नज़ला जुखाम खांसी ये सब हो जाता है, तो क्या लू लगने के भी कुछ लक्षण होते हैं कि हाँ लू लग गई या कुछ गर्मी?
0: हीट स्ट्रोक होता है मैडम, शरीर में से आग सी निकलती है, जैसे आप जैसे ही भट्ठी के पास बैठे पहला यही तो है कि गर्मी निकलेगी शरीर में से आग सी निकलेगी, तो उसके लिए एकदम ठंड में जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा हो तो हम कपड़ा गीला करके बॉडी पर लगा सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, या आजकल एसी आ गए तो एसी में रखो उनको, तो इस तरीके का कर सकते हैं। तो
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्ते गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब, मैं नीता अमरावती से। सर मेरे पति को लू बहुत लगती है, ऑफिस जाते टाइम एसी कार में जाते हैं, उनकी उम्र 55 है, आम का पन्ना और छाछ भी देती हूँ, ये सब करके भी लू क्यों लग जाती है? सिविल इंजीनियर है तो साइट पे जाना ही पड़ता है।
0: देखिए ऐसा है कि सिविल इंजीनियर साइट पे जाते हैं वो तो वहाँ धूप में खड़े होते हैं ना, ठीक है, वो तो क्योंकि काम है उनका, प्रोफेशन ऐसा, तो उनको बोलो भाई वाइट उनको लेना, एक छतरी खरीद के लाओ सफ़ेद कपड़े वाली ऊपर वाली, ठीक है, और उनको बोलो एक सफ़ेद कोई कपड़ा रखें, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, ठीक ठीक हालत में उसको गीला करें बार बार और सिर पर रख लें, तो सिर को कवर रखें ऊपर छाता रखें तो हीट नहीं लगेगी। दूसरा कपड़े जो पहन रहे हैं वाइट कलर के कपड़े पहने, पूरी बाजू का कपड़ा पहने यानी हाफ बाजू का पहन रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब बॉडी को कवर रखें, ठीक है। और खाने पीने का तो आप अच्छा खिला रही हैं उनको, अच्छी बात है ये तो आप दे रहे हो, पर उनको बोलो ये सत्तू वगैरह बना के उनको वहाँ भी दे दें ताकि वहाँ भी बीच में पिए वो, ठीक है ना, ये और ध्यान में रखें। और उनको बोलो पानी जब बार बार पानी पीना है आपको, ये प्रिकॉशन रखते हैं उसको दिक्कत नहीं आएगी फिर।
1: तो डॉक्टर साहब कितना पानी पीना चाहिए और कितनी कितनी देर में लेना चाहिए?
0: देखिए पानी का तो ये है कि कितनी उसकी हाइट है, कितना वेट है, आमतौर पर 3 लीटर पानी तो हमेशा पीना चाहिए
1: जनरल में, अगर सबके लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो सबके लिए।
0: हाँ, और अगर उम्र कम है बच्चे को थोड़ा कम हो जाएगा, ज़्यादा मोटा आदमी है या ज़्यादा मेहनत करने वाला है जिसको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, तो 3 लीटर तो है ही बच्चे, गर्मियों में 4 लीटर पानी भी आप इजीली पी सकते हैं। और आज के जैसे आपका जैसे लोग शराब वराब पीते हैं, मान लो कोई शराब पिएगा तो भाई गर्मी बढ़ेगी शरीर की, जब गर्मी बढ़ेगी तो आपका लीवर भी ख़राब होगा, आपका ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है शराब ज़्यादा पीने से, आपका किडनी ख़राब हो जाएगी। तो एक ये है ना, खाना पीना क्या है, अब आपका जौ का सत्तू बनाइए, आजकल लोग बियर पीते हैं पर बियर में भी नशा डाल दिया इन्होंने, क्या कर दिया पता नहीं, तो बियर ठंडी रहती है वो आप दे सकते हैं, वो पी सकते हैं।
1: जिसके बारे में हम और भी बात करेंगे कि समर प्रॉब्लम्स आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस पर। श्रोताओं, आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य कार्यक्रमों और आकाशवाणी के बारे में अपने विचार आप हमसे साझा कर सकते हैं। लगभग 2 मिनट के ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में अपने विचार भेजिए हमारे मेल ID healthairdelhi@gmail.com पर। बातें हम और भी करेंगे लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं गर्मी की समस्याएं और आयुर्वेदिक समाधान पर। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, लेकिन त्वचा की हम देखभाल कैसे करें, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो हेलो हेलो, शायद लाइन कनेक्ट नहीं हो रही। तो आप हमें बताइए कि गर्मियों में हम बाहर जाएं तो स्किन पर क्या लगा कर जाएं, क्या नहीं लगा कर जाएं त्वचा पे, जिससे कि हमारी कई बार स्किन बर्न हो जाती है या रेडिशनेस आ जाती है।
2: देखिए, मैं हम तो एक भी कोई भी क्रीम जो बाज़ार में अवेलेबल है वो स्किन पर लगानी नहीं चाहिए कोई भी। सबसे बेस्ट है आप कोकोनट खरीदो, अपने सामने तेल निकलवाओ, उसका इस्तेमाल करो आप, ठीक है, और उसको तेल की उसकी मालिश करो। मालिश करने के आधा घंटे बाद स्नान करो। उसके बाद में ये साबुन वगैरह जो यूज़ करते हैं, इसको थोड़ा कम साबुन करो या अच्छी क्वालिटी का साबुन इस्तेमाल करो। आम जो साबुन बाज़ार में मिलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल डालते हैं, वो स्किन को और ख़राब करते हैं। और सबसे ज़रूरी जो बात है, आप बाहर जा रहे हैं तो आपको पूरे बाजू के कपड़े पहनो, आपकी बॉडी कवर होनी चाहिए ताकि सन जो रेज हैं वो सीधे आपकी बॉडी पर ना पड़े। सबसे ज़रूरी ये है, अगर आपकी रेज सीधी नहीं पड़ेंगी तो बर्न, आपकी स्किन बर्न नहीं होगी। जितनी भी क्रीमें बना रखी हैं वो तो बिजनेस का आइडिया है लोगों का, और लोग चाहते हैं कोई कुछ इससे मिले करने के लिए, पर बाकी हमारे विचार से तो सब बेकार है। बाकी आप जैसे आपका आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप ले सकते हैं।
1: एक कॉलर है हमारे,
2: एलोवेरा जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोग सेविंग करने के लिए बाज़ार से क्रीम खरीदते हैं, एलोवेरा का जल

0: तेल निकालो, उससे सेविंग करो, बढ़िया काम करेगा, फर्स्ट क्लास एकदम, पैसा ही नहीं लगेगा, घर के घर काम हो जाएगा।
1: जी, एलोवेरा का सेवन करेंगे और
0: उसी
1: पूरे
0: उसी लगाएंगे बॉडी पे,
1: उसे बॉडी पे
0: पूरी बॉडी
1: पे
0: लगा सकते हैं,
1: पूरी बॉडी पे लगाएंगे और पूरे कपड़े पहनने की कोशिश करेंगे जिसे,
0: और लाइट कलर के कपड़े,
1: लाइट कलर के,
0: वाइट बेस्ट है।
1: ओके, और एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो
2: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मैं सोराज बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ा से, हरियाणा से। जी डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: जी बताइए क्या प्रश्न है?
2: मेरा प्रश्न ये है जी, मैं जो है जब सोच जाता हूँ लैट्रिन काली आती है जी, कभी कभी उसमें मवाद आता है जी, भूख कम लगती है जी।
0: भाई खाना क्या खाते हो आप? अगर आप
2: खाना तो मैं घर का ही खाता
0: हूँ। घर का
2: तो
0: खाते हैं, अगर पालक खाओगे तो लैट्रिन काली हो सकती है, ठीक है ना? तो लैट्रिन काली के बहुत सारे कारण, अगर आयरन की कोई चीज़ें खाओगे तो, या कोई गोली खा रहे हो तो भी लैट्रिन काली हो सकती है, ठीक है? और पेट प्रॉपर साफ होता नहीं होता, ये अलग बात है। भूख का आपको भूख अच्छी लग रही है, पेट साफ हो रहा है, सुबह कितना पानी पीते हो उठ के?
2: 2-3 गिलास पानी पीता हूँ डेली।
0: देखो कम डेली 2-3 गिलास तो बहुत ही कम पानी है महाराज, सुबह उठकर कम से कम 1-1.5 लीटर पानी पीजिए बैठकर। पानी भी बैठ के पीना चाहिए, खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, घुटने खराब हो जाएंगे।
2: अच्छा जी,
0: पानी में आप अब गर्मी का मौसम है नींबू डालकर पियो, अगर नींबू शूट करता है, ठीक है ना? आधा आधा लीटर करके दिन में 2-3 बार पहले सुबह सुबह खाली पेट, पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद फिर पानी पियो, फिर बार बार बाथरूम जाएगा, खून भी साफ हो जाएगा, बीमारी आएगी नहीं ना कहीं भी। और बाज़ार का अगर कुछ खा रहे हो अड़ंग दड़ंग, तो मत खाइए, फास्ट फूड का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। और बोलिए
1: डॉक्टर साहब, एक मैसेज भी हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्ते मैम, नमस्ते डॉक्टर साहब, गर्मी पर बहुत अच्छा प्रोग्राम है डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं सत्तू चने का जो का बेस्ट होता है, तो प्लीज़ गाइड करिए कि और क्या क्या हम ले सकते हैं। ये हैं सतीश कुमार, एज है 66 साल, रोहिणी सेक्टर 17 दिल्ली से।
0: देखिए जो सत्तू आप ले रहे हो जौ का चने का, वो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, सभी को लेना चाहिए। बाकी तो आप गर्मी के मौसम में जो गर्मी में फल पैदा होते हैं, जो सब्जियां गर्मी में पैदा होती हैं, जैसे आप पर खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, ये आप खाइए। जूस पीना तो आपका संतरे का जूस पीजिए आप, अनार का जूस पीजिए आप, ठीक है ना? तो ये चीज़ें, नींबू आपका बहुत बेस्ट है, नींबू का पानी पीजिए, दही की शिकंजी बना के पीजिए आप, छाछ पीजिए, ये चीज़ें लीजिए आप, सबसे बढ़िया रहेगा। और गर्म चीज़ें तली और चीज़ें अवॉइड करिए आप, और बाज़ार का खाना छोड़ दीजिए, बाज़ार में धूप में बाहर घूमना बंद कर दीजिए, ये रखिए।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
3: हाँ जी नमस्ते मैडम जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
1: नमस्ते, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: मैं योगराज बोल रहा हूँ जी, गुड़गांव से।
1: जी बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: प्रश्न ये है जी, जैसे डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले बताया था, मैं प्रोग्राम शुरू से सुन रहा हूँ, जैसे कि तरबूज भी खाओ इस मौसम में, लेकिन हमने जो न्यूज में देखा तरबूज खाने से जैसे 2 जगह मौत हुई है।
0: देखिए ऐसा है, सुनिए मेरी बात, आप अगर किसान हैं और खेती करते, तरबूज अपना खुद उगाइए आप और उसको खाइए, तो कहीं कोई इंजेक्शन का चक्कर नहीं। कोई आजकल तो बड़ी हेरा फेरी हो रही है, क्या कहें, कौन इंजेक्शन लगा रहा है, वो आजकल बेल में इंजेक्शन लगा देते हैं अगर
3: तो, नहीं, ये भी खाया जी, बेल में जो इंजेक्शन लगाते हुए को भी पकड़ा मैंने, न्यूज भी देखता हूँ मैं साथ में।
0: पकड़ा ना आपने, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, ऐसी चीजें मत खाइए आप, अगर ऐसे खाओगे तो भाई कुछ ये तो यहाँ पे क्या एक्चुअल में क्या है,
3: तो हमें ये कैसे पता चले ये इंजेक्शन का, ये
0: भैया ये बात, सवाल आपका बड़ा अच्छा है ये। देखिए ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कोई, जैसे रिलायंस कंपनी है सपोज, एक मिनट, वो खुद अपनी चीज़ें उगा रही है, ठीक है, खुद उगाते, मान लो फसलें उगा रही है, वो तरबूज उगा रही है, तो मैं समझता हूँ वहाँ हेरा फेरी नहीं होगी। जो रेडियों पे जो बिकता है, यहाँ बदमाशी होती है, ये लोग बदमाशी करते हैं, और ये अब क्यों करते हैं ये तो आप समझ सकते हो, जो भी जैसे चल रहा है मामला, तो ऐसा मत खाइए उनकी, मत छोटी दुकान से, इन रेडियो से मत लीजिए। कोई जो एक अच्छा जो ठैया है ना, जहाँ पे लोग पता है कि रिलायंस वाला है मान लो, या कोई और अच्छी कंपनी का आपके एरिया में कोई होगा, मुझे नहीं मालूम, तो जो खुद उगाता है उससे आप लोगे तो मैं समझता हूँ ऐसी नौबत नहीं आएगी।
1: मतलब
0: बाकी तो ये होता है, अगर मान ली कोई पौधा मेडिसिन अगर सांप के बिल के पास पैदा होती है तो उसमें भी कई बार सांप जैसे जहर उगलता है या पड़ता है, तो उसमें भी उसका असर आ जाता है उसके, ये तो बड़ा नाजुक मामला है इस चीज़ का, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप खुद ध्यान रखिए, और कहाँ से ले रहे हो ये देखिए, आपको देखने का विषय है।
1: वही जागरूक होना भी बेहद ज़रूरी है कि आप खुद ही देख रेख के अपना सामान लें कि हम क्या खा रहे हैं और कहाँ से ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि हमें देख रेख करनी चाहिए, तो लेकिन ऐसे मौसम में, गर्मी के मौसम में, बच्चों और बुज़ुर्गों को

0: गर्मियों में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए ये बात सही है कि बुजुर्ग और बच्चे, ये शरीर का जरा नाजुक होता है
0: जी,
1: और इम्यूनिटी पावर भी थोड़ा कमी होती है इनमें, और ये गर्मी को ज़्यादा, ना गर्मी को ज़्यादा सहन सकते हैं और ना सर्दी को ज़्यादा सहन सकते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे बेस्ट है कि चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो बुजुर्ग हो, वो धूप में ना जाएं बाहर, जाना पड़े तो सुबह शाम अपना काम करें, खेलना बच्चों को खेलना तो सुबह शाम खेलें, बुजुर्ग पार्क में जाते हैं तो सुबह जल्दी जाएं उठ के, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उसके बाद में अपना उषा पान करने के बाद में फ्रेश होकर आप पार्क में जाओ, आप 3 बजे 3:30 बजे उठो, उसके बाद में 7-8 बजे तक घर में आ जाओ। ऐसे बच्चों को थोड़ा, बच्चे तो नहीं उठा सकते 3 बजे, पर कम से कम उनको 5 बजे 6 बजे उठा लो, 6 बजे उठा कर आधा 1 घंटा घुमा कर बना ले आओ भैया। जैसे आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हो रही हैं, अगर आप धूप में बच्चों को भेजोगे या बुजुर्ग किसी सामान के लिए भेजेगा, जाएगा बाजार में धूप में, तो फिर तो नेचुरल बड़ा मुश्किल है उनका बचना धूप से। तो इसलिए बहुत मजबूरी है जाने की, तो फिर अपने छाते का इस्तेमाल करो, फुल बाजू के कपड़े पहनो और कपड़े वाइट पहनो या बिल्कुल लाइट कलर के पहनो, ये सब प्रिकॉशन रखो तो बचाव रहेगा।
0: तो ऐसे मौसम में बच्चों को जैसे स्कूल भी जाना होता है, खेलने भी जाना होता है, उनको गर्मी ना लगे तो उनको क्या दें?
1: देखिए सरकार ने इन मौसम में 2 महीने छुट्टियाँ कर दी गवर्नमेंट, इसलिए स्कूल बच्चों के बंद हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस बात में बड़ी जागरूक है जो छुट्टियां दे रही है बच्चों को, पता है कि बच्चों को हीट गर्मी से नुकसान कर सकती है। बाकी बच्चे जो खेलते हैं वो ये तो सुबह सुबह के टाइम खेलें जल्दी, या फिर शाम को 6 बजे के बाद खेलें तो हम बचाव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना चाहिए, बच्चे तो क्या मेहनत का करेंगे, जैसे बुजुर्ग आदमी कई क्या होता है, वो काम करने की हैबिट होती है उनकी, वो ताकत से भी ज़्यादा काम करते हैं, तो वो दिक्कत नुकसान कर जाता है उनको, क्योंकि ज़िंदगी में उन्होंने मेहनत की होती है ना, तो उनके लिए लगता है हल्का है, पर होता है भारी, उनका शरीर इतना अलाउड नहीं करता।
0: तो क्या आयुर्वेद में कुछ ऐसी टिप्स हैं जो उनको फॉलो करनी चाहिए?
1: देखिए पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए, सबसे बढ़िया है कि पूरी अच्छी डाइट लेनी चाहिए उनको, तो डाइट अच्छी लेंगे, डाइजेशन उनका ठीक होगा, उनका सोच अच्छी पॉजिटिव सोच रखें, टाइम से खाना खाएँ, टाइम से सोएँ, तो अच्छा है। देखिए सबसे ज़रूरी है आपका सोच पॉजिटिव रखना, फिर आपका आहार, पहले आहार आपका प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर आहार खाना चाहिए, उसके बाद निंद्रा, आपको पूरी निंद्रा लेनी चाहिए, 6 से 8 घंटे की जो नींद का है सिस्टम, तो उसको पूरा लेना चाहिए, ज़्यादा सोना भी नुकसानदायक है और कम सोना भी नुकसानदायक है, तो ये चीज़ें लेंगे। तीसरा है फिर आहार, निंद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का कि मतलब कोई सेक्स ही नहीं है खाली, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आपकी जो भाषा है, जो आप वर्ड बोल रहे हो वो ऐसे ना हो जो दूसरे को चुभते हो, मतलब कंट्रोल के वर्ड होने चाहिए, ऐसी बात ना बोलो जो दूसरे को बुरी लगे, तो उसमें भी कंट्रोल रखो, हर चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए, वो ब्रह्मचर्य है। तो लोग एक्चुअल में ब्रह्मचर्य को सिर्फ सेक्स से जोड़ लेते हैं, ऐसा एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये कंट्रोल आपके हर चीज़ पर कंट्रोल है, जैसे गवर्नमेंट ने भी कंट्रोल कर रखी बहुत चीज़ों पर कंट्रोल आपका, तो ये कंट्रोल ही रखना ही ब्रह्मचर्य है। तो ये तीनों चीज़ें, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, इसका पालन करोगे तो मैं समझता हूँ बीमारी आएगी नहीं। ये आयुर्वेद में इनको उपस्तंभ बोला है, जैसे स्तंभ होता है उसके जो नीचे लगाते हैं वो उपस्तंभ कहलाता है, यानी पूरा जो छत का वजन जो है उठ लेता है वो।
0: और सर अगर हम बात करें गर्भवती महिलाओं की, तो उनको कैसे उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनका कैसी देखरेख करनी चाहिए?
1: देखिए गर्भवती महिलाओं को भी विशेष ध्यान रखने की बात जरूरत होती है, एक तो उनको डाइट, ज़्यादा डाइट की जरूरत होती है बच्चे के लिए भी और अपने लिए भी, दूसरा वो महिलाएं काम भी ज़्यादा करती हैं तो उनको भी चाहिए को सुबह सुबह जल्दी वक्त से काम कर लें, गर्मी के मौसम में बाहर ना निकलें, बाहर ना जाएं, और खाना पीना तला भुना ये गर्म चीज़ें, गर्म मसाले वगैरह ना खाएं, ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें, मौसम के हिसाब से जैसे आपका दही की छाछ है या सत्तू, जैसे आपने बताया था सत्तू है, और आपका नींबू का पानी है, चावल है और जौ है, इनका सेवन करें, ये ठंडी चीज़ें सारी ये खानी चाहिए सभी को, गर्मी में तो जौ का सेवन बेस्ट है, चावल भी बेस्ट है।
0: जी हाँ, इस पर हम बातें अभी और भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं समर प्रॉब्लम्स एंड आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस पर। एक मैसेज है हमारे पास, ये है, लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम एंड डॉक्टर जी, मोहम्मद इम्तियाज़ जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से। ये लिखते हैं, आज की बात पे पहुंचना चाहता हूँ कि मेरी एज 40 साल है, हेल्थ हाइट 5.7 है और वेट 80 प्लस है। जैसे ही सुबह हल्का गुनगुना पानी में अजवाइन और गुड़ डाल के पीता हूँ, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है पर वज़न कम करना चाहता हूँ, उसके लिए क्या करूँ?
1: देखिए, वज़न कम करना चाहते हैं तो घिया और तोरी का सेवन करो, बाकी छोड़ दो, और खाना पीना कम करो और गर्म पानी में नींबू डाल के पियो, ठीक है? मीठा बिल्कुल छोड़ दीजिए, चाय पीते हो फीकी फीकी पियो या ग्रीन टी पियो, वज़न घटेगा, ठीक है?
0: एक और मैसेज है, ये लिखते हैं, माई नेम इज़ मुकेश, एज इज 79 ईयर्स, आई एम टेकिंग झंडू पंचारिष्ट, कैन आई यूज़ दिस इन दिस हॉट समर डेज?
1: देखिए, अगर आप झंटू पंचारिष्ट पी रहे हैं गर्मियों सर्दियों में भी और अभी आपको शूट कर रहा है तो आप पी सकते हो। अगर पीने से कोई दिक्कत ज़्यादा होती, मात्रा घटा सकते हो, 4 चम्मच पी रहे हो 3 चम्मच कर दो, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो बंद कर दो, क्योंकि ये इंडिविजुअल होता है हर एक का। यहाँ आयुर्वेद में ये सिस्टम नहीं है कि भाई आप सबके लिए की फार्मूला लागू होता है, या मौसम के हिसाब से सब ऐसे कर सकते नहीं है। तो मौसम के हिसाब से भी चेंज होता है, खान पीने में भी चेंज होता है, और इंडिविजुअल के ऊपर। जैसे मान लीजिए किसी को, बहुत से ऐसे लोग हैं दूध पसंद करते हैं, पर ऐसे भी लोग हैं जिनको दूध से एलर्जी होती है। वैसे आमतौर पर दूध सब पसंद करते हैं ना, पर दूध से एलर्जी होती है, किसी को चावल से एलर्जी हो रही है किसी को। तो अगर किसी को कोई चीज़ शूट नहीं करती तो सीधा फार्मूला उसको मत लीजिए आप, जो शूट करते हैं इससे लाभ होता लीजिए। और ये इस बारे में जो पेशेंट है वो ज़्यादा जान सकता है कि मुझे क्या शूट कर रहा है और क्या नहीं कर रहा।
0: डॉक्टर साहब, कई बार देखते हैं कि मौसम का असर हमारे स्वभाव पे भी पड़ता है। अच्छा मौसम होता है हम खुश होते हैं, अब जैसे गर्मी का मौसम होता है तो कई बार हम भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में इसके लिए भी आयुर्वेद में कुछ है?
1: हाँ, देखिए, नेचुरल क्या है, जब हमारा शरीर खुश होता है, जैसे मन खुश होता है, तो तभी मन खुश होगा जब हम अच्छा फील कर रहे होंगे, गुड फीलिंग होगी। और जब हम गर्मी में परेशान होंगे या किसी वजह से परेशान होंगे तो फीलिंग कहाँ गुड़ रहती है, फिर तो फीलिंग गड़बड़ आ जाती है। तो इसलिए ना, स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है। अगर हम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तो नेचुरल गुड फीलिंग होगी। और फिर हम किन लोगों के साथ बैठे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें काउंट करते हैं चीज़ों में गुड फीलिंग के लिए। ये नहीं खाली हम उधर तो कुछ गलत काम कर रहे हैं, उधर गुड फीलिंग कहाँ से आएगी भाई? गुड फीलिंग तब आएगी जब अच्छा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे जो सब उसको सराहें कि अच्छा काम कर रहा है। अगर कोई उसको कहेगा ये बेकार काम है तो कहाँ गुड फीलिंग आएगी? तो ये है कि सोच के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। और हमारा हेल्थ ठीक है तो हम अच्छी गुड फीलिंग कर सकते हैं, अच्छा सोचेंगे तो गुड फीलिंग रहेगी।
0: और डॉक्टर साहब, जैसे कि जो लोग कामकाजी हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कई बार होता है कि कईयों को ऑफिस में काम होता है, वो पूरा पूरा दिन एसी में रहते हैं, जब ऑफिस वर्क ओवर हुआ या लंच टाइम हुआ वो एकदम सडनली एसी से बाहर निकलते हैं, या कई लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रॉपर फील्ड वर्क होता है तो वो एकदम से गाड़ी में बैठे या ऑफिस में गए तो एकदम सडनली एसी में गए, तो ये जो सडन मौसम का चेंज होता है या एनवायरनमेंट चेंज होता है तो जिसकी वजह से कई बार तबीयत भी बिगड़ जाती है, तो उसके लिए आयुर्वेद में क्या उपचार है?
1: उसके लिए एक भी, जैसे आप मान लीजिए एसी में बैठे हैं, अपन को बाहर जाना है तो 10-15 मिनट पहले एसी को बंद कर दीजिए ताकि बॉडी आपका टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाए। ऐसे गाड़ी में

0: मौसम का चेंज होता है या एनवायरनमेंट चेंज होता है तो जिसकी वजह से कई बार तबीयत भी बिगड़ जाती है, तो उसके लिए आयुर्वेद में क्या उपचार है?
1: उसके लिए एक भी जैसे आप मान लीजिए इसी में बैठे हैं, अपन को बाहर जाना है तो 10-15 मिनट पहले इसी को बंद कर दीजिए ताकि बॉडी आपका टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाए। ऐसे ही गाड़ी में से आप उतरना है आपको तो पहले गाड़ी का एसी बंद कर दीजिए ताकि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाए। ये तो है भी, ये तो नहीं कि बाहर तो एसी नहीं लग रहा है आस जगह पे, बाहर तो एसी है नहीं, हमारी पृथ्वी पर भी हर जगह एसी चल रहा है, ये तो ठंडा मुल्क तो है नहीं है। तो ये है कि हमें ये अपने आप को सोचना है और अपने आप से करना है कि आप अगर जैसे गर्मी से आप एसी में जा रहे हो तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी धीरे धीरे कूल करेगी, पर जब आप कूल हो और एकदम बाहर जाओगे तो वहाँ हीटअप होती है बॉडी, तो वहाँ पहले ही एसी बंद हो जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर आपका नॉर्मल के करीब आ जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
0: और साथ में अगर हम देखें जैसे गर्मियों में वर्कआउट करने के लिए भी कई बार मन करता है कई बार नहीं करता क्योंकि गर्मी बहुत है, तो ऐसे में योग और प्राणायाम गर्मियों में कितना लाभकारी है और कौन कौन से करने चाहिए जिससे हेल्दी भी रहें और फिट भी रहें?
1: देखिए प्राणायाम तो मैं समझता हूँ कोई भी नुकसान करने वाला नहीं है, आप कम टाइम करिए उतना, जैसे आपको मान लीजिए आपकी प्राणायाम करने की ताकत आधा घंटे की है तो आप 15 मिनट कर लो बस, मतलब इतना ज़्यादा ना करो जिससे आपकी बॉडी पर ओवरलोड पड़े। हल्का खाओगे तो एक्टिव रहोगे, भारी खाओगे तो सुस्त पड़ जाओगे, तो वाली बात है। प्राणायाम करना है, कोई एक्सरसाइज करना है, योग करना है, वो लिमिट में करो। ये नहीं कि भाई आप ठंडे के मौसम में 1 घंटा कर रहे हो, गर्मी में 1 घंटा करोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए टाइम रिड्यूस करो उसका और इस तरीके से करोगे तो एडजस्ट हो जाएगा बॉडी, अपनी इंडिविजुअल बॉडी एडजस्ट करें। टाइम क्या करने का ये भी डिपेंड करता है, अगर आप सुबह सुबह ठंडे मौसम में करेंगे तो ज़्यादा कर पाएंगे, गर्मी शाम को करेंगे तो शाम को टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो नेचुरल वहाँ आप कम कर पाएंगे, तो वहाँ अगर ज़्यादा करेंगे दिक्कत आ जाएगी आपको, तो इसलिए अपने आपको खुद एडजस्ट करना पड़ता है।
0: और अक्सर होता है कि हम एकदम ठंडा पानी भी पी लेते हैं, तो पानी किस टेम्परेचर का हमें पीना चाहिए क्योंकि गर्मी लगती है, प्यास लग रही होती है, लगता है कि हाँ नॉर्मल पानी पियेंगे भी प्यास नहीं बुझेगी।
1: देखिए ऐसा होता है, यही तो बात है कि भाई आप मटके का पानी पियो, मटके में पानी रखो उसको पियो, कुछ भी नहीं होगा आपको, ना गला खराब होगा, ना खांसी होगी, ना कुछ होगी। अब हम एसी का भागते हैं, अब बाहर गर्मी में से आए और एसी का ठंडा पानी पियेंगे तो गर्म सर्द हो जाएगी, तो फिर आपको गला भी खराब, गला पकड़ा जाएगा और खांसी जुकाम भी हो सकता है आपको। इसलिए बेहतर है अगर मान लें मटका नहीं है, गर्म एसी है तो पानी ठंडा गर्म मिक्स कर लो फिर पी लो उसको, पर एकदम ठंडा मत पियो आप, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी एकदम ठंडा है तो आपको दिक्कत पड़ेगी।
0: सर और एक ये चीज़ और जानना चाहेंगे कि एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं गुड आफ्टरनून मैम और डॉक्टर साहब को भी गुड आफ्टरनून। वो लिखते हैं कि बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छी उपयोगी जानकारी दे रहे हैं। वो लिखते हैं मेरा प्रश्न है कि गर्मियों के दिनों में मुंह पर घुमौरियाँ हो जाती हैं, इसका क्या कारण है, हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए कि हमें मुँह पर घुमौरियाँ ना हों, इसके बारे में बताने का कष्ट करें।
1: देखिए ऐसा होता है, एक तो आपकी एज कितनी है हम ये जानना चाह रहे हैं।
0: उन्होंने लिखी है उनकी एज जो है 25 वर्ष,
1: बस यंग एज है आपकी
0: जी।
1: तो ये
0: है जोगाराम बलोतरा राजस्थान से।
1: जोगाराम जी, गर्मियों में लोग आम खाते हैं और आम जो है वो कार्बाइड में पक रहा है, पता है आपको कार्बाइड में पकता है और कार्बाइड से कैंसर होता है, ठीक है, और आम की तासीर वैसे गर्म है, तो ये जो गर्म आम है और गर्म कार्बाइड का तो छोड़ दीजिए आप, वो तो पूरे देश में ऐसे चल रहा है इसलिए कैंसर भी फैल रहा है उससे, पर जो गर्मी है और आम खाने से ऐसी घुमरियाँ हो जाती हैं आमतौर पर यंग एज में, ये कॉमन है। इसका तरीका ये है कि आम को पहले आप पानी में भिगो, कम से कम 24 घंटे पानी में भिगा रहने दो, पानी चेंज करो उसका, और उसके बाद में उसको खा रहे हो तो दूध के साथ लो उसको, दूध आम और दूध मिक्स करके लो, या आम खाओ पर से दूध पियो, तो फिर ये घुमरियाँ आपको नहीं होगी। और बिल्कुल ठीक करने का तरीका बता रहा हूँ फ्री में, अगर आप 10 बजे सोते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं 6 घंटे की नींद लेके, तो 4 बजे 5 बजे और 6 बजे अपना स्पूटम अपने चेहरे पर लगाओ, ऐसा करोगे तो 15 दिन में घुमरियाँ आपकी सूखनी शुरू हो जाएंगी, तो ठीक हो जाएंगी बिना दवाई के।
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम?
2: सलाउद्दीन बोल रहे हैं जी, कस्बा कठौर जिला मेरठ से
0: जी। बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: सर प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है गर्मियों के लिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लाए हैं डॉक्टर साहब, को भी हमारा सलाम।
1: सलाम जी।
2: हाँ जी, हमारे जो बच्चा है करीब 6 साल का है, वो गर्मियों के दिनों में उसकी आंखों में बहुत खुजली हो जाती है, तो इसके लिए आपसे बस ये मालूम करना था।
1: देखिए ठंडे पानी के छींटे मारिए आंखों पे उनको, आंखें।

0: बंद करा के ऊपर से मारी ठंडे पानी छींटे, दिन में 3-4 बार आँखें धोइए और उसको कम से कम 2 बार उसको नहलाइए और धूप में उसको जाने से बचाइए आप। और धूप का चश्मा अगर आप बच्चा लगा सकता है तो उसका इस्तेमाल करें बस।
1: और जैसे आंखों में कोई आयुर्वेदिक की कोई ऐसी दवा है डालने की?
0: डालने के लिए आयुर्वेदिक दवाई आती है, एक आइसोटोन आती है, वो डाल सकते हैं।
1: अच्छा, और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है जी, आप ये रेडियो पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी,
0: धन्यवाद।
1: जितने भी आप हमारे साथी सुन रहे हैं भाई, सभी को हम कहना चाहेंगे प्रोग्राम सुना करें और उस पर अमल करें। और हम भी तो भाई उसके पानी पीते हैं करीब 1-1.5 लीटर और उसके बाद में सोच जाते हैं, साफ हो जाता है पेट, इसलिए बहुत अच्छा दिन भी
2: जी,
1: अच्छा गुजरता है
2: जी। धन्यवाद जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि उन्होंने आंखों का पूछा तो एक बार संक्षिप्त में, मैं चलने का समय हो गया है लेकिन एक बार जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद के अनुसार किस तरह की डाइट सभी को लेनी चाहिए।
0: देखिए आयुर्वेद में तो जैसे वेदों में अपना जैसे अपना सनातन है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है, और आयुर्वेद में जो है वो स्वस्थ रहकर जीने का तरीका है। तो अगर आयुर्वेद को अपनाते हैं तो मैं समझता हूँ कोई आदमी बीमार हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें यहीं से शुरुआत होती है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर उक्षपान करना, उसके बाद में फ्रेश होना, मंजन करना, ब्रश करना। अब ब्रश मंजन की बात है, मंजन की बजाय सबसे जो है बबूल और नीम की दातुन सबसे अच्छा है, पर लोग उनको भूल गए। आजकल पेस्ट लगा रहे हैं अलग अलग कंपनियों के, तो उनसे कैंसर भी हो रहा है मुंह का। तो या फिर आयुर्वेदिक मंजन करिए। अब ये है, यहाँ पे जो मिलावट का चक्कर है सबसे बड़ा खतरनाक है। अब लोग मिलावट से बचते, कोई मिलावट के लिए तो कोई यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है, कोई किसी चीज़ में कुछ भी मिला सकता है, आपको कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिल रही आपको, तो आप करेंगे क्या। तो ये कि आयुर्वेद में जो सिस्टम लिखा है उस तरीके से आप नहाना खाना पीना सब एक लिमिट में रखिए आप, तो उस चीज़ को अपनाएंगे आप तो मैं समझता हूँ बीमार होगे नहीं आप, ठीक है। उसमें वही है, हम पहले मानते हैं, हमने बताया पहले भी, सकारात्मक सोच रखो, उसके बाद में अपना दांत ठीक रखो, और जैसे दांत सही तो पेट सही, और पेट सही तो सेहत सही, सीधा फार्मूला है। फिर आपका पेट साफ़ होना चाहिए, फिर आपका खून भी साफ़ होना चाहिए। उसके लिए आपका दीर्घ संका पेट साफ से लघु संका खून साफ करते, बार बार पेशाब आता है आपको तो साफ रहेगा। अब लोगों को कब्ज है, किसी को खाना उटपटांग, कितने मसाले उल्टा सीधा खाना खाते हैं तो किडनी ख़राब कर रहे हैं, कहीं लीवर खराब कर रहे हैं, कहीं कितनी प्रॉब्लम, गैस बनती है लोगों को, गैस बनकर गैस जहाँ भी जाती है वहीं अपनी बीमारी पैदा करती है, गॉल ब्लड स्टोन बन रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, वो सब गैस की मेहरबानी से हो रहे हैं। जहाँ गैस जाएगी अपना काम, गैस मतलब वायु, और ये गर्मियों में वायु बढ़ती है, वायु का वेग बढ़ता है, इसमें कफ का कम होता है, इन ताकत कम हो जाती है और शरीर इस तरीके से वायु का वेग बढ़ता है। तो खाने पीने का सिस्टम ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या खा रहे हैं।
2: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, हेलो डॉक्टर, डॉक्टर साहब जी एवं शिल्पा जी और शालिनी मित्तल जी को सादर प्रणाम, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और विषय भी बहुत अच्छा है, आज आयुर्वेद पर जानकारी प्राप्त हुई। ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जाते जाते संक्षिप्त में बस इतना श्रोताओं के लिए एक मैसेज बता दीजिए कि गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए रोज़ क्या करें।
0: देखिए गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठंडी चीज़ों का खाना, धूप से बचना, गर्म मसाले वगैरह नहीं खाना, वेजिटेरियन फूड खाएं आप, वो ठंडा हो सकता है, नॉन वेज हमेशा गर्म रहता है, ठीक है। तो जितने आपके ड्राई फ्रूट हैं उनको भिगो के खाएं आप, सूखे ना खाएं, और सूखे गर्म होते हैं, भीगने के बाद में गर्मी ख़त्म हो जाती है तो आप खाएं उनको। पानी ज़्यादा पिएं, बार बार पानी पीते रहें, हर घंटे में 2 घंटे में 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि जितना पानी पिएंगे, क्योंकि पानी हमारा बाथरूम से भी जा रहा है बाहर, खून साफ हो रहा है, पसीने से भी जा रहा है, और जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है उनको पानी ज़्यादा पीना चाहिए।
2: तो श्रोताओं, स्वस्थ वही जो मौसम के साथ संतुलन बनाकर चले और प्रकृति के नियमों को अपनाए। आयुर्वेद सिर्फ उपचार नहीं, स्वस्थ जीवन जीने की कला है। स्वस्थ जीवन की शुरुआत सही आदतों से होती है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर बलजीत सिंह दबास, आयुर्वेद स्पेशलिस्ट। आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद मैडम, आप मुझे बुला रहे हैं तो मेरा फर्ज है कि मैं अपना ज्ञान लोगों को दूं और लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कि हमारा उद्देश्य ये है कि आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे तो आप अपना काम भी सही करेंगे और अपना परिवार का काम भी, परिवार को भी सब संभालेंगे और स्वस्थ रहेंगे।

0: तो देश की सेवा भी सही करेंगे।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूँगी, गर्मी की तपिश से बचाव का मंत्र है सही दिनचर्या और संतुलित आहार। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, सजग रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का जो
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। इटली के रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीति भागीदारी में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को मिलिट्री ऑनर दिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा से उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर ये नोटिस जारी किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज पेचिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से पेचिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बनी रह सकती है, जबकि असम, मेघालय, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन के लिए बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र, झारखंड,

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
2: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
3: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव।

दोस्तों, जब जब ये गीत हमारे कानों में पड़ता है तो हमको याद आ जाती है 1982 की फिल्म नदिया के पार। और ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें पारिवारिक संबंधों को और नैतिक मूल्यों की अहमियत को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया था।

लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है, वैसे वैसे आज की युवा पीढ़ी ना तो रिश्तों की अहमियत को समझ पा रही है और ना ही संभाल पा रही है नैतिक मूल्यों की धरोहर। और दोस्तों, इसी वजह से रिश्ते टूट रहे हैं और कदम बढ़ रहे हैं गुनाहों की तरफ। दोस्तों, आज दिशा प्रोग्राम में हम बात करेंगे इसी विषय पर, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ इस प्रायोजित कार्यक्रम दिशा में।

जी हाँ, कुछ ऐसी ही सोच भटका रही है आज के युवाओं को, और उनके कदम बिना सोचे समझे बढ़ जाते हैं गलत दिशा में, और जब तक वो समझ पाते तब तक हो जाती है बहुत देर।

मेरा नाम आशीष है और मैं एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी मेरी शादी हुई कंचन नाम की खूबसूरत लड़की से और एक साल बाद हमारे घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। हम सब बहुत खुश थे। फिर पता नहीं किसकी नज़र लगी और मेरी मुलाकात हो गई समीर नाम के लड़के से, जो देखने में एक अच्छे घर का लगता था। उसने मुझे बताया कि उसका अपना बिजनेस है, जिसके कारण कई बार वो शहर के बाहर आता जाता रहता है। उसके रहन सहन और बातचीत से मैं इम्प्रेस हो गया और उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। और एक दिन वो मेरे पास आया और बोला कि मुझे दिल्ली के बाहर जाना है और मेरे पास कुछ 3-4 लाख रुपए हैं, क्या तुम उनको अपने पास 1-2 दिन के लिए रख सकते हो? मैंने हामी भर दी और वो पैसे मुझे देकर चला गया। 2 दिन के बाद पुलिस मेरे घर आई, तब मुझे पता चला कि समीर नशे का बिजनेस करके युवाओं के जीवन से खेलता है और मेरी गलती की वजह से मुझे 3 साल तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। लेकिन अभी मैं बाहर हूँ और अपने जीवन की शुरुआत फिर से करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझसे जो गलती हुई कि मैंने किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंखें बंद करके उस पर यकीन किया। मैं इस कार्यक्रम के द्वारा सभी लोगों को सावधान करना चाहता हूँ कि आप लोग किसी पर जल्दी से भरोसा ना करें, नहीं तो आप भी मेरी तरह मुश्किल में पड़ सकते हैं।

0: जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम दिशा एसआर यानी संतोष राव के साथ। और दोस्तों, आज के विषय पर क्या विचार हैं लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ के, आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार प्रिय श्रोता, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से माता पिता अपने बच्चों की परवरिश में शामिल रह सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हुए उनके जीवन में इस तरीके से शामिल होना कि उनको सही दिशा दिखा सकें ताकि बच्चों का विकास अच्छा हो। इसलिए माता पिता का ये जानना कि उनके मित्र कौन हैं, बच्चों का शेड्यूल क्या है, किस तरीके की उनकी हॉबीज हैं वगैरह वगैरह, ये जानना ज़रूरी है। इसके लिए माता पिता को अपना समय निकालना होगा, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि अधिकतर आजकल माताएं भी घर से बाहर निकल रही हैं काम करने के लिए, तो जब माता पिता दोनों बाहर हैं तो और भी ज़्यादा हमको ध्यान रखना है कि हमारे बच्चों का आना जाना कहाँ है। ये याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे माता पिता का कहना कम मानते हैं, लेकिन जो माता पिता कर रहे हैं उसको देखते बड़े गौर से हैं। जी हाँ, हो सकता है कि हम अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं वो स्वयं हम उस पर नहीं चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन का ही इस्तेमाल करना, अगर माता पिता ये रूल बनाते हैं कि घर में खाने के समय पर या जब परिवार एकत्रित है तब हम अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन माता पिता खुद फोन पर लगे हैं, तो फिर ये सोचना कि बच्चे उनकी बात मानेंगे ये बहुत मुश्किल है। तो पहले तो हमको खुद ही अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे लिसनर्स हमको लिख कर कह रहे हैं, हमको फ़ोन करके कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को अनुशासित नहीं कर पा रहे हैं, वो इसलिए वो हमारी सलाह चाहते हैं, हमारे सलाहकारों से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने स्कूल जाते आते बच्चों को वो मोबाइल के जो एडिक्शन हो गया है उससे बचा सकते हैं। परिवार के लिए जो नियम बनते हैं उनको सबसे पहले माता पिता को खुद फॉलो करना है, उसके बाद ही बच्चों को हम अपना आदेश दे सकते हैं। बच्चों के साथ दोस्ती रखना ज़रूरी है कि दोस्ती में वो क्या क्या हमसे शेयर कर लेते हैं, क्या क्या हमसे बातें कर लेते हैं। अधिकतर देखा गया है, पाया गया है कि माँ जो होती हैं वो अपने बच्चों के काफ़ी करीब होती है और बच्चे काफ़ी कुछ उससे शेयर कर लेते हैं अपने मन की बात। कई परिवारों में पिता बहुत अच्छे होते हैं और अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं। जैसे मेरी परवरिश में मेरे पिता का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे माता पिता दोनों सर्विस करते थे, दोनों कार्य करते थे, जॉब करते थे, लेकिन मेरे पिता हमारे साथ काफ़ी समय बिताते थे, हमको शिक्षा देते थे। जिस भी हम अपने जीवन के सीज़न में होते थे उसके संबंधित हमें बताते थे, जब छोटे थे तो किस तरीके के दोस्त रखने हैं, हमारे दोस्त कौन हैं, उनको घर बुलाते थे अपने जन्मदिन पर और बाकी जो त्यौहार होते थे, कहते थे अपने मित्रों को घर बुलाओ, अपने स्कूल के साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको घर बुलाओ, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं अपने मित्रों से। तो हमारे मित्र कौन हैं ये माता पिता जानना चाहते हैं और जानना भी चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे मित्र हैं तो हमारे ऊपर उनका प्रभाव भी अच्छा होता है। आजकल के समय में माता पिता बच्चों को लेके बहुत परेशान हैं। हमारे श्रोताजन ने बताया उनके बच्चे ड्रग्स में हैं या घर छोड़ के चले गए हैं या डिप्रेशन में हैं, तो ऐसे में माता पिता की जिम्मेवारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और केवल नज़र रखना ही नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक दोस्ती के साथ उनको सही दिशा दिखाना आवश्यक है।
0: जी हाँ, आज का युवा जब सब कुछ पता है कहने लगे तो हर माता पिता को हो जाना चाहिए सतर्क, क्योंकि इस उम्र में युवाओं को हर चमकती चीज लगती है सोना। जी हाँ, मम्मी पापा, दादा दादी या नाना नानी का साथ अगर बच्चों को मिलता रहे तो बच्चों के कदम बहकने से पहले वो 100 बार जरूर सोचेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे काउंसलर से आज के विषय पर बात करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर फोन या मैसेज जरूर करें। 7678438471। जी हाँ, 7678438471 हमारा ये नंबर है जिस पर आप हमारे काउंसलर से समाधान पा सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे साथ यानी दिशा फाउंडेशन के साथ जुड़कर लोगों की जिंदगियों को सही दिशा दिखाकर उनको संवारने में हमारा साथ देना चाहते हैं तो आप हमें इसी नंबर 7678438471 पर मैसेज जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन लेकर हाजिर हूं मैं स्वाति एक बार फिर से आप सभी के साथ। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हर बार हम आपको ले चलते हैं एक नए कॉलेज की तरफ, हर बार आपको आपकी मुलाकात करवाते हैं नए स्टूडेंट से, नई सोसाइटी से, टैलेंट से, टीचर से, प्रिंसिपल से। एक बार फिर से इसी श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्यामलाल कॉलेज इवनिंग। जी हाँ, आज हम श्यामलाल कॉलेज इवनिंग जो है वहां के स्टूडेंट से बातचीत करेंगे और ये काम कर रही हैं हमारी सहयोगी माला नेगी जो पहुंची वहां पर, यानी कि कॉलेज में। और वेल, कॉलेज लाइफ के सारे नज़ारे जो हैं उन्होंने देखे हैं, बहुत सारी एक्सटेंसिव कवरेज उन्होंने की है और ये सारी कवरेज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए। आइए करते हैं शुरुआत की आखिर माला नेगी ने वहां पर क्या क्या की बात।
2: आज बेहद ही खास दिन है क्योंकि आज श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में पहुंची है रेनबो इंडिया की टीम। ये खास मौका हमारे लिए भी है क्योंकि आकाशवाणी के 90 इयर्स के सेलिब्रेशन को लेकर हम भी काफी एक्साइटेड हैं और इस बारे में श्यामलाल कॉलेज इवनिंग की स्टूडेंट्स भी कुछ कहना चाहती हैं।
3: मेरा नाम सान्या खरे है, मैं बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरे लिए आकाशवाणी वो आवाज है जो एक दिल से निकल के दूसरे दिल तक जाती है और सिर्फ सुनाई नहीं महसूस करती है।
2: और आर्या, आप क्या कहना चाहेंगी?
4: मेरे लिए आकाशवाणी हर पीढ़ी को जोड़ने वाला एक खूबसूरत माध्यम है।
2: अश्नित, बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगी आप आकाशवाणी के बारे में?
5: आकाशवाणी जहां हर एहसास को मिलती है उसकी अपनी आवाज।
2: श्यामलाल कॉलेज से बीकॉम प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रही हैं मीनाक्षी। आइए जानते हैं उनसे कि उनके लिए आकाशवाणी क्या है।
6: आकाशवाणी मेरे लिए मेरे अकेलेपन का साथी है।

0: Zena, loads of love and many kisses to you. So beautiful, so lovely, so melodious. मतलब ऐसे लगा कि तुम जो गा रही थी ना, जो सोच के गा रही थी, मैं वहाँ पहुँच गई. बहुत ही ब्यूटीफुल. आर यू अ ट्रेंड सिंगर?
1: मैं अभी सीख रही हूँ, मैं ट्रेंड तो नहीं हूँ.
0: इट वॉज वेरी लवली.

0: जेना के साथ गिटार पर थे
1: आदित्य कश्यप।
2: वाकई में बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति इन स्टूडेंट्स की है, और आकाशवाणी और स्टूडेंट्स का ये जो संगम है इसी का नाम है अल्फाजिन कैंपस कॉलिंग। सुनते हैं इसे आप हर बुधवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। लेकिन ये तो थी सिर्फ बातचीत की शुरुआत, आगे बढ़ाते हैं अब हम इस बात को। और माला नेगी ने की वहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स से मुलाकात, बहुत सारी सोसाइटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारी बातें उन्होंने कवर की, आइए जानते हैं।
0: हाय, तो अभी मैं हूँ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग के एनसीसी ग्रुप के साथ, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ट्रॉफी। और ये इतनी ट्रॉफीज इसलिए है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में श्यामलाल कॉलेज का एनसीसी नंबर 1 पर आता है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू।
3: थैंक यू।
0: और जानना चाहेंगे कि जब नंबर 1 होता है कोई भी इंसान, कोई भी टीम, तो हर कोई ये जानना चाहता है कि वो नंबर 1 कैसे हैं, यही हम भी जानना चाहते हैं।
3: सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। देयर आर लॉट मोर थिंग्स इन व्हिच वी हैव वॉन द ट्रॉफीज एज लाइक ड्रिल्स, टग ऑफ वॉर। द फॉरमोस्ट थिंग इज द हार्ड वर्क, द हार्ड वर्क वी हैव पुट इन। हमने हर एक चीज को बहुत सिस्टमैटिक मैनर में रखकर पूरे की पूरी शिद्दत से काम करा, ऑनेस्टी के साथ। इसी ऑनेस्टी के साथ हमने हर एक चीज क्लियर करी और उसी वजह से आज हम नंबर 1 पर।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर ऑल फ्यूचर इनिशिएटिव्स। मैं तो कहूंगी कि आप अगले आने वाले हर सालों में बस इसी तरह से नंबर 1 की पोजीशन बरकरार रखें। थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू मैम।
0: हाय, तो अभी मैं हूँ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में और मेरे साथ एक नहीं बल्कि दो दो लखपति लड़के हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये लखपति कैसे, और मैं इनके बारे में इस तरह से इंट्रोडक्शन क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आज एक बहुत स्पेशल डे है और आज ही के दिन कॉलेज के ये दो स्टूडेंट्स जो हैं वो लखपति बने हैं, क्योंकि श्यामलाल कॉलेज का स्पोर्ट्स में बहुत योगदान है, बहुत नाम है और आज ये कॉम्पिटिशन विन करके आए हैं जिसका प्राइस था 1,00,000 रुपए। तो ज्यादा जानकारी हम इन्हीं से लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू।
4: थैंक यू मैम। मेरा नाम राहुल गुप्ता है, मैं बीकॉम सेमेस्टर 2 का बच्चा हूँ। मेरे अंकित सर कोच है, सर ने बहुत सपोर्ट किया, प्रैक्टिस वगैरह रेगुलर करवाई, किकिंग वगैरह सब चीज, अटैक, नया नया आइडिया बताया, इससे हमें नया नया जानने को मिला, टेक्निक मिला, वही आज हमने यूज किया, क्लियर स्कोर आया। फर्स्ट मैच हमारा रमजवान कॉलेज से था जिसको हमने 7 पॉइंट की लीड से हराया। सेकंड फाइट मेरा हंसराज से था, सेकंड फाइट में मैं थर्ड राउंड तक गया क्योंकि सेकंड राउंड टाई हो गया था, फिर थर्ड राउंड में जाके 2 पॉइंट की लीड से जीता। फिर थर्ड फाइट पीजीडीएवी इवनिंग से हार गया मैं, जिससे मेरा ब्रॉन्ज मेडल हुआ।
0: और ये आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला, साथ में आपको 1,00,000 रुपए का प्राइज भी
4: प्राइज मनी मिला।
0: और ये प्राइज मनी आपको कौन देगा?
4: दूसरों देगी।
0: ओके, ऑलराइट, वी हैव अनदर लखपति बॉय। आपका नाम?
5: शिवम कुमार सिंह।
0: शिवम, आपको भी 1,00,000 रुपए मिले हैं, तो कौन सा कंपटीशन आपने जीता है?
5: मैम टाइक्वांडो।
0: टाइक्वांडो में
5: अंडर 58।
0: तो इसके प्रैक्टिस के लिए जितना आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स दिए, कहीं ऐसा लगा कि उसमें पढ़ाई भी थोड़ा सा हिल गई है?
5: यस मैम, पढ़ाई भी हिल गई है, अटेंडेंस भी मैटर करता है। हाँ। के लिए क्लासेस भी लेना जरूरी है, ट्रेनिंग करना जरूरी है, मेडल ऐसे नहीं आएगा बिना ट्रेनिंग के।
0: तो इसमें कॉलेज कितना सपोर्ट करता है, क्योंकि आपकी क्लासेस मिस हुई, अटेंडेंस की गड़बड़ हुई है, तो कॉलेज कितना सपोर्ट करता है?
5: सर सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, खेलो ड्यू का फॉर्म भी सर ने भरवाया था और हमारा इंटर कॉलेज भी करवाया,
4: पता भी नहीं था, सर ने नोटिस करवाया,
5: खेलो ड्यू के बारे में पता भी नहीं था, सर ने फॉर्म भरवाया, सर ने करवाया हमारा।
0: तो कहने का मतलब ये है कि श्यामलाल कॉलेज जो है वो अपने स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स के लिए हर तरीके से सपोर्ट करता है, और इवनिंग कॉलेज जब इस तरह से परफॉर्म कर रहा है स्पोर्ट्स में, तो कहीं ना कहीं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए या उन तक सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर पहुंचाने के लिए स्टाफ का और स्पोर्ट्स के जो टीचर्स हैं उनका बहुत अहम योगदान है। थैंक यू सो मच इस इंटरेक्शन के लिए और बहुत बहुत आपको फ्यूचर के लिए विशेस, गुड विशेस। अभी 1,00,000 जीते हैं, 10,00,000 और 1,00,000 रुपए जीती और भारत का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू सो मच। तो अभी मैं हूँ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में और मेरे साथ है अंबेडकर स्टडी सर्कल सोसाइटी के मेंबर्स। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस सोसाइटी में एक्चुअली होता क्या है। हाय, वेलकम टू द शो।
6: नमस्ते मैम। बेसिकली अगर बात करें तो ये सोसाइटी बाबा साहब को लेकर ही बनाई गई है
0: जी,
6: और इसमें तो सारे फंक्शन बड़े होते हैं, लेकिन अम्बेडकर जयंती जो 14 अप्रैल को आती है, हम कि बाबा साहब को हम लोग केवल आइकॉन के रूप में प्रदर्शन करते हैं कि बाबा साहब को कोई जानते हैं, बट हम बाबा साहब के जीवनियों सीखना है, हमें उनके स्ट्रगल सीखना है। तब हम लोगों ने उसे नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जो एक बच्चों के ऊपर जो बच्चों के मस्तिष्क के ऊपर छप जाए। अच्छा। तो इन सारे कार्यक्रम को करते हैं इसमें।
0: हाय, तो अभी मैं हूँ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में और अभी मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ के इस कॉलेज के बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स हैं। जनरली क्या होता है, जब कॉलेज में बच्चे आते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारी लाइफ तो फ्री हो गई, अब मजे ही मजे हैं, लेकिन कॉलेज में भी कई तरह की परेशानी, परेशानियाँ होती हैं और उन परेशानियों को हैंडल करती है ये टीम, यानी कि ICC की टीम जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है श्यामलाल कॉलेज इवनिंग की। किस तरह की कंप्लेंट्स लेते हैं ये और उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, आइए जानते हैं इनसे। आपका नाम?
1: मेरा नाम दिव्यांशु है, मैं इस कॉलेज का जेंडर चैंपियन हूँ, यानी मैं इस कॉलेज के कमेटी मेंबर हूँ, जिसमें हम बच्चों से हरासमेंट अगर फील कर रहे हैं, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकली हो या फिर किसी भी टाइप का हरासमेंट हो, जो उसे लग रहा है कि गलत हो रहा है, तो हमारे पास बिना आ सकता है, मतलब बिना किसी झिझक के आ सकता है। वो हमें आके बता सकता है कि हमें उसके लिए एक बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाते हैं। वो बताएगा हमें ये फील हो रहा है, तो हम उसकी बातों को एक गोपनीय रखते हैं और अच्छे से उसकी चीज़ों को सुनते हैं। फिर हम दोनों तरफों की बातों को सुनकर फिर एक अच्छे से एक राय बनाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। पहले हम बातचीत से समझाएंगे कि क्या सुलझ रहा है, नहीं सुलझ रहा, अगर नहीं सुलझ रहा हमारे फिर कमेटी में ये भी प्रबंध है कि उसे सच्चा मिल सकता है।
0: थैंक यू सो मच। तो अभी मैं हूँ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में और जब हम कहते हैं कि सेवा परमो धर्मः, तो हमारे दिमाग में कॉलेज के परिप्रेक्ष्य में कुछ कॉलेज कमिटीज का नाम सबसे पहले दिमाग में अंकित होता है और वो होती है NCC और NSS। भावेश प्रताप सिंह है हमारे साथ NSS से। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस कॉलेज का NSS का सबसे बड़ा और मेगा इवेंट कौन सा होता है और उसमें क्या होता है?
7: मैम, सबसे बड़ा और सबसे मेगा इवेंट जो होता है वो 7 डेज कैंप होता है।
0: 7 डेज?
7: हाँ,
0: ओके।
7: उसमें मैम हम डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, जैसे वाटर कंजर्वेशन रैली, या फिर उसके अलावा हम जो है क्लॉथ डोनेशन ड्राइव, या इसके अलावा और भी अदर एक्टिविटीज जो भी, जैसे हमने कुछ सेमिनार्स करा रखे थे, या हम किसी भी NGOs को बुला के उनसे कोलैब करके जो मतलब स्टूडेंट्स हैं जो कि अंडर प्रिविलेज हैं उनको वहाँ पे जाके, कुछ स्टूडेंट्स जाते हैं इंटर्नशिप के लिए, वहाँ पे वो जाके पढ़ाते हैं, जो इनको पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती उनको जाके पढ़ाते हैं, उनसे बात करते हैं, समझना चाहते हैं। और NSS का, जैसे हम जानते हैं कि नॉट मी बट यू, एक NSS का मोटो है, इसके लिए हम ये भी जानना चाहते हैं कि NSS जैसे सोशल सर्विसेज में लोगों के लिए क्या करता है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स निकालती है लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो हम ये अवेयरनेस रैलियाँ जो होती हैं इससे भी रिलेटेड हम रैलियाँ कराते हैं। हमने अभी पीछे वाटर कंजर्वेशन रैली निकाली थी, दिल्ली में वाटर प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं, तो उससे रिलेटेड हमने लोगों से जाना कि कैसे क्या, कैसे पानी का टाइमिंग क्या होता है और सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों में NSS ये सब काम करती हैं।
0: थैंक यू सो मच।
2: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का स्पेशल एडिशन। आज सैर कर रहे हैं हम श्यामलाल कॉलेज इवनिंग की और यहाँ पे आपने सुना कितना टैलेंट है बच्चों में और उसके साथ साथ एकेडमिक्स के साथ में दुनियादारी की जो बातें हैं वो भी सीखते हैं और दुनिया के असली प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे भी जूझते हैं। ये सभी चीज़ें मिलती हैं आपको अपने कॉलेज लाइफ में और ये कॉलेज लाइफ जो आपको आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार करती है ये बहुत ही स्पेशल होती है। इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है कैंपस की इसी जिंदगी को, इसी लाइफ को, इसी स्टूडेंट लाइफ को, इसी कॉलेज लाइफ को। 102.6 आकाशवाणी रेनबो प्रोग्राम चल रहा है अल्फाजन कैंपस कॉलिंग।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक आकाशवाणी रेनबो।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।
7: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का स्पेशल एडिशन, जब हम आपको ले चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में। आज पहुंचे कहां पे? हम पहुंचे श्यामलाल कॉलेज इवनिंग, जिसकी फाउंडेशन रखी गई थी 1964 में। जी हां, बहुत ही लंबा इतिहास है इस कॉलेज का और यहां के बच्चों से की बातचीत हमारी सहयोगी माला नेगी ने। आइए जानते हैं कि आगे उन्होंने किससे मुलाकात की।
8: हाय, तो अभी मैं हूँ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में। इन दो खूबसूरत लड़कियों के बीच में मैं खड़ी हूँ और खूबसूरती का मतलब सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं होती, खूबसूरती का मतलब प्राकृतिक सौंदर्य भी होता है जिसकी रखवाली ये लोग करते हैं। एब्सोल्युटली राइट, गार्डन कमिटी सोसाइटी जो है श्यामलाल कॉलेज इवनिंग की, उसके मेम्बर्स के बीच में हूँ और ये लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि इनका कॉलेज खूबसूरती में भी कहीं कम नहीं रहना चाहिए और

0: सोसाइटी जो है श्यामलाल कॉलेज इवनिंग की, उसके मेंबर्स के बीच में हूँ और ये लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि इनका कॉलेज खूबसूरती में भी कहीं कम नहीं रहना चाहिए और साथ ही साथ उसके औषधीय गुणों का फायदा भी कॉलेज स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, क्योंकि इनके कॉलेज में कुछ खास होता है ऐसा, वो मैं नहीं यही बताएंगे। आपका शुभ नाम?
1: आयुषी आत्रे। वी ऑल वर्क टुगेदर बेसिकली, बट वी ऑल मैनेज टुगेदर। हमारा एक बहुत ही कोलैबोरेटिव बॉन्ड है बेसिकली, इन विच वी ऑल वर्क इन गार्डन एंड आर हेल्पर्स बेसिकली विच प्लांट ट्रीज एंड वी बेसिकली फोकस मेनली ऑन हर्बल प्लांट्स।
0: और हमारे साथ है विदुषी। विदुषी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हर्बल प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो हर्बल प्लांट्स और नॉर्मल प्लांट्स, उनके रख रखाव में कितना फर्क है और हर्बल प्लांट्स जो है वो कितने डिमांडिंग है केयर को लेकर?
2: मैम, डिमांडिंग एज सच हर एक प्लांट होता है और इनके रख रखाव के लिए हमारी हेल्प हमारे वर्कर्स के साथ होती है एंड वो हमें एजुकेट करते हैं और हम सीखते हैं और यही एक कंटिन्यूटी के अंदर चेंज चल रही है और चलती रहेगी, जिससे हम हर्बल प्लांट्स को सिर्फ हमारे कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए एक जनरल अवेयरनेस सभी तरफ फैलाते रहे।
0: ओके, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू
0: एंड वेरी ऑल द बेस्ट टू यू आपके फ्यूचर एम्स के लिए।
2: थैंक यू।
0: थैंक यू। तो अभी मैं हूँ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में और मेरे साथ है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनके कॉलेज के स्टूडेंट्स का स्किल निरंतर बढ़ते रहना चाहिए और बहुत अहम जिम्मेदारी है इनके कंधों के ऊपर। SDC के मेंबर्स हैं हमारे साथ, यानी कि स्किल डेवलपमेंट सेल के मेंबर्स। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो सोसाइटी है उसमें रेगुलर बेसिस पर कौन से स्किल्स की ट्रेनिंग होती है और उसका क्या बेस्ट आउटपुट आपने दिया है?
3: मैम, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ स्किल डेवलपमेंट सेल का। तो हमारी सोसाइटी जो है वो बेसिकली स्किल्स पे काम करती है, वर्कशॉप्स कराती है कॉलेजेस में, बाहर के कॉलेज में बच्चों को अपनी भेजती है वर्कशॉप के लिए और बाहर से जितने भी फील्ड्स के होते हैं उनको बुलाती है प्रोफेशनल्स को। लाइक अभी 2024 में हम लोग देखे तो MOU साइन किया जिसमें हम लोगों ने बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई फर्स्ट ईयर बच्चों को एंड उसके बाद हम लोगों ने उनको जॉब ट्रेनिंग एंड इंटरव्यू ट्रेनिंग के रिकॉर्डिंग उनकी क्लासेस चलती हैं। वो जो बच्चे उसमें इनरोल हैं वो आज भी क्लासेस लेते हैं उसकी और प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों ने एक वर्कशॉप कराया था करियर आफ्टर अपॉर्चुनिटी एंड देन उसके बाद हम लोगों ने एक BSC जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है आपने नाम सुना होगा उसके साथ हम लोगों ने MOU साइन करके अपना वर्कशॉप कराते हैं। उसमें स्टॉक मार्केटिंग के रिगार्डिंग बच्चों को सिखाते हैं, उसमें बच्चों ने बहुत सीखा और बहुत सारे मतलब ऐसे बच्चे हैं हमारी सोसाइटी के जो कॉलेजेस में गए, अदर कॉलेजेस में पार्टिसिपेट किया एंड फर्स्ट सेकंड रनर अप भी लाए हैं।
0: ओके, आपसे जानना चाहेंगे कि स्किल डेवलपमेंट आपकी जो सेल है उसके थ्रू अभी तक का आपका बेस्ट आउटपुट कौन से स्किल में आपने दिया?
4: मैम, वी हैव गिवन टेल अबाउट द स्कॉलरशिप राइट मैम। फॉर स्कॉलरशिप में 100 स्टूडेंट्स हैज बीन सिलेक्टेड एंड दे हैव बीन फुल्ली फंडेड फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर।
0: हाय, तो अभी मैं हूँ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में और यहाँ पर जिस तरीके का माहौल है और जिस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, क्योंकि ये यहाँ के बच्चों को प्लेसमेंट दिलवाते हैं। इन शॉर्ट, दिस इज़ द प्लेसमेंट सेल ऑफ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग। तो वेलकम टू द शो। सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह की प्लेसमेंट जो है स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं और किस तरह की प्लेसमेंट्स आप दिलाते हैं?
5: मैम, जैसे हमारे कॉलेजेस में BCom and BA है तो BCom जो स्टूडेंट्स होते हैं वो HR प्लस फाइनेंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो फाइनेंस और HR ही होते हैं, तो उस फील्ड में वो ज़्यादा आगे जाने की एक्सपेक्ट करते हैं। और जो BA के स्टूडेंट्स होते हैं वो सेल्स हो गई, मार्केटिंग हो गई, जॉब सेक्टर्स होते हैं उसमें ज़्यादा आगे जाने की इंटरेस्टेड होते हैं।
0: ओके, तो कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर प्लेसमेंट किया है?
5: मैम, पहले जो मॉर्निंग वाली थी उसमें KPMG आई थी एंड वन उसमें ACS भी आई है।
0: और क्या ऐसा भी होता है कि इंटर्नशिप के दौरान बच्चों को अगर प्लेसमेंट भी मिल जाती है तो ऐसे में बच्चे के लिए तो दुविधा हो गई ना कि इंटर्नशिप के साथ साथ अगर उसको जॉब करना है तो कॉलेज को किस तरह से मैनेज करें, इसमें आप ब्रिज की तरह कोई भूमिका निभाते हैं?
6: मैम, जैसे हमारे कॉलेज में होता है कि अगर वो बच्चा फर्स्ट ईयर में है तो वो फिर फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने के बाद इंटर्नशिप कर सकता है, तो उसे हमारा कॉलेज भी सपोर्ट करता है और NOC देके बाकी उसे जो कॉलेज के रेगुलर अटेंडेंस का प्रॉब्लम हो गई और जो सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर्स होते हैं वो हमें सपोर्ट कर देते हैं, जिससे हमें अटेंडेंस में प्रॉब्लम नहीं होती और वो बच्चा अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के बाद हमारे कॉलेज में कंटिन्यू कर पाता है। और जो बच्चा मैम सेकेंड ईयर पास आउट है, मतलब सेकेंड ईयर उसने कंप्लीट कर लिया और थर्ड ईयर में है, या जिसने थर्ड ईयर कर लिया वो फुल टाइम जॉब के लिए आया है, तो मैम उसे डायरेक्ट ही प्लेसमेंट दिलवा के और जो सेकेंड ईयर में अपनी इंटर्नशिप करके और आगे प्लेसमेंट कंटिन्यू करना चाहता है तो मैम उसको भी हम सपोर्ट करते हैं हम कॉलेज से NOC दिलवाने में और बाकी टीचर से बात करके और उसको जो भी फैसिलिटीज होती हैं उनको प्रोवाइड करवाने में।
0: थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्ट्रीब्यूशन।

0: मैं हूँ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में, और अभी हमारे साथ हैं आयुषी चौधरी, जो कि श्यामलाल कॉलेज इवनिंग की प्रेसिडेंट हैं और महिला सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण साबित करती हैं। तो आयुषी, सबसे पहले वेलकम टू द शो।
1: थैंक यू।
0: जानना चाहेंगे आपसे कि कितनी मुश्किल थी आपकी ये डगर?
1: मुश्किल था पर नामुमकिन तो नहीं था, लेकिन सपोर्ट था कि टीचर्स भी, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल सर, स्टूडेंट्स थे मेनली। हाँ, उन्होंने बोला कि आप कर सकते हो, और मेनली फैमिली। पहला होता कि आप घर वालों से हो, सपोर्ट है आपके पास कि आप जाओ कर लेंगे, हम सब देख लेंगे।
0: हाय, तो मैं अभी हूँ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग के स्टूडेंट्स के साथ। विमेन डेवलपमेंट सेल के मेंबर्स हैं मेरे साथ, और फिलहाल द प्रेसिडेंट रितिका इज विद अस। और रितिका से मैं ये स्पेशली जानना चाहूँगी कि जब हम विमेन डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, तो कॉलेज की जो लड़कियाँ हैं, आई थिंक अगर हम वैसे सोशल प्रॉस्पेक्ट्स में उनको देखें, तो वो ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है कि डेवलप हैं, कुछ ऐसा नहीं लगता मेट्रो सिटी में खास तौर पर। तो ऐसे में आपका जो सेल है वो क्या काम करता है कॉलेज में विमेन के लिए, किस तरह का?
2: सो जो हमारा सेल है, वुमेन डेवलपमेंट सेल, जैसा कि आपने इसको सीमित किया कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रेशो इक्वल है। वी ऑल्सो हैव मैन एंड वी ऑल्सो हैव वुमेन, बिकॉज वुमेन डेवलपमेंट इज ये फिलहाल एक ऐसी विषय के ऊपर नहीं है जिसमें आपको सिर्फ वुमेन को एम्पावरमेंट करना है। आप में, आपको इसमें जो मेन है साथ में, उनको भी सेम लेवल पे एजुकेशन एंड व्हाट वी से अवेयरनेस प्रोवाइड करनी पड़ती है, सो दैट दे कैन आल्सो रिस्पेक्ट द वुमेन एट द सेम लेवल।
0: ओके,
2: अगर आप अकेले एक महिला को आगे करेंगे, उससे सशक्तिकरण नहीं होता। आपको साथ में जो उसका साथ देगा, इट्स आल्सो अबाउट हेल्पिंग अदर्स, बोथ आर जेंडर्स, बट इसमें क्वालिटी कब आएगी जब दोनों साथ में चल रहे हैं।
0: ये बहुत अच्छी
2: बात है। दिस इज द मेजर रीजन व्हाई द रेशियो इज इक्वल। यू विल सी यहाँ पे लड़कियां भी हैं और यहाँ पे मेन भी हैं, बिकॉज वी बिलीव दैट एम्पावरमेंट बिगिंस विद द चेंजिंग ऑफ मेंटालिटी। आप अपनी सोच को बदलेंगे।
0: आपने कहा ना कि विमेन डेवलपमेंट सेल और यहाँ पर लड़के और लड़कियों का रेशियो इक्वल है, ये मेरे माइंड में आया था कि व्हेन वी टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट विमेन डेवलपमेंट, तो वहाँ पर आपको महिलाएं ही महिलाएं दिखेंगी हर तरफ, दूर दूर तक। बट हैविंग मेन ऑल्सो विद अस एट द सेम टाइम, लगता है कि हाँ, ये कुछ अलग है, ये कुछ डिफरेंट है, ये कुछ दूसरे तरीके से विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं।
2: नहीं, श्यामलाल कॉलेज में यहाँ पे ऐसा है कि जो द मेन ओवर हियर, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, दे ऑल्सो वॉन्ट द वुमेन टू ग्रो। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला ही बढ़ना चाहती है, यहाँ पे सब चाहते हैं कि महिला आगे बढ़े और उनके साथ मैं भी आगे बढ़ूँ, क्योंकि एक महिला आगे बढ़ती है तो उसके साथ पूरा परिवार आगे बढ़ता है।
0: सही,
2: मेरी सोच ये है।
0: जी, बहुत बढ़िया।
3: वाकई में जब सोच सही होती है तो सही दिशा को चुनना आसान हो जाता है, और मंजिल जो है ना बिल्कुल आंखों के सामने होती है। जब इरादे इतने दृढ़ हों तो फिर मंजिलें जो है ना, उन्हें पाए बिना तो ये स्टूडेंट रह ही नहीं सकते हैं, चाहे एकेडमिक्स की बात हो, इंटरेस्ट की बात हो, या फिर एक्सपोजर की बात हो। भाई, दुनियादारी से दो चार करवाना और उसके साथ साथ आगे आने वाले समय के लिए इन्हें तैयार करना, ये सब काम करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस, हमारी ये स्टूडेंट लाइफ। और यही स्टूडेंट्स आगे जाकर इस दुनिया को बदलने का इरादा तो रखते ही हैं, उसमें पूरी कोशिश जो है किस तरह से करनी चाहिए और उसके लिए उन्हें तैयार करना, ये सब चीज़ें जो है ना हमारी स्टूडेंट लाइफ का हिस्सा होती हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ का हिस्सा होती हैं। यूनिवर्सिटी की सैर करवाते हैं हम आपको हर बुधवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच में, सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे, इस प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
7: आकाशवाणी रेनबो
8: 102.6 आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल, और आज हम आपको सैर करवा रहे हैं श्यामलाल कॉलेज इवनिंग की, जहां पहुंची हमारी सहयोगी माला नेगी और उन्होंने की वहां के प्रिंसिपल से बातचीत।
9: नमस्कार, तो अभी मैं हूँ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में और मेरे साथ हैं कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर नचिकेता सिंह सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
10: आपको भी बहुत बहुत स्वागत है।
9: श्यामलाल कॉलेज इवनिंग के बारे में अगर बात करें तो 1964 से लेकर 2026 तक एक बहुत लंबी यात्रा रही है इस कॉलेज की, तो जानना चाहेंगे एक लंबी यात्रा के दौरान कॉलेज कौन कौन से पड़ावों से गुजरा और उसमें कौन कौन से पॉजिटिव चेंजेस आए।
10: 1964 में ये जब कॉलेज बनी, 4-5 साल के बाद इवनिंग शिफ्ट वो गठन हुआ
9: जी।
10: और ये कॉलेज तब से एक खास मकसद से शिक्षा जगत में उसकी कंट्रीब्यूशन रहा है। वो मकसद ये था कि दिल्ली के जो ये जो क्षेत्र है वो ईस्ट दिल्ली, वहाँ से ज़्यादातर जो बच्चे जो है थोड़ा सा जो है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है थोड़ा पोर अंडर प्रिविलेज बच्चों का रहा है, वो इसलिए एक नेक उद्देश्य से हमारे जो प्रतिष्ठाता हैं कॉलेज के लाला श्यामलाल गुप्ता जी, उन्होंने वो फॉर्मर राज्यसभा मेंबर रहे हैं, तो एक फिलान्थ्रॉफिक और एक एजुकेशनिस्ट के मतलब नाते उन्होंने ये कॉलेज को बनाया था और इन बच्चों के लिए वो शिक्षा का जो है सर्विस जो उपलब्ध किया था। उसके बाद धीरे धीरे ये कॉलेज जो है श्यामलाल कॉलेज इवनिंग वो आर्ट्स और कॉमर्स के सब्जेक्ट के लिए जाने जाते हैं और यहाँ उसी पे फोकस रखते हुए जो है अच्छा क्वालिटी एजुकेशन लगातार मिला है बच्चों को, और यहाँ से निकल के बच्चे काफ़ी अलग अलग क्षेत्र में जाके नाम भी कमाया है और कॉलेज जो है इन सालों में काफ़ी प्रगति किया है, जैसे स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और कई सारे तमाम जो शिक्षा के अलावा जो है बच्चों का ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कॉलेज हमेशा तत्पर रहा है। और कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो नामी ग्रामी कॉलेज के इनका इस कॉलेज का नाम रहा है।
9: सर जानना चाहेंगे आपसे कि श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में पढ़ना बच्चों के लिए कैसे बेनिफिशियल है, कंफ्यूजन नहीं होता उनके माइंड में कि अगर हम इवनिंग में पढ़ेंगे तो मॉर्निंग में क्या करेंगे।
10: मैं तो इस चीज को काफी इसको एनालाइज किया है कि कितना फ्यूचरिस्टिक विजन होगा कॉलेज के जो फाउंडर थे, जिन्होंने तभी सोचा था कि कुछ ऐसे बच्चे जो दिन में कमाएं और शाम को पढ़ाई कर पाए, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इस दिल्ली के इस जो रीजन में से हमें यूपी, बिहार और ईस्टर्न यूपी के साइड से काफ़ी बच्चे, हरियाणा बाहर से बच्चे आते हैं। इस मॉडल से प्रेरित हो के बहुत बच्चे यहाँ तब आते रहे हैं, लेकिन समय बदलते बदलते आप जैसे कहा कि मॉर्निंग, ज़्यादातर कॉलेज मॉर्निंग है, तो बच्चे जब स्कूल से आते हैं उनको रहता है हमेशा कि एक कॉलेज में जा रहे हैं, सुबह से शाम तक हम कॉलेज में रहेंगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन आज जैसे हम लास्ट 10-15-20 साल से देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट जो है उसका सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रहे और बाकी दुनिया को वो भूल जाए तो फिर वो कामयाब नहीं हो सकता है
9: जी।
10: तो उस बच्चे को एक्टिविटीज और तमाम और चीज करने के साथ साथ वो बच्चे को अलग कोर्सेज भी करना जरूरी हो गया। एक सिर्फ एक अंडर ग्रेजुएशन का डिग्री लेके आज ये कॉम्पिटिटिव दुनिया में वो बच्चा कामयाब नहीं हो सकता है, उसको एड ऑन कोर्सेज करना होता है, उसको अलग अलग डिग्री तो नहीं ले सकता है दो एक ही समय, लेकिन सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, स्किल का कोई कोर्स, ये सब बच्चे आजकल करने के लिए मजबूर है। वो अब जो है वो उनके लिए मैंडेटरी हो गया।
9: True.
10: हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स को वो दिक्कत नहीं होती है जो मॉर्निंग कॉलेज के कॉमर्स स्टूडेंट्स को होती है कि वो क्लास छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई सीए कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सिर्फ बीकॉम ऑनर्स करके भी वो कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। तो उनको भी चाहिए होता है कि साथ साथ और हो जाए कुछ। तो इवनिंग कॉलेज के बच्चे जो है एडवांटेज में रहते हैं कि वो पूरा मॉर्निंग जो है 2:30-3 बजे तक वो फ्री है कुछ करने के लिए, जिससे उनका कॉलेज का शेड्यूल में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता। जिनको पता करना होगा श्यामलाल कॉलेज इवनिंग के बारे में कि यहाँ क्या होता है एज एन इवनिंग कॉलेज, दे कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड सी व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग इन श्यामलाल कॉलेज।
9: जी जरूर। और अब क्योंकि इस इंटरेक्शन के बाद हमारे इस प्रोग्राम अल्फा जेन और हमारी रेनबो फैमिली के साथ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग का नाम भी जुड़ गया है, तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपका।
10: बहुत-बहुत
9: और
10: शुक्रिया।
9: बहुत बेहतरीन रहा आज का ये इंटरेक्शन, क्योंकि इन इंटरेक्शंस के जरिए ही हम असल में जान पाते हैं कि कॉलेजेस के अंदर क्या कुछ खास है जो चल रहा है।
11: वाकई में हम लोग जानते हैं कि जान पाते हैं, इनफैक्ट कहना चाहिए कि कॉलेजेस में क्या कुछ खास है जो हो रहा है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। नाम है इसका अल्फा जेन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन, जिसमें हर बार हम आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग

नॉलेज जो है उनको समेट कर ले आते हैं। पर फ्यूचरिस्टिक विजन की बात करें तो ऑब्वियसली कॉलेज का काम है आपके आगे पॉसिबिलिटीज के द्वार खोलना, वही काम जो है ये हमारे कॉलेजेस करते हैं। फिलहाल आज के प्रोग्राम का समय जो है वो था बस यहीं तक। आज का ये खास एडिशन श्यामलाल कॉलेज इवनिंग से, जहाँ पहुंची हमारी सहयोगी माला नेगी और उन्होंने ये सारी जानकारी इकट्ठा की हमारे लिए, आज का कार्यक्रम था बस यहीं तक। स्वाति को दीजिए इजाजत, आप सुनते रहिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इटली द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इटली के रोम में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी में तकनीक और नवाचार मुख्य केंद्र हैं।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि श्री मेलोनी के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा और ऊर्जा मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की सभ्यता बहुत पुरानी है।
1: रोम को विश्व में इटर्नल सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती। इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं।
0: हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिजन्स गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह आत्मनिर्भर भारत की पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। उन्होंने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक जनहित याचिका का जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्ति में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कश्मीरी लड़ाकों द्वारा सेना के वाहन पर हमले के बाद सैनिकों के मारे जाने की सोशल मीडिया की खबरों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तंत्र जांच इकाई ने बताया कि क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर निर्भर है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू की आशंका व्यक्त की है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड में लू चल सकती है, जबकि असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से प्रोग्राम सैटेलाइट्स लेकर मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी क्रिस रजन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हैं आप? वैसे ये सवाल तो गलत होगा आई एम श्योर, क्योंकि गर्मियों में कुछ ठीक नहीं अगर आप हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखने हैं, इस पर से मैं बात शुरू करना चाहूँगी। देखिए टेम्परेचर की बात करें तो दिल्ली का मौसम वाकई ही तौबा तौबा करने वाला हो रहा है, और गाना तो अब दिल्ली की गर्मी कुछ इस तरह ही होना चाहिए। टेम्परेचर की बात करें तो आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री तक जाना था और जो दोपहर में जा चुका है। इनफैक्ट सुबह की बात करें तो सुबह 10 बजे भी टेम्परेचर जो है 44 डिग्री टच हो चुका था, यानी शुरुआत दिन की शुरुआत ही गर्मी से हुई। और बिल्कुल राइट नाउ की बात करें तो अभी भी टेम्परेचर जो है बस वो 43 डिग्री यानी 43 डिग्री तक ही पहुंचा है। मिनिमम की बात तो मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए, 32 डिग्री तक जाना था बट नहीं गया है। बहुत गर्म दिन रहा आज। और कल की भी बात करें तो मौसम विभाग का यही कहना है अगले 5 दिन बिल्कुल 45-46 ही रहने वाला है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को तैयार कर लें। दिल्ली की गर्मी है, बचकर चलिए, संभल कर चलिए। पिछले सालों की बात करें तो पिछले बीते 2 सालों में जो अगर 19-20 मई के आसपास टेम्परेचर जो है वो कम ही रहा, लेकिन यहाँ तो 45 डिग्री तौबा। और मौसम विभाग आपको कुछ ज़रूरी बातें भी कहता है, वो कहता है कि यदि आपको बहुत ज़रूरी है पहले तो आप धूप में निकलिए ही मत, और अगर निकल रहे हैं आप धूप में तो बहुत ज़रूरी बातें। आज हमारे रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम का विषय भी यही था, घर से बाहर जाते समय आपको शरीर को ढककर रखना है। मैं मानती हूँ गर्मी है और आपको पूरी बाजू के पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी पहनने हैं, कॉटन के पहनने हैं और हल्के रंग के पहनने हैं जो आपको कंफर्टेबल रहें, आपको आराम दें। धूप में जाते समय आपको छाते का इस्तेमाल करना है और किसी गहरे रंग के छाते का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको हल्के या फिर सफ़ेद रंग के छाते का इस्तेमाल करना है। आंखों पर धूप का चश्मा लगाना है और थोड़े थोड़े टाइम बाद, मतलब आप बाहर हैं

तो भी आपको जो है लिक्विड लेना है, जल पानी मीन्स जो भी आप शिकंजी नारियल पानी ले सकते हैं वो लेते रहिए। आप अगर अपने ऑफिस में हैं तो ऑफिस में मान लीजिए एसी है कुछ है, तो बाहर निकलने से पहले एसी डाउन कर लीजिए, अपने बॉडी के टेम्परेचर को अकॉर्डिंगली होने दीजिए और फिर 10 मिनट बाद का समय लेके आप ऑफिस से बाहर अगर कहीं राउंड लगाने जाना चाहते हैं तो ऐसे कीजिए। पेड़ों की छाया में अगर आप बैठते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ज़रूरी तो सबसे पहले यही है कि आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि हीट स्ट्रोक या लू अगर आपको लग जाती है तो आपको और भी ज़्यादा फिर ऐसे में दिक्कत हो सकती है। क्या नहीं करना है वो भी जान लीजिए। आपको गर्मी का जो पीक टाइम होता है यानी 12 से 4 का बिल्कुल अवॉइड कीजिए अगर आप कर सकते हैं। नंगे पैर और आपको ज़्यादा अपनी जो त्वचा है यानी आपको कवर करके चलना है जितनी बॉडी आपकी बाहर रहेगी। तो एक तो टैनिंग, अगर गर्ल्स की बात करें तो उन्हें खासा लगता है कि टैनिंग होगी, लेकिन इससे आपकी स्किन जलने का भी खतरा बना रहता है। आपको हल्का खाना खाना है और कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल लाइट अगर खाना खा सकते हैं और ताज़ा बना हुआ खाना खाइए। मौसमी फलों का सेवन कीजिए और यदि आप एकदम से गाड़ी मतलब एसी गाड़ी है उससे बाहर निकल रहे हैं तो ध्यान दीजिए। एकदम से गर्मी से आकर भी एसी तेज़ चलाकर गाड़ी में ना बैठिए। गहरे रंग के यानी डार्क कलर के, ब्लैक और रेड मरून जो कि बहुत डार्क कलर्स हैं ऑब्जर्वर्स हैं, उनको आपको नहीं पहनना है। बिल्कुल टाइट कपड़े भी नहीं पहनिए, स्पेशली छोटे बच्चों के, क्योंकि वो तो आपसे शिकायत भी नहीं कर सकते। बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए और हल्का खाना जो है वो कीजिए और ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं करना है। सो ये रही हमारी आज की शुरुआत और शुरुआत यस आई नो इतनी सारी बातें हमने मौसम को लेके कर ली है, तो अब थोड़ा सा चल करने का टाइम है और रात में कुछ किया जा सकता है ना, कुछ हल्का फुल्का पार्टी जैसा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिटी लाइट्स, मैं हूँ आपके साथ दिल्ली की चाशनी गणेश रजन।

0: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। तो श्रोताओं, आज बात होगी पहले रेडियो संगीत सम्मेलन के बारे में। वर्ष 1954 में आकाशवाणी ने प्रथम रेडियो संगीत सम्मेलन का आयोजन किया। इस ऐतिहासिक सम्मेलन की पहल तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री पीवी केसकर ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देना और देश भर के प्रतिभाशाली कलाकारों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना था। इस मंच पर हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के साथ साथ अन्य समृद्ध संगीत परंपराओं को भी सम्मानजनक स्थान दिया गया। आज आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के नाम से विख्यात इस आयोजन के 67 संस्करण पूरे हो चुके हैं। तो श्रोताओं, ये बात थी पहले रेडियो संगीत सम्मेलन के बारे में। अगले अंक में आप जानेंगे सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर की शुरुआत कब हुई। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे यानी निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: रोज सुबह सवेरे 7

0: से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। न्यूज ऑन एआईआर ऐप और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे अन्य कई मीडियम्स हैं जिनके जरिए आप और हम कनेक्टेड हैं दिल से दिल तक। मैं हूं दिल्ली की चाशनी कुरी सृजन आपके साथ प्रोग्राम सैटेलाइट्स लेकर। तो जी हाँ, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अपने स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। तो देखिए, अब CBSE 12th का रिजल्ट आ चुका है, आप सभी ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा और आपको लगता है कि अभी भी जो है गुंजाइश है, आपको कहीं पर कुछ भी लगता है कि रिवेल्यूएशन या वेरिफिकेशन आपको करवाना है, तो पोर्टल ओपन है। और अब पोर्टल पेमेंट्स, आपको अगर ये स्टेप लेना है, आपको वेरिफिकेशन या रिवेल्यूएशन करना है, तो जो लास्ट डेट है, पहले वो 22 मई थी, अब ये डेट बढ़ गई है 23 मई, यानी 23 मई की हो गई है। तो आप अपने स्कैन कॉपीज के लिए 23 मई तक, यानी 23 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो एक बहुत अच्छा स्टेप यहाँ पर बोर्ड के द्वारा लिया गया है वो ये कि प्रति विषय शुल्क जो है, मीन्स जो अप्लाई फीस है, वो 500 से घटा कर मात्र 100 रुपये कर दी गई है। और यदि आपको लगता है कि प्रति प्रश्न शुल्क भी जो अगर पहले दिया जाता था 100 रुपीज़, वो भी 25 रुपीज़ हो गया है। और यदि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि आपका रिवेल्यूएशन होता है और किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स बढ़ते हैं, तो बोर्ड ने बहुत अच्छा डिसीजन सभी स्टूडेंट्स को दिया है कि आपकी जो पेड फीस है, यानी 100 रुपये 25 रुपये जो भी आपने दिए हैं, वो भी आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में आप जहाँ पर भी आपको डाउट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा कदम जो कि CBSE बोर्ड द्वारा लिया गया है। चलिए अब बात करते हैं आगे एडमिशन्स को लेकर, आप कैसे आगे के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। तो आप दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय, जी हाँ DSEU की बात कर रही हूँ, आफ्टर 12th यहाँ के जो ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल ओपन हो चुका है और आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लास्ट डेट यहाँ पर नोट कर लीजिए, 13 जून जो है वो अंतिम तिथि है DSEU में ग्रेजुएशन यानी स्नातक कार्यक्रमों में आवेदन करने के लिए। तो आप ब्रोशर भी ले सकते हैं, एडमिशन ब्रोशर भी रिलीज़ कर दिया गया है, साथ ही आप वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं, admission/ug.DSEU.ac.in ये वेबसाइट है। और बता दूं सभी छात्र छात्राओं को जो आवेदन शुल्क है वो है 1500 रुपये। इस विश्वविद्यालय की बात करें, यानी DSEU की बात करें, तो यहाँ पर 85% जो सीट्स हैं वो दिल्ली रेजिडेंट यानी दिल्ली के छात्र छात्राओं के लिए रिजर्व है, रेस्ट 15% पर अदर जो स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और एक और ज़रूरी बात जो कि बोर्ड कहते हैं, यानी कि कैंपस कहता है कि आप अप्लाई के टाइम पर जो है अपनी लोकेशन और जो कैंपस आपको चूज़ करना है वो एकदम तरीके से और यानी फाइनल फुल एंड फाइनल डिसाइड करके ही सिलेक्ट कीजिएगा, बिकॉज एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो फिर कैंपस बदलने के लिए आपकी रिक्विजिशन जो है वो स्वीकार यानी मान्य नहीं हो पाएगी। तो छात्र पहले से ही घर के पास के कैंपस जो है उसको अच्छे से जो है आप जांच लें। और 2 फ़ोन नंबर यानी 2 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आपका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप जो है डायल कर सकते हैं 9218172974। रिस्ट आपने पोर्टल पर फीस सबमिट कर दी है लेकिन जो फीस है वो फेल या पेंडिंग है, यानी आपके ऐसे प्रॉब्लम जहाँ पर कि कुछ बैंकिंग कनेक्शन है, तो आपके लिए जो हेल्पलाइन नंबर रहेगा वो होगा 9218172974 2973 और हेल्पलाइन पोर्टल पर विजिट करने का टाइम यानी आप ये जो डायल नंबर्स मैंने आपको दिए हैं इन पर कॉल कर सकते हैं 9:30 AM टू 5:30 PM तक, 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक. सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी बहुत सी काम की जानकारी, काम की बातें और साथ साथ आपके लिए एक से एक बढ़कर सॉन्ग्स मैं लेकर आई हूँ. मैं हूँ आपके साथ दिल्ली की चाशनी कड़ी सृजन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटेलाइट्स.

कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

देखिए, कई बार नाचना गाना जो है आपको बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग देता है कि आपको लग रहा है कि बस मैं तो उड़ रहा हूँ इन संगीत की धुनों के साथ। इंडिया अफ्रीका डांस म्यूजिक फेस्टिवल का आप हिस्सा बन सकते हैं, जो कि होने जा रहा है शनिवार को 23 मई 2026 को। टाइम रहेगा 6:30 बजे का। कहाँ जाना है आपको? भारत मंडपम आ जाइए, 3rd फ्लोर, गेट नंबर 7 और 10 से एंट्री करके, और 6 बजे तक आकर अपनी सीट यहाँ पर आप ग्रहण कर लीजिए। और फर्स्ट कम फर्स्ट एंड बेसिस पर रहेगा। आइए और इन डांस म्यूजिक की जो ये दुनिया है, इंडिया अफ्रीकन फेस्टिवल, इसका हिस्सा बनिए।

मैं हूँ आपके साथ दिल्ली की चाशनी क्रिस रजन। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटेलाइट्स दिल से दिल तक 102.6 रेनबो पर। और यहाँ पर आपके साथ नाचना गाना वाकई कितना आनंद आता है ना।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से प्रोग्राम सिटी लाइट्स और मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी क्रिस रजन। चलिए दिल्ली वालों बात कर ले कि कहां आप ट्रैफिक में फंस सकते हैं। तो देखिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की हम इन काफ़ी दिनों में बात भी कर चुके हैं। यहाँ पर सड़क निर्माण का काम चल रहा है पीक आवर्स में, यानी मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम, तो यहाँ पर बहुत बड़ा भीषण जाम लग जाता है। 10 मिनट की दूरी तय करने में लगभग 45 मिनट का समय लग जाता है। तो ये जो स्ट्रेच है ना, ये 30 जून तक अफेक्टेड रहने वाला है क्योंकि अभी काम चल रहा है और जब ये डेवलपमेंट हो जाएगी तब हमें जो है इस जाम से निजात मिल जाएगी। तो आप सभी जो है आप इस रूट को अवॉइड करें। और विनोद नगर से सराय कालेखा तक भी इस जाम का इफेक्ट देखने को मिलता है, तो आप पीक आवर्स में इस रूट को अवॉइड कर सकते हैं। रेस्ट एक और अच्छी बात जो आप सभी को बता दूं कि आउटर रिंग रोड पर कालकाजी और सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर जो है वो अभी तक आप देख रहे होंगे सिंगल लेन है और वहाँ पर काफ़ी जाम हो जाता है। तो अभी जो है यहाँ पर भी डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है और ये जो रूट है ये अब डबल फ्लाईओवर डबल लेन बन जाएगा, तो आपको जो है यहाँ पर तो ट्रैफिक से निजात मिल जाएगी। आप भी कहीं ट्रैफिक में फंस गए हैं तो मुझे ज़रूर बताइए और मैं उसे अनाउंस कर दूंगी, तो बाकी दिल्ली वाले जो है उस स्ट्रेच को अवॉइड कर देंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम सिटी लाइट्स। हाँ, कैसे भेज रही है आपको ट्रैफिक अपडेट, नोट कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070।

देखिए दोस्त, जिसने अपने आप को ट्रूली फाइंड कर लिया, अपने आप को सर्च कर लिया है ना, और सर्च इंजन्स पर भी उन्हीं को सर्च किया जाता है, इसलिए उस प्रयास में लग जाइए जो कि आपको निखारने के लिए है। सुनते रहिए रेनबो, आप प्रोग्राम है सैटेलाइट्स दिल्ली के चाशनी को सृजन के साथ।

0: केले का छिलका सड़क पे, ना भाई ना। चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर, ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटेलाइट्स आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से, और प्रोग्राम सैटेलाइट्स लेकर मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी क्रिस रजन। देखिए, कुछ चीज़ें तो लगातार बढ़ती जा रही हैं, हमें ही सेविंग्स करनी होगी और हमें संभल कर भी चलना होगा। हम सभी ईंधन संकट से वैश्विक रूप से गुजर रहे हैं। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं, जो प्राइजेज हैं, वो अभी रिसेंट में ही 2 बार बढ़ चुके हैं। अभी की बात करें तो दिल्ली में जो पेट्रोल है उसकी कीमत 98.64 रुपये नोट की गई और डीजल की कीमत भी बढ़कर जो है 51.58 नोट की गई, 91.58। सो हम सभी को संभल कर चलना होगा। कुछ भी ऐसी जर्नी जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं कीजिए, कार पूल कीजिए, या फिर हो सके, संभव है तो ज़रूर आप जो है हमारे सार्वजनिक जो हमारे वाहन उपलब्ध हैं, बस है, मेट्रो है, इनका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस पूरी जो ये समस्या आई है इसमें हमें मिलकर ही एक साथ चलना होगा, और एक साथ चलने से यकीन मानिए हल निकल जाता है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आकाशवाणी FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल्ली की चाशनी क्रिस रजन के साथ। प्रोग्राम है सैटेलाइट्स और फ्रीक्वेंसी दिल से दिल तक 102.6 की। यहाँ आप लाइव स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन AIR ऐप जैसे कई अन्य माध्यमों से भी हमें सुन रहे हैं। देखिए, वक्त बदलता है और सब बदल जाता है, वक्त के साथ बदलते रहना ही बिल्कुल चाहिए। देखिए, कभी हम पुराने जमाने में जिसे ठेंगा दिखाना कहते थे, आज उसे लाइक करना कहते हैं। तो यकीन मानिए, वक्त बदला तो चीजें बदल गई और देखने का नजरिया भी बदल गया। सैटेलाइट्स में अगली बात करते हैं सोने चांदी की कीमतों को लेकर। तो सोना जो है, यानी हमारे गोल्ड प्राइस जो है, वो 800 यानी 800 रुपए से बढ़कर फिलहाल 1,63,000 पर 10 ग्राम हो चुका है। और चांदी की कीमतों की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी नजर आई है। चांदी जो है फिलहाल 5,000 रुपए से टूटकर 2,71,000 पर 10 kg प्रति किलोग्राम नोट की गई है। तो इन बदलते चीजों के साथ आप भी बदलते रहिए। बैक टू बैक आपके लिए वो गाने जिन पर कि आप नाच सकते हैं, थिरक सकते हैं और जुड़े रह सकते हैं दिल से दिल तक। सुनते रहिए रेनबो।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटेलाइट दिल्ली की चाशनी कुड़ी सृजन के साथ, प्रोग्राम 102.6 रेनबो पर दिल से दिल तक आपके साथ कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं। अच्छा देखिए, चलिए आपसे कुछ पूछती हूँ। बताइए कि अगर आँख का यानी हमारी आईज का कोई भाई होता तो उसे क्या कहते, आँख के ब्रदर को क्या कह सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए अब तो मैं ही जवाब दे देती हूँ, उसे कहते आईब्रो। अगला प्रोग्राम आप सुनेंगे मैसेज मसाला मिक्स नीरजा लेकर आएंगी आपके लिए। उसके बाद यानी 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, 7:05 से 8 बजे तक आप सुहासिनी के साथ वेस्टर्न म्यूजिक आर प्रोग्राम सुनेंगे और नॉर्थ ईस्ट सॉन्ग्स को लेकर वो आएंगी आपके लिए। 8 से 9 म्यूजिक मस्ती जारी रहेगी आपकी नीरजा के साथ, आपकी याद आती रही और रंगे महफिल सजाएंगी आपके लिए रेखा चौधरी 0 आर तक। तो दिल से दिल तक आपको कहीं भी नहीं जाना है, हमारे साथ बने रहना है, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

यकीन मानिए दोस्त, हर चीज़ आसान बनाने से पहले मुश्किल ही होती है। कभी कभी सब्र और कभी कभी मेहनत ज़रूर रंग लाती है। मैं हूँ आपके साथ दिल्ली की चाशनी क्रिस रजन, एक बार फिर मिलूंगी इन्हीं एयरवेव्स 102.6 पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपना और अपनों का रखिए खास खास ख्याल। स्टे कूल, गर्मी से भी संभल कर रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग

0: सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
0: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ नीरजा आपके साथ और एक कार्यक्रम है मैसेज मसाला मिक्स। और आज जिस विषय को लेकर आपके बीच आई हूँ वो आपसे ये कहना चाहता है कि जिंदगी की किताब का कोई भी पन्ना चल रहा हो मगर कहानी बदलने की ताकत आपके पास आज भी है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या चाहेंगे उस पन्ने में कुछ ऐसा जोड़ा जाए कि कहानी वैसी हो जाए जैसा आप सोचते हैं? तो मुझे ज़रूर लिख भेजिए। और ये जो जज्बा है ना, ये जो विषय है ना, ये हमारी ज़िंदगी में वो नया जोश भर सकता है जिसके लिए आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। और कहते हैं एक्शन इज़ द बेस्ट डिफेंस, तो एक्शन का समय आ गया है दोस्त। सोचना नहीं है, मैसेज लिखकर भेजना है 9868107070 पर, क्योंकि नीरजा सिर्फ आप ही का इंतज़ार कर रही है।

बिल्कुल, अपनों का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए कोई अपना है तो उसे अपना कर रखिए ना। और जिंदगी तो एक यात्रा है, ये हर पल आपके हिसाब से चलती भी रहेगी और बदलती भी रहेगी।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। और आज जिस विषय से मैं आपसे जुड़ी हूँ इसी विषय से जुड़ पाऊँगी दोस्तों। अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो आपसे यही विनती करती हूँ कि ज़रूर हिंदी में लिखकर भेजें और जो विषय मैंने कहा है बस वही लिखकर भेजें। दोस्तों अगर सवाल की बात करूं और कुछ श्रोता हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो बिल्कुल सवाल यही था कि दोस्तों अगर ज़िंदगी आपको एक नया अध्याय लिखने का मौका दे तो सबसे पहला बदलाव आप क्या करेंगे? अपनी आदतों में करेंगे, रिश्तों में करेंगे या खुद में करेंगे? जो भी आपको लगता है ज़रूर लिख के भेजिए। आपकी नीरजा आप ही के मैसेज का इंतज़ार कर रही है। सोनू बिजनौर से हमें लिखा है, अच्छी सोच अच्छे विचार आपको आगे बढ़ाते हैं और जो आप सोच रहे हैं उसे सोच को ज़्यादा समय नहीं लगता, आगे चलकर वही इतिहास आपके पन्नों में दर्ज हो जाएगा। पर हर एक इतना जो मौका है वो उसमें आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि नियति के हिसाब से ही सब कुछ होगा, इसलिए धैर्य बनाकर रखें। बिल्कुल सोनू, धैर्य बिना तो कुछ नहीं हो सकता और सच में वो धैर्य रखना इतना आसान भी नहीं होता है ना। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं कि मेरा बहुत दिनों से सपना था अपना खुद का एक अच्छा घर बनाने का, लेकिन पिछले कुछ सालों से हालात साथ नहीं थे, लेकिन उस हालात को अपने साथ करके अपना अधूरा ख्वाब पूरा करना है। इसके लिए मेहनत करने की तैयारी कर ली है और सच बताऊं पंकज जी, घर तो बन ही चुका है, अब तो बस आपको उसको बस सजाना बाकी है। कहते हैं कोई भी काम जो होता है वो सबसे पहले मन में शुरू होता है और अगर मन में हो जाता है ना तो फिर सच में हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको ढेर सारी बधाई देती हूँ क्योंकि ये सपना जो आपने देखा है ना ये ज़रूर पूरा होगा। हमारे साथ पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से, कैथल हरियाणा से मधु नायक, अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक जुड़े हैं और कहते हैं, कोशिश करें कि ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे से गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। तो यादों के भरोसे ना रह जाएं, अपनी ज़िंदगी का वो पन्ना आज ही बदल लें। अनिल शर्मा जी का सरिता विहार से मैसेज आया है, लिखा है, नीरजा मेरे जीवन के किताब के पन्ने में जोड़ना चाहूँगा कि बुढ़ापे में क्या अनुभव लिखूँ जिससे बच्चे भविष्य में जान सकें कि धैर्य, इल्म, शौक ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है। हाँ, बुढ़ापे की ज़िंदगी में बिना काम के होते हुए शौक से व्यस्त रहते हुए काव्य लेखन, कविता, शायरी से खुश स्वस्थ रहता हूँ। ज़िंदगी में कोई ना कोई शौक ज़रूरी है, चाहे कोई भी उम्र के तुम हो, यह मेरे तजुर्बे ने सिखाया है। मैंने खुद में बदलाव, खुशी से कैसे रहना सीख रहा हूँ ये मैं देख रहा हूँ। और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया है और सच में आपको प्रणाम करती हूँ। और ये जो एनर्जी आप लोग दे जाते हैं ना, बस कई गुना हो जाती है हमारी कोशिश। आदिल कमर गुन्नौर हम हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं, उनके चेहरे को देखकर चांदनी सी आती है, उनकी जुल्फ लहराए तो काली घटा सी छा जाती है और ज़िंदगी का वही पन्ना मुझे लगता है ये बदलना चाहते हैं जी। वैसे तो बदल ही जाएगा, वो जो आप जुल्फों की बात कर रहे हैं वो चांदनी में बहुत जल्दी बदल जाएगी, है ना, लेकिन आप और क्या चाहते हैं वो ज़रूर बताइएगा। सरफराज जी ने लिखा है कि ज़िंदगी की किताब, क्या बात है, ज़िंदगी की किताब में एक पन्ना ऐसा जोड़ दूँ हर बिखरे रिश्ते में फिर चाहत का उजियारा छोड़ दूँ। ये तो सबको सुनना चाहिए, सुन रहे हैं ना आप, जिसमें माँ की दुआ लिखी हो, बाबा का सम्मान रहे, छोटे से छोटे दिल में भी अपनापन मेहमान रहे, जिसमें भूखे को रोटी मिले, प्यासे को दरिया मिले, रोते चेहरे की चौखट पर हंसता हुआ सवेरा आए, जिसमें नफरत हार के बैठे, प्रेम सदा सरताज रहे, इंसा इंसा का हाथ थाम ले, इतना सुंदर राज रहे, दौलत तो मिट्टी हो जाए अगर व्यवहार अमर होगा, जिसने बांटे दर्द किसी का उसका जीवन धन्य होगा, जिंदगी तब पूरी होगी, मन का आंगन भी भर जाएगा अगर किताबें उम्र में एक पन्ना इंसानियत का जुड़ जाएगा। अद्भुत है, इतने सुंदर अल्फाज और इतनी खूबसूरती से आपने इसको जोड़ा है और मैं हर उस प्यारे से दोस्त से कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल इन जज्बातों के साथ जुड़ जाइए और ज़िंदगी का वो पन्ना जो आप सोचते रहते हैं

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

बिल्कुल दोस्तों, अपने तो अपने होते हैं और उसी अपनेपन से, पूरे हक से, पूरे अधिकार से आपसे कह रही हूँ कि अगर लगता है कि कभी पीछे छूटे वक्त को आप इस तरह से याद करते हैं कि काश वक्त पीछे लौटे और कुछ हम बदल पाते, और अगर आप सच में बदल पाएँ तो, अगर आज वही मौका मिले तो आप अपनी कहानी का कौन सा पन्ना दोबारा लिखना चाहेंगे? और इस बार ऐसा लिखिएगा कि वो वही हो जैसा आप चाहते हैं। गुड इवनिंग मोहम्मद इम्तियाज़ और सलमा बेगम, जवाहर कैंप कीर्ति नगर दिल्ली से हमारे साथ हैं और कहते हैं कि आज की बात पे तो यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी तो कहीं ना कहीं इम्तिहान लेती ही है, मगर मैं अपने आप जब हर मुश्किलों से पार पाता हूँ तो समझता हूँ कि मैं सच में सबसे खुशनसीब हूँ। बदलाव की बात करूँ तो जब से पेरेंट्स गए हैं ना, तब से ऐसा लगता है कि बस बच्चों और मेरी वाइफ, यही मेरी दुनिया है। बिल्कुल, अपनी दुनिया को बहुत प्यार से सहेज के रखिए, ये सबसे बड़ा मैसेज है कि

आपके लिए एक ऐसी दुनिया बना गए हैं कि आप कभी अकेले नहीं होंगे। नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं कि हमने अगर बदलाव अपने जीवन में करना अगर पड़ा तो हम ऐसा करेंगे कि अपने बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने के लिए फिर से प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल प्रयास, मैं तो ये कह रही थी कि बिल्कुल शुरू कर दीजिए और बात कर लीजिए और मैसेज कर दीजिए या फ़ोन कर लीजिए, बहुत दूर नहीं है आपके अपने आप से, है ना। और बहुत ही आनंद आ रहा है क्योंकि आनंद विहार से मैसेज आ गया है किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशु का रेलवे कॉलोनी से। लिखा है कि अगर ज़िंदगी हमें कोई अध्याय लिखने का मौका फिर से दे तो हम सबसे पहले अपनी आदतों में सुधार करेंगे और दूसरों के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे और किसी की सेवा के लिए हम ज़रूर आगे आएंगे। कितनी खूबसूरत बात है ना। ऐसी बात वही कर सकता है जो सच में इस तरह के जज्बात से जुड़ा हुआ होता है। ओडिशा से मैसेज आया है मेरे पास निषाद कोडो मेरी नौपादा और कहते हैं खुद में बदलाव हमें करना चाहिए। बिल्कुल, मैं बड़ी कोशिश कर रही थी कि नाम ठीक पढूं, मुझे जो समझ में आया मैंने ज़रूर पढ़ा और अगर आप हिंदी में लिख के भेजेंगे तो मैं और अच्छे से पढ़ पाऊँगी। लेकिन हाँ, आपने जो बात कही है ना वो बात बिल्कुल दिल को छू रही है कि हमें खुद में बदलाव करना होगा। और उपदेश शर्मा, बिल्कुल मुझे लग रहा था कि कोई उपदेश ही चल रहा है। उपदेश शर्मा, राहुल परिहार और किश्तवाड़ जम्मू और कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं हमारा तो हर दिन नया सवेरा, नया अध्याय शुरू करने का हमें मौका मिलता है, बस हमें हिम्मत होनी चाहिए पुराने पन्नों को पलट के नए अध्याय की शुरुआत करने की। बस बस यही जज्बा है दोस्त जो हमें आगे ले जाता है या फिर इतिहास तक ही छोड़ देता है। बहुत ही अच्छी सोच है, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। रंजीत कुमार मंडल 60 अररिया बिहार से कहते हैं यदि ज़िंदगी मुझे एक मौका देना तो मैं बड़ी परीक्षा पास कर प्रशासनिक पद पर जाना चाहता हूँ। देश के है प्रशासनिक पत्र बहुतों के लिए, लेकिन उसके लिए हम सबको काबिल होने की ज़रूरत है और आप कोशिश करते रहिए। अगर आप कल्पना करेंगे तो ज़रूर वही होगा जो आप सोच रहे हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं हमें अगर ज़िंदगी में बदलाव का अवसर दें तो हम अपने बचपन को, वो भोलापन जो था ना, उसको फिर से लिखना चाहेंगे। क्या बात है, बिल्कुल मौका मिलता है हमें अपने बचपन को फिर से देखने का, जीने का और उसके साथ फिर से कई गुना महसूस करने का। अपना बचपन तो हमें इतना अच्छा याद नहीं आता, लेकिन फिर जब बच्चे आते हैं ना तो फिर लगता है कि ज़िंदगी ने एक बार फिर से आपका बचपन आपके सामने ला दिया है। जब उनकी आदतें बिल्कुल आपसी होती हैं, जब वो बिल्कुल देखने में आप जैसे होते हैं, जब वो सोचते हैं आप जैसे हैं, ज़िद आपकी तरह करते हैं, तो लगता है हाँ बिल्कुल आप ही फिर गया है ना। और फिलहाल मैं भी आप पर ही जा रही हूँ, देख रहे हैं मैसेज कर दिया है ना आपने, इंतज़ार है मुझे अभी भी आपके मैसेज का। बिल्कुल 9868107070 पर बताइए ना क्या कहना चाहेंगे आप। बदल रहे हैं पन्ना,

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं।

0: तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूं नीरजा आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स और बात हम जिंदगी के किताब के उस पन्ने की कर रहे हैं जो कभी मुस्कुराते हैं कभी रुलाते हैं कभी बुलाते हैं। तो फिर आपने क्या सोचा है, अगला पन्ना अभी भी खाली है, बताइए क्या लिखना चाह रहे हैं आप। यही है आज का सवाल, क्या है वो अगला पन्ना जिसे आप लिखेंगे। हमारे पास जवाब आए हैं और मैं लेना चाहूँगी मैसेज। अगला हमारे पास मैसेज आया है फारूक अली खान, फैज़ी फराज, फरीन, फरहान, फारिया, ताहिरा का। कहा है ज़िंदगी बड़ी ही खूबसूरत है, इसको हम जैसे जिएं ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है, इसलिए ज़िंदगी को खूबसूरत लम्हों के साथ भी जी सकते हैं और सबसे खुश होकर मिल भी सकते हैं, बुज़ुर्गों के साथ उनका सम्मान करते हुए रह सकते हैं और हाँ रेडियो भी सुन सकते हैं, आपको ज़िंदगी जीने का सलीका आ जाएगा। क्या बात है, सच बताऊँ दोस्तों हम भी इसी तरह से सीख रहे हैं कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं होता तो वही है जो नियति ने पहले ही निर्धारित किया हुआ है, धैर्य, धीरज, सब्र तो बनाए रखना होगा। वैसे यदि हमें मौका मिले ना तो हम अपने देश भारत की जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लुप्त हो गई हैं उस ज्ञान विज्ञान को फिर से दुनिया के सामने लाएंगे। क्या बात है, आपने तो ज़िंदगी में ऐसा रंग भर दिया जो हम सबको एक अलग ही जोश पर लेकर जा रहा है। मैसेज मसाला मिक्स, अगर मुझे अवसर मिले तो मैं मुकाम से चूक गया लेकिन उससे मैं फिर से हासिल करना चाहूँगा जो मेरी ज़िंदगी में मुझसे छूट गया है। भेरूलाल वाकतरिया धाकड़ उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्त ऐसा क्या है जो छूट गया है और ज़िंदगी बार बार मौके देती है और अगले मौके पर तैयार रहना दोस्त। और कुमार गौरव इंदूकर नेशनल पार्क से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसा ही लगता है कि लोगों के जवाब सुनकर कि ज़िंदगी में बहुत कुछ है जिसे फिर से हम शुरुआत कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और गगनदीप कौर हैं हमारे साथ और लिखा है, भटिंडा से हमारे साथ हैं, लिखा है मैंने ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट बनना है और ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। और गगनदीप अगर आपने सोच लिया है ना आप ज़रूर कर पाएंगी, सबसे पहले सोचना ही होता है और तभी वो कार्यक्रम वही बात सफल होती है। देहरादून से आलोक पवार और मिनी हमारे साथ जुड़े हैं और लिखा है

में मुझे दोबारा जीवन में बदलाव का मौका मिला, तो बॉलीवुड फिल्म का हीरो बनना चाहूँगा और रियल लाइफ को रियल लाइफ में बदलना चाहूँगा। क्या बात है दोस्त, बिल्कुल नए अंदाज में आप हमसे जुड़े और अच्छा लगा। गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन से हमारे साथ हैं और कहते हैं, हमारी वर्तमान में जो भी जिंदगी है, स्थिति है, उसी में मैं खुश हूँ। भगवान को प्रतिदिन उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सच में दोस्त, करते रहना चाहिए। बहुतों से हम बहुत अच्छे से जी रहे हैं, है ना। जिंदगी का हर पल महत्वपूर्ण है, लेकिन संघर्ष के दिनों में भी हमें नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कोशिश जारी है। हमेशा ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये जीवन है, परिवर्तन का कोई ऐसा मोड़ आए जहाँ बीते कल के सभी सपने संपूर्ण हो जाएं, और बस ये जो उम्मीद है ना, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लो नायक, मधु नायक जी, बस यही हमें आगे बढ़ाती रहती है और हम जिंदगी के सफर पर अनवरत चलते रहते हैं। हमारी मैरिज को 2.5 साल हो गए हैं। ओके, आई एम गुरुदत्त फ्रॉम दिल्ली। अच्छा जी, मुझे तो गुरुदत्त सुनते ही ना बिल्कुल इतिहास के पन्ने एकदम पलट से गए। और लिखा है कि मैं अपनी वाइफ कनिका के लिए कहना चाहता हूँ कि थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। जब से तुम लाइफ में आई हो ना, तब से लाइफ में रंग से आ गए हैं। बिल्कुल, और अगर आप भी किसी ऐसे के बारे में सोच रहे हैं तो सोचिए मत दोस्त, पूछिए ना उसकी खैरियत। मैसेज भेज दिया है क्या? तो भेज दीजिए ना, टाइप करके छोड़ क्यों देते हैं।

आकाशवाणी रेनबो पर नीरजा है आपके साथ, प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स और सफ़र शुरू हुआ था कुछ इस तरह से कि अगर एक बदलाव आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है तो वो क्या होगा, करियर, रिश्ते, सेहत या खुद से प्यार करना। अपनी बात हमें लिख भेजिए दोस्त, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो लिख दिया है लेकिन आप अभी भी रह गए हैं। अगर आप भी लिखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो बस जुड़े रहना 9868107070। बिल्कुल यही वो नंबर है जहाँ कैलाश शर्मा जी ने गुरुग्राम से हमें मैसेज लिखा है और कहते हैं आज के टॉपिक के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर ने मम्मी पापा का साथ हमसे जल्दी ही छीन लिया, तो यदि दोबारा से ज़िंदगी में हमें मौका मिला तो ज़िंदगी लिखने का, तो हम चाहेंगे कि उनका साथ है ना हमें ज़्यादा देर तक मिल पाए और हम उसे उनके साथ ज़्यादा समय तक समय व्यतीत कर पाएँ और आनंद उठा पाएँ। तो कैलाश जी, ये नई पीढ़ी है जो आपका इंतज़ार कर रही है, बस इन्हें उसी तरह से प्यार कीजिए जिस तरह से आप सोच रहे थे कि कभी आपको किया होगा उन्होंने, जो आप शायद मिस कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक बार फिर से जीने का मौका आ चुका है। शमसुल कमर राही हमारे साथ गंज डुंडवाड़ा से जुड़े हैं और कहते हैं कि बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत खूबसूरत है मेरे ख्यालों की दुनिया, बस उसी से शुरू और उसी पे ख़त्म। बहुत याद आते हैं अक्सर मुझे वो बचपन के किस्से, हम बहन भाइयों का आपस का झगड़ा, कभी किसी की थाली से एक पीस उठा लिया और उस पर झगड़ा, और कभी वर्षा में छतरी को लेकर झगड़ा। इन छोटी छोटी तकरार में कितना प्यार था ना, इसका एहसास अब होता है। हाँ सच में अब बहुत कुछ है बच्चों की लाइफ में, लेकिन वो जो एक चीज़ के साथ सारे बड़े होते थे ना, वो अलग ही बात थी। और अगला मैसेज है हमारे पास प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से जुड़े हैं और कहते हैं जीवन हमें रोज़ सुबह एक खाली पन्ना देता है, उस पन्ने को अपने अच्छे कर्मों से खुशी खुशी सजाओगे तो जीवन रंग बिरंगी खुशियों से ज़रूर भरेगा। तो पुरानी बातों को छोड़कर आज अभी से हर पल मौज मस्ती के साथ खुशी से जियो ताकि भविष्य सुनहरा हो जाए। बिल्कुल इसी सुनहरे बात के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ, लेकिन कैसे बढ़ूँ, अभी एक और मैसेज लेना चाहिए मुझे। राहुल सिंह जेल कैंपस बिजनौर यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं बेहतर से बेहतरीन होने का दूसरा नाम है FM रेनबो दिल्ली, क्या बात है। और उसके बाद यही कहते हैं कि ज़िंदगी में बार बार जिया जा सकता है। हाँ बिल्कुल राहुल जी, बहुत ही खूबसूरत एहसास के साथ आप जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा और दिल का ये टेलीफोन तुम्हें याद कर रहा है दोस्त, और जुड़े रहना इस सफ़र पर हमारे साथ है।

0: This place is heavy.
1: और दोस्तों ये सफर यूं ही जारी रहेगा, कुछ ना कुछ खास हम करते रहेंगे आपके मनोरंजन के लिए और साथ में इंफोटेनमेंट भी चलता रहेगा। इस कार्यक्रम के बाद हम आगे बढ़ेंगे सुहासनी के साथ, वेस्टर्न म्यूज़िक लेकर आएंगी हमारे बीच और फिर 8 बजे एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगी म्यूज़िक मस्ती कार्यक्रम लेकर। रात 9 बजे आपकी याद आती रही, मैं रेखा चौधरी रहेंगी हमारे साथ और फिलहाल दिल का टेलीफोन आप ही को याद कर रहा है।

0: for your love.
1: जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हार गए दोस्त हम, ये जीवन है, हर जीवन का वही रंग है और यही रूप है। और नियमित रूप से हमें मोहन परिवार सुन रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही प्यारी बात।

चलते चलते आपसे यही कहना चाहती हूँ दोस्त कि याद रखना, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और लेखक तो आप खुद हैं, तो बताइए आपकी जिंदगी की किताब में अगला बदलाव क्या लिखना चाह रहे हैं। लिख भेजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में आज इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच

0: को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। एआई, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया के रक्षा खरीद कार्यक्रम प्रशासन मंत्री ली जोंग चुल से सोल में मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, उत्पादन और निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार तंत्र को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी काइंड एक्स पहल की क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा और उत्पादन भागीदारों तथा उद्योग जगत की सराहना की है। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के शिष्टमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि प्रस्तुति में एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदों के बारे में बताया गया। इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया और समिति के सामने अपनी प्रतिक्रियाएं रखीं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू की आशंका व्यक्त की है। अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू चल सकती है। असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज बारिश हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: Well, that was Halsey and the Chainsmokers singing Closer. Yes, that was a hit song lot in 2019 or something like that. And it was a very, very famous song. But we'll move on to the waterfalls of Meghalaya, since it is the land of clouds, or also known as the Adobe of Clouds. And also that there are many places to visit the waterfalls. We have Nokalikai Falls that dramatically falls from the hill, and there's also a Seven Sister Falls that runs through the mountains after the rains, and we also have Wai Soundong Falls, and it's a three-tier waterfall that almost looks unreal. And there are many other places, but if you want to go into the city, of course Shillong, the capital hill where music is floating around the cafes and the pine trees surrounding it, is one of the beautiful places that you can visit, because Meghalaya is just not about beauty, it is also about adventure, and every trail that leads somewhere unforgettable.
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: शहर का कोना कोना होगा साफ जब होगा स्वच्छता टिप का साथ। अरे सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक है बैड न्यूज, उसे करो अब साफ साफ रिफ्यूज। घर, मार्केट, ऑफिस या सफर कहीं भी जाएं तो सिंगल यूज प्लास्टिक से खुद को बचाएं, और अपने साथ कपड़े या जूट बैग रखने की आदत को अपनाएं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बोलो बाय बाय और स्वच्छता को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
5: कोयल सी तेरी बोली,
6: हाय हाय,
5: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
6: अरे

0: सुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सेंचुरी. सो दीज आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट सेंचुरीज दैट यू कैन विजिट फॉर बोथ फ्लोरा एंड फौना इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु आर लव इन लव विथ नेचर. बट दिस इज द एंड ऑफ द शो दैट इज नॉट ईस्ट यूज एंड आई एम सुहासिनी टेकिंग leave of this program, but I'll see you later in the evening at 10:05 with the program Rainbow Classics. Till then, take care of yourselves and drive safely.

आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ नीरजा चतुर्वेदी, लेकर आ गई हूँ म्यूजिक मस्ती, और ऐसी मस्ती कि जिसको सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि एक धुन और दिल सीधे ही यादों की गलियों में पहुंच गया और फिर आपसे कहता है, भाई नीरजा क्या किया।

म्यूजिक की वो जादुई मस्ती जहां पैर खुद ब खुद थिरकने लगे, ये है म्यूजिक मस्ती। एफएम रेनबो पर आपके साथ हूं मैं नीरजा। कोशिश है दोस्त कि आपकी शाम झूम जाए।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
5: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
4: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
5: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
7: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
8: केले का छिलका सड़क पे, ना भाई ना। चिप्स का खाली पैकेट खिड़की से बाहर, ना भाई ना। चलिए अपने शहर, गली, मोहल्ले, घर और दफ्तर को साफ और सुंदर बनाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि कचरा डिब्बे में जाएगा तभी तो भारत साफ नजर आएगा। तो कचरे को बोलो बाय बाय और स्वच्छ भारत को करो हाई फाई। भारत सरकार की महारत्न पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड द्वारा जनहित में जारी।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी पर मैं हूँ आपके साथ नीरजा चतुर्वेदी। प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती, जहाँ म्यूजिक मैं लेकर आई हूँ और मस्ती जो आपके अंदर है ना वो बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। और एक प्यारी सी धुन और पूरी दुनिया थोड़ी ज्यादा खूबसूरत लगने लग जाए उसके लिए प्रयास पूरा रहेगा। और साथ दे देना दोस्त।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती और मैं हूं आपके साथ नीरजा।

0: दोस्तों, म्यूज़िक की मस्ती में कभी बचपन मिल जाता है तो कभी कोई अपना याद आ जाता है।
1: राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट परेड थम, जवान पीछे से गाना गा।
0: एक बीट, एक धुन और दिल कहता है बस यही वाइब चाहिए।

0: बिल्कुल दोस्त, शॉपिंग के लिए तैयार हो जाइए। हमने तो सब कुछ बता दिया है आपको भविष्य में क्या होने वाला है। बिल्कुल इसी तरह से झूमेंगे फिर आप।
1: मेरे दिल के अंदर वे सजना वे सजना वे सजना कलंदर मस्त कलंदर।
0: तभी तो कहते हैं म्यूजिक वो साथी है जो बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह जाता है। कह रही हूँ मैं बार बार, सुन रहे हैं ना।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 8:00 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आकाशवाणी पर मैं हूँ आपके साथ नीरजा चतुर्वेदी और प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती, और मस्ती होना लाजमी है। शाम का वो वक्त है जो बिल्कुल थकान उतार देगा, और मैं एक ऐसा ट्रैक लेकर आई हूँ जो बादशाह और आस्था गिल की आवाज़ में है, और मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। और सच में जब यहाँ पर आती हूँ ना इस मंच पर, तो ऐसा लगता है आप मेरे साथ साथ हैं। होना साथ साथ

और दोस्तों, जब सुरों का जादू चल ही गया है तो दिल कहता है थोड़ा और हो जाए, और थोड़ी सी शरारत, थोड़ी सी शिकायत आपसे कहनी है कि आप केयर नहीं करते क्या?

बिल्कुल दोस्तों, टाइम भी निकालना होगा, मिलना भी होगा और मनाना भी होगा, और म्यूजिक की मस्ती ऐसी कि उदासी को भी झूमना सिखा दे, और हम आपकी बहुत केयर करते हैं। तो फिर

कुछ धुने वक्त कहाँ देखती हैं, बस दिल का दरवाज़ा खटखटा देती हैं, जैसे मेरे दरवाजे पे बिल्कुल रेखा अभी आने वाली हैं। और रेखा, जब से मैंने तुम्हें देखा आपकी याद आती रही, बिल्कुल यही कार्यक्रम लेकर आ रही हैं रेखा 9 बजे से हमारे बीच। और फिर 10:05 पर एक बार फिर से सुहासिनी होंगी हमारे साथ वेस्टर्न म्यूज़िक लेकर, और रात 11:05 पर रंग महफिल कार्यक्रम पेश करेंगी रेखा चौधरी हमारे बीच। और फिलहाल मैं आपसे हुकअप करना चाहती हूँ दोस्त। नेहा कक्कड़ और शेखर राव जियानी की आवाज में ये ट्रैक आपके लिए, आपके लिए, आप ही के लिए है।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हाँ, गर्मी बढ़ गई है इसलिए एहतियात बरतिए और काम के साथ साथ एंजॉय करिए मौसम में बदलाव को। जी हाँ, बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए सर्दियाँ हों, गर्मियाँ हों, पतझड़ हो, बरसात हो, हर मौसम को एंजॉय करना तो बनता ही है। हाँ, एंजॉय करने का तरीका वो आपको ही ढूंढना है कि आप किस मौसम को कैसे एंजॉय करेंगे। जी हाँ, फिलहाल आपको बता दूं कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है, आपकी याद आती रही और इस मस्त मस्त सफर में आप हैं अपने पुराने दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी के साथ। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस मौसम को भी, क्योंकि मौसम तो आते जाते रहते हैं, आप और हम यूं ही मस्ती में जी हाँ झूमते रहते हैं।

जी हाँ दोस्तों, मौसम मौसम कोई भी हो, कभी भी हो, कहीं भी हो लेकिन ये जो इश्क मोहब्बत प्यार का मौसम है ना, कभी भी ये नहीं कहता कि इस मौसम में हम इस चीज़ से परहेज़ कर सकते हैं या इजहार से परहेज़ कर सकते हैं। इजहार हो, इनकार हो, मौसम मौसम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे ये यादों की जो बारात है ना, ये हमेशा चलती रहती है। और यादों का सफ़र आप जितना जिएंगे उतना ही लंबा होगा। लेकिन किंतु परंतु मैं तो कहूँगी कि

हमें कभी कभी अपने आप को, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही वक्त देना चाहिए, जहां आप हो, आपकी तन्हाई हो, और तब आप कभी अपने दिमाग की, कभी अपने दिल की माने, और कभी कभी कभी दोनों से कह दे कि आज आज ना तो हम दिल की मानेंगे और ना ही दिमाग की मानेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप की। क्योंकि दिल और दिमाग की लड़ाई में कभी कभी दिमाग जीत जाता है और दिल। अगर किसी एक को एक तरफा कर दिया जाए तो उसकी माननी ज़रूर चाहिए। और कभी कभी जब जोरों से दिल धड़के ना, तो फिर समझ जाइए दिमाग को एक तरफ रख दीजिए और दिल को, जी हाँ, अपने पास रख लीजिए। फिलहाल आपके जो मैसेजेस हैं मेरे पास आने लगे हैं, पढ़ती हूँ एक और खूबसूरत गीत के बाद। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल। आपको याद दिला दूं कि प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही, और इस सफर में आप हैं इस वक्त अपनी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी के साथ।

0: अगर कोई प्यार में किसी को इस दर्द से आवाज़ दे और दूसरे के दिल तक ना पहुँचे, ऐसा होना तो मुझे तो भाई असंभव ही लगता है। और सबसे पहले जो मेरे पास मैसेज आया उसको पढ़ लेते हैं। डियर रेस्पेक्टेड आर जे आर सी जी, खैर कदम, गर्मी की दोपहरी धूप का पहर रहता है, ऐसे मौसम में भी तेरा ख्याल ठहरा ही रहता है। जब तपती हवाएं छूकर गुजरती हैं राहों से, तेरी याद का बादल दिल पर ठहरा रहता है। ये लिखा है मोहम्मद सरफराज आलम ने, जोकीहाट दर्शना बाजार अररिया बिहार से। और जो मेरे पास दूसरा मैसेज आया है वो कहते हैं, कहने को तो बात बहुत है, यादों के हालात बहुत है, इंसानों की बात न करना, पत्थर में जज्बात बहुत है, कोई किसी का हाल न पूछे, राह में चलते साथ बहुत है, मन का सुख यूं दूर हुआ, लालच का जुल्मात बहुत है, बहुत रो लिए अब चुप, प्रेमी गम की लंबी राह बहुत है। प्रेमचंद प्रेमी जैतरा धामपुर से लिखते हैं। क्या लिखा है आपने, अगर ये लाइन्स आपकी हैं तो बहुत बहुत सुंदर लिखा है। एक और मेरे पास दोस्त आया है आपका मैसेज, ये बहुत प्यारा सा और छोटा सा मैसेज लिखते हैं। इनका मैसेज देख के ना सच में दिल गदगद हो जाता है। वो लिखते हैं, गुड इवनिंग दोस्त, वेलकम बैक सौरभ अनेजा गाजियाबाद से लिखते हैं। और ये हमेशा ना इतना प्यारा सा छोटा सा ही मैसेज लिखते हैं। थैंक यू सो मच सौरभ, आप इतना छोटा सा मैसेज लिखते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आगे एक दो लाइन बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। एक और मैसेज मेरे पास आया है पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं, गुड इवनिंग आरजे, यहाँ पे लिखा है आरजे रेखा मैडम जी, वेलकम बैक टू यू शो। मैडम जी आपकी याद आती रही, बहुत बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुत आरजे मैडम जी, और गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। आरजे मैडम जी, इस महीने में आपके कार्यक्रम 6 मई से 13 मई को सुना, और 6 मई 13 मई और आज 20 मई को भी सुनने का मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्या बताएं, पता है सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे कोई डेट याद रहे ना रहे, मेरे लिसनर्स को याद रहती हैं और ये मुझे देखकर सुनकर पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। चले इसी बात पे एक और मैसेज ले लेते हैं। रेडियो शुभ संध्या, रेडियो सखी रेखा चौधरी जी, सप्रेम नमस्कार, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपकी याद आती रही, गाने पसंद आ रहे हैं। ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। लेकिन किंतु परंतु इसी तरह से मैसेजेस की लाइन लगी रहेगी और हम पढ़ते रहेंगे तो हमारे प्रोग्राम में फुल स्टॉप नहीं लग जाएगा और वो मैं बिल्कुल नहीं लगाना चाहती। चलिए फिलहाल एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर लौटते हैं बहुत ही जल्द आपके साथ, आपके पास, बने रहिए हमारे साथ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी दोस्तों, आप सभी के मैसेजेस लगातार पहुंच रहे हैं। रेखा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। सुरेश वैष्णव लिखते हैं, और आप कैसी हो? तो मैं बिल्कुल दुरुस्त हूं दोस्त, ये सॉन्ग अच्छा है, नंबर वन। और पतझड़ सावन बहार भी बहुत ही खूबसूरत गीत है, दिल के आगे दिमाग को

आना पड़ता है क्योंकि दिल तो दिल है ना जी। बिल्कुल जी, लेकिन कभी कभी ना जब आपको लगे कि अभी मुझे दिल की सुननी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर चाहें तो दिल की ही सुन सकते हैं, और अगर कोशिश करें कि दिमाग की सुननी है तो फिर दिमाग की सुनेंगे। इसलिए कभी कभी दिल की भी सुननी चाहिए, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं कि दिल की जगह दिमाग ही सही हो, कभी कभी दिमाग भी गलत हो सकता है और दिल दिल सही हो सकता है। खैर आपको यही कहूंगी कि वैसे तो किसी ने सच ही कहा है कि यादों के समंदर में ना जितनी गहराई में जाओगे उसकी गहराई उतनी ही बढ़ती जाती है। इसलिए अपनी इस दोस्त की बात माने तो यादों की किताब और उसके पन्नों को लहरों तक ही सीमित रखें तो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ तक रखेंगे तो इंजॉय भी कर पाएंगे। गहराई माप कर अपने आप को परेशान करना क्यों, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और इस तरह आगे बढ़िए और अपने आप से कहिए कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन यादों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। और वक्त पड़ा तो हम शब्दों के जरिए भी अपनी बात को जाहिर करेंगे, क्योंकि यादों तक सीमित रखना, जी हाँ, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। कभी कभी शब्दों के जरिए अपनी यादों को दूसरे के सामने रख देना चाहिए।

जी हाँ दोस्तों, कभी कभी यादों का खंजर एक मीठा सा दर्द देता है, तो कभी कभी यादों का खंजर दिल को बहुत बहुत बहुत परेशान करके उसमें ऐसा दर्द जगा देता है जो न कहते बनता है और न सहते बनता है। जी हाँ, कुछ दर्द ऐसे ही होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सहने वाला जानता है, और लफ्ज़ों के ज़रिए हर बात की जाए ये भी तो सही नहीं है, है ना? क्योंकि आप कहने की कोशिश करेंगे पर ज़रूरी नहीं कि सामने वाला उस चीज़ को समझे। आपकी बातों में वो दर्द जो आप महसूस कर रहे हैं वो ढूंढ सके। इसलिए कुछ चीज़ें अपने आप में रह जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कभी यादों के पन्ने पलटते हुए आंखें नम हो जाएं तो एक और नया पन्ना लिखना चाहिए जिसमें आंसुओं के साथ मुस्कुराहट भी जुड़ी हो, और आप उन शब्दों को लबों पर हंसते हुए ला सकें और दिल मुस्कुरा सके, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में ही है ना कि हम कौन सी यादें ताज़ा रखने चाहते हैं और कौन सी यादें मिटाना चाहते हैं, है ना? सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

जी हाँ दोस्तों, मैंने तो पहले ही कहा था कि कुछ यादें दिल को सुकून देती हैं तो कुछ यादें दिल पर इस कदर खंजर चलाती हैं कि आपके जो जख्म होते हैं ना, वो और भी हरे हो जाते हैं, यानी वो और भी उभर आते हैं। इसलिए ऐसी यादों को अपनी दिल की किताब से फाड़ फेंकना ही अच्छा होता है। ये भी जानती हूँ, कहना बहुत आसान है लेकिन झेलना बहुत मुश्किल मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कोई भी चीज़ नहीं होती है। एक मेरे पास मैसेज आया है। हाय रेखा जी, मैं सुभांशी, ये यादों की शाम बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसको मैं बहुत अच्छे से सुनता हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुराने रिश्ते भी बहुत जल्द याद आ जाते हैं। लेकिन दोस्त, आपने ये मैसेज कहाँ से लिखा है, ये हमें नहीं लिखा, तो कोशिश करिए जहाँ से आप भेज रहे हैं उस जगह का नाम भी लिख सकें। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो, आपकी याद आती रही। कार्यक्रम शानदार चल रहा है, गीत और संगीत बेहद पसंद आ रहे हैं। नाइस प्रेजेंटेशन किशन, वंजनी, नीलम, स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से लिखते हैं हमें। एक और मैसेज, आरजे सिस्टर साहिबा जी, रेडियो ऑन किया तो आपकी आवाज़ सुनकर दिल खुश हो गया। आप आरजे रेखा जी आरसी सिस्टर साहिबा जी ही है ना? बिल्कुल सही पहचाना है आपने। गीत हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, ये बहुत पसंद आया। कस्बा गुन्नौर यूपी से लिखते हैं फारूक अली खान जी। एक और मैसेज मेरे पास, अनिता मुखी, सुदर्शन मुखी, सिमरन मुखी का शांति नगर सोनीपत से, उन्हें भी हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। एक और मैसेज आया है, इसको भी पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि कुछ भी इमोजीज आप भेजना चाहें अगर, तो हमें भेजने की कोशिश करते हैं, ये पता चल जाता है कि कुछ आप वीडियोस या आप फोटोज़ भेजना चाह रहे हैं, लेकिन वो हम तक पहुंच नहीं पाती है। ऐसा सिस्टम में ऑलरेडी सब कुछ सिस्टम में लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपके जो मैसेजेस हैं वो हम तक पहुंचते हैं। वो लिखते हैं आगे, सुप्रसिद्ध रेडियो प्रेजेंटर सिस्टर रेखा जी नमस्ते, मैं कविता अपनी सुमधुर आवाज़ में प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं एक राइटर हूँ, 2 किताबें अब तक लिख चुका हूँ, संवेदना के स्वर एक एवं मुक्तक मंजूषा, और बहुत समय पहले अपने प्यारे FM रेनबो के स्टूडियो से लाइव 3 बार का काव्य पाठ कर चुका हूँ। ये लिखा है प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से लिखते हैं। आप बहुत अच्छा बोलती हैं, हमें फक्र है आप पर, प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से लिखते हैं। और उन्होंने आगे एक बात और कही है, वो लिखते हैं अपनी शीघ्र आने वाली 3री पुस्तक में हम आपकी काबिलियत का जिक्र ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद आपका, प्रेमचंद प्रेमी जी। एक और मेरे पास मैसेज आया है।

0: मास्टर राधेश्याम जी का, उन्हें भी हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है और लिखते हैं कि उन्हें ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और हमेशा की तरह उन्हें इस प्रोग्राम का इंतज़ार रहता है। तो थैंक यू सो मच। और साथ में मेरा भी नाम राहुल रेनू बिहारी कॉलोनी से लिखते हैं कि आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं मैडम जी, आप कैसे हैं? तो बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ दोस्त। इसी बात पे मैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेना चाहती हूँ, अगर इजाज़त हो तो ले लिया जाए। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज पर दिल्ली और एनसीआर में, पूरे भारत में हम आपसे जुड़े हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर, और अब आप ऐप के जरिए भी हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: वेलकम बैक दोस्तों। यूं तो यादों का सफर जितना लंबा किया जाए कभी कभी बहुत अच्छा रहता है और कभी कभी अच्छा बिल्कुल नहीं रहता है। इसलिए जब आपके साथ, आपके पास आपके मनपसंद के दोस्त हो ना, तभी यादों की बारात को निकाला जाना चाहिए, यादों की किताब को पढ़ा जाना चाहिए और जितने यादों के समंदर में गोते खाए जाए जी हाँ, वो भी खूबसूरत यादों के, तो उतने गोते खा लेने चाहिए। तो चलिए, आपको तो पता ही है कि यादों का सफर बहुत बहुत बहुत खूबसूरत होता है अगर आप और हम चाहें तो। टिक टिक करती घड़ी काफ़ी कुछ कह रही है और ये भी कह रही है कि अभी तो वक्त है हमारे पास, ज़्यादा जल्दबाजी में अपना शॉर्ट में जो आप मैसेज लिख देते हैं ना, वो बिल्कुल भी ना लिखें। एक मेरे पास मैसेज आया है, शुभ संध्या रेखा चौधरी मैडम जी, प्लेलिस्ट है बहुत ही अच्छी और मनोरंजक और गर्मी में राहत देने वाली है। राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़ खेड़ा से ये हमें लिखते हैं। आकाशवाणी रेनबो दिल्ली के सभी कार्यक्रम व्यवस्थित व सुनियोजित होते हैं, हमें बेहद पसंद आते हैं। राहुल सिंह जेल कैंपस बिजनौर से लिखते हैं। एक और मेरे पास मैसेज में सुभाषिनी गुरुग्राम से लिखते हैं कि मैं जी हाँ, वो भी सुन रही है और शायद पिछली बार पढ़ने में थोड़ा सा कुछ गलत तो हुआ, लेकिन सुभाषिनी जी आप सच में बहुत बहुत बहुत अच्छा लिखती हैं। एक और मेरे पास मैसेज आया है, उन्होंने एक गाने की फरमाइश कर डाली है। तो दोस्त, मैं हमेशा की तरह आज फिर कहूँगी कि ये हमारा फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, इसलिए फरमाइशी जो सॉन्ग्स होते हैं वो हम नहीं चला सकते हैं। जाहिद अहमद मुजफ्फरनगर, आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, थैंक यू, आपने हमें इतने अच्छे गाने सुनवाए। तो थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे गाने सुने और रिप्लाई भी किया। तो चलिए अपने प्रोग्राम को एक और मोड़ देते हैं, नया मोड़ इस खूबसूरत आवाज़ के साथ।

जी हाँ दोस्तों, यूँ तो कई बार हम बहुत कुछ सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। अगर बात सही हो तो कहना भी बहुत ज़रूरी है, और हर बात जो मन में आए वो कह दें ये भी बिल्कुल सही नहीं है। यूँ तो दिल और दिमाग आपस में बहुत बहुत बहुत टकरार करते हैं, लेकिन इनकी टकरार को ख़त्म करने का जिम्मा भी हमारा ही होता है। कब, कहाँ, कैसे, कौन टकरा जाए और ये नज़र आपकी किस पर ठहर जाए, और नज़र ठहरने के बाद आपको कब ऐसा लगने लगे कि हाँ, शायद शायद मेरी यादों में कुछ ऐसा भी आता था, क्या ये वही है? जी हाँ, और अगर ये दिल गवाही दे कि हाँ ये वही है, तो ज़रूरी नहीं कि आप खुशी से नाच उठें, झूम उठें। जी हाँ, आप जानते ही हैं, सिक्के के दो पहलू की तरह इश्क मोहब्बत प्यार में भी दो पहलू होते हैं, गम का और खुशी का। क्या पता कब, कहाँ, किस वजह से आपकी आँख नम हो जाए, भले ही दिल मुस्कुरा उठे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
2: और अब ठीक 11 बजे फिर मुलाकात होगी आप सबसे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के खिलाफ पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इस दौरान इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान

0: नम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 17 ओवर में 7 विकेट पर 106 रन बना लिए हैं। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए पश्चिम बंगाल का गंगई क्षेत्र, तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम बैक, यू ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ एंड द टाइम बेस्ट टू क्लॉक इज 10:05 एंड 47 सेकंड्स। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम रेनबो क्लासिक्स विद मी सुहासनी। सो आई हैव अ गुड नंबर ऑफ सॉन्ग्स दैट हैव फीचर्ड इन सम फेमस मूवीज, बट लेट्स बिगिन विद वन ऑफ देम एंड दैट इज फ्रॉम द मूवी मैवरिक विद बर्लिन सिंगिंग टेक माई ब्रेथ अवे।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल

0: लेकर
1: करते हुए फील्डर से नहीं रुकी है गेंद सीमा रेखा के बाहर।
0: मन की बात के संवाद तक
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान

प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, प्रोग्राम रंगे महफिल में आप सभी का स्वागत है। और इस खूबसूरत सफर में भी आप हैं अपनी दोस्त दारसी यानी रेखा चौधरी के साथ। तो चलिए, देर किस बात की, आगाज तो करना ही है। और आगाज एक खूबसूरत गीत या गजल से हो तो बस बात बन जाए, है ना। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत आवाज़ के साथ। और ये आवाज़ हमेशा दिलों में बसती रही है, बसती रहेगी। और सच में इस आवाज़ में कोयल की खनक सुनाई देती है।

जी हाँ दोस्तों, वो ख़तों का सिलसिला भी कितना खूबसूरत होता होगा ना, जब इंतज़ार रहता होगा कि हमारा ख़त कब दूसरे इंसान तक पहुँचेगा और दूसरा इंसान भी बेसब्री से उस ख़त का इंतज़ार करता होगा, और जब जब वो ख़त उनके हाथों में आता होगा तो दिल कितना ज़ोरों से धड़कता होगा। लेकिन उस टाइम पर उनकी वैल्यू थी, यानी कि खतों की वैल्यू थी, आज भी है नो डाउट, लेकिन किंतु परंतु एक बात है कि ये मैसेजेस जो आते हैं ना आपके फटाक से मेरे पास तक, और मैं फटाक से उन्हें ऑन एयर कर देती हूँ और झटक से आपका नाम भी ले लेती हूँ, ये नहीं हो पाता अगर ये दौर ना होता और वो खतों का दौर पीछे ना जाता, तो ये मैसेजेस का दौर कहाँ से आता, है ना, समझ रहे हैं ना। हाँ, कभी कभी मैं अपनी बातों को जल्दी जल्दी इधर से उधर, उधर से इधर कर देती हूँ, तो कई लोगों की समझ में आती है, कई लोगों की समझ में नहीं आती है। अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो मैं समझाने के लिए यहाँ पर हूँ दोस्तों। सबसे पहले मेरे पास जो मैसेज आया है वो लिखते हैं, गुड इवनिंग रेखा जी, रंगे महफिल लाजवाब चल रहा है, हमने सरम को खत लिखा, बेहद खूबसूरत कार्यक्रम चल रहा है और ये गीत भी बहुत ही सुंदर है। आगाज़ अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा, बिल्कुल। उन्होंने एक फरमाइश कर डाली है, तो दोस्त ये तो आपको पता ही है कि फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी खूबसूरत जो गज़लें होती हैं ना, गीत होते हैं, उन्हें हमेशा

मैं चलाने की कोशिश करती हूँ। और उन्होंने प्रेजेंटेशन की भी काफ़ी तारीफ़ की है, और ये तारीफ़ की है किशन, वंजुनी, नीलम, स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। एक और हमारे दोस्त हैं वरुण इंदौर से, वो भी हमें मैसेज कर रहे हैं। तो वो लिखते हैं, यही गर्मी के मौसम में सावन के गीत तो चलते ही हैं, लेकिन किंतु परंतु आज अलग उन्होंने बताया है हमारे प्रोग्राम को, और गज़ल की भी फरमाइश की है। तो बिल्कुल दोस्त, गज़ल तो चलनी बनती ही है, लेकिन आप जानते हैं कि फरमाइश जो कर रहे हैं ना हमारे दोस्त, वो फरमाइश उनकी पूरी हो जाए 100%, इस बात का मैं दावा नहीं करती, प्रॉमिस नहीं करती। और आप जानते ही हैं कि जो हमारे अगले लिसनर हैं उनका मैं जो मैसेज पढ़ने वाली हूँ अभी, आपको बहुत हंसी आने वाली है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक एक शब्द लिखकर भेजा है। हेलो की जगह एच लिखा है, मैडम की जगह एम लिखा है, और साथ में अपना नाम तो बिल्कुल नहीं लिखा है। तो भाई ऐसी भी क्या जल्दी कि इतना छोटा सा मैसेज करें। हाय रेखा सिस साहिबा जी, आदाब, प्रोग्राम का आगाज़ बहुत ही उम्दा, गीत हमने सनम को खत लिखा बहुत ही पसंद आया, कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा लिखते हैं। मैसेजेस तो और भी हैं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल सहन में आ रही है, क्योंकि कभी कभी दोस्तों हम खुद चाहते हैं कि हम ज़्यादा समझदार ना रहें कुछ देर के लिए, हम ज़्यादा समझदार ना बने कुछ देर के लिए, बहुत होशियार बनने की कोशिश भी ना करें कुछ देर के लिए, और होश भी गवा दें अपने कुछ देर के लिए।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: दोस्तों, एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो लिखते हैं पंकज अमरावती महाराष्ट्र से। शुभ रात्रि आरजी रेखा मैडम जी, वेलकम बैक टू यू शो मैडम जी। कार्यक्रम रंगे महफिल बहुत बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुत थी, और आरजे मैडम जी जो गीत आपने चलाया वो मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। गीत हमने शर्म को खत लिखा, खत में लिखा बहुत बढ़िया गीत, कार्यक्रम की शुरुआत बहुत अच्छी की, और इस फिल्म का नाम शक्ति है, और उन्होंने जी हाँ गायिका का नाम भी पहचान लिया है, तो थैंक यू सो मच। अगर ये आपने सुनते ही जान लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गूगल देवता की मदद ली है तो ठीक है, नॉलेज में तो आपके आ ही गया है। एक और मेरे पास मैसेज आया है, जी हाँ, मैं लातूर महाराष्ट्र से मनीषा, मगर दूसरी भी गज़ल बहुत ही मस्त है मेरे साथ सुन रहे हैं, काव्या मगर, शुभांगी मगर, आरती मगर, गंगा अंगद, दीपक उदय, तो थैंक यू सो मच। आप हमारे प्रोग्राम को सबके साथ सुन रहे हैं और आपको पसंद भी आ रहा है। एक और मैसेज ले लेते हैं, प्रकाश तिरसुनिया भानु प्रताप छत्तीसगढ़ से, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और ये गज़ल तो बहुत ही अच्छी है जगजीत सिंह जी की आवाज़ में, सच में ऐसे गाने इस वक्त बहुत ही सुकून देते हैं। बिल्कुल दोस्तों, दिन भर की थकान कब कैसे गायब हो जाती है खूबसूरत संगीत के साथ पता ही नहीं चलता, और संगीत ख़ास तौर से जब आपके दिल पर ख़ास दस्तक दे तो उसकी बात अलग ही होती है ना। कितने अजीब हैं इस दुनिया के लोग, कितने अजीब हैं इस दुनिया के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेल जाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, जब रात के सन्नाटे में इस तरीके के गीत गज़ल चलते हैं और ख़ास दस्तक देते हैं हमारे दिल पर तो लगता है ना कि काश काश इसी तरह से ये समय चलता रहे, बस चलता रहे और हम उसे इंजॉय करते रहें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी। खैर, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक और मेरे पास प्यारा सा मैसेज आया है। हाय आरजे आरसी जी, गुड इवनिंग। जयंत लिखते हैं पटना से। एक और मेरे पास मैसेज, विवा गोवा श्याम सुंदर जी का, तो उन्होंने भी एक फरमाइश कर डाली है। तो देखो दोस्तों, ये तो मैं कई बार कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, फिर भी अगर कोशिश कर सकी तो कोशिश करके देखूंगी। एक और मेरे पास मैसेज आया है, ये आया है पंकज अमरावती महाराष्ट्र से। शुभ रात्रि आरजे रेखा मैडम जी, कार्यक्रम रंगे महफिल आपका हम सब सुन रहे हैं। कितने अजीब हैं इस दुनिया के लोग, खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। बहुत ही बढ़िया शायरी है थैंक यू सो मच। एक और मेरे पास मैसेज आया है, लेकिन उन्होंने दोस्तों ये नहीं लिखा है कि उन्होंने ये मैसेज कहाँ से लिखा है और इन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा है। तो आपको फिर से याद दिला दूं कि अपना मैसेज छोटा करके लिखें, लेकिन इतना भी छोटा नहीं कि आप अपना नाम और जिस जगह से भेज रहे हैं उस जगह का नाम

0: ही लिखना भूल जाएं तो भाई ये तो गलत बात है। अपना नाम ज़रूर लिख कर भेजिए और हो सके तो जिस जगह से आप लिख रहे हैं उस जगह का नाम भी ज़रूर मेंशन कीजिए। बस कहने को तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जब भी आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुने तो बस एक मुस्कुराहट अपने होठों पर ज़रूर ले आएं। ये ना देखें कि कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है, बस मुस्कुराइए, क्योंकि कभी कभी अपने लिए खुद के लिए मुस्कुराना भी बहुत ज़रूरी होता है। यूँ तो शब्दों को लंबा करना हर कोई जानता है, लेकिन कम शब्दों में अपनी बात को कहना कोई कोई जानता है। और जिसने ये हुनर हासिल कर लिया, बस समझ लीजिए वो अपने आप में एक कामयाब इंसान हो गया। और इस बात की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि कम शब्दों में दूसरों को अपनी बात को समझाया जा सके और कम शब्दों में लिखकर दूसरों को पढ़वाया जा सके। ये बात भी ज़रूरी नहीं है कि कम शब्दों में जो अपनी बात को कहते हैं वो बेहद इंटेलिजेंट होते हैं। ज़्यादा शब्दों वाले भी इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि मैं इस बात को जानती हूँ कि कुछ लोग इस बात को सुन के नाराज़ होने वाले हैं और कुछ गदगद होने वाले हैं। तो भाई जो अपनी बात को समझा दे दूसरे इंसान को, चाहे कम शब्दों में या फिर ज़्यादा शब्दों में, वो इंसान समझदार इंसान है। फिलहाल एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास। बने रहिए हमारे साथ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: वेलकम बैक दोस्तों, और एक हमारे पास मैसेज आया है, मुझे समझ में नहीं आया इस का मतलब कि मैम हम आपके प्रोग्राम हमेशा सुनते हैं, लेकिन किंतु परंतु कभी कभी दिल इतना उदास होता है कि समझ में नहीं आता हम किससे बात करें और किससे नहीं। तो दोस्त, जिससे बात करना आपको पसंद हो वो उससे बात करनी चाहिए, और अगर किसी से आपको बात करना पसंद ही नहीं है तो फिर आपको अपना मनपसंद सॉन्ग, संगीत, संगीत या फिर जो भी आपको खेलना पसंद है तो खेलिए, डांस करना पसंद है तो डांस करिए, लेकिन इतनी उदासी भरी जो लाइनें आपने लिखी है ना, वो

वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा मुझे कि आप भी इतनी उदासी भरे जी हाँ इतनी उदासी भरे शब्दों का इस्तेमाल करें। एक और मेरे पास मैसेज आया है, मैं अंगद मगर लातूर महाराष्ट्र से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और मैं पहली बार मैसेज कर रहा हूँ। तो देखिए आपने पहली बार मैसेज किया और पहली बार ही आपका मैसेज ऑन एयर हो गया। एक और मेरे पास मैसेज आया, इस छोटे से कस्बे में रेडियो सुनने का मज़ा ही अलग है, फिर गंगा का किनारा और इतना उम्दा गीत और गज़लें सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता है जी। फारूक अली खान लिखते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, दिल को सुकून कभी भी कैसे भी कहीं भी मिले, बस सुकून मिलना चाहिए। एक और मेरे पास मैसेज आया है, अब इन्होंने मैसेज में लिखा है, रंगे महफिल में आपको प्यार भरा नमस्कार आदाब अर्ज है, गुन्नौर से आदिल कंवर तस्दीक अली मुजफ्फर अली, शुक्रिया धन्यवाद आपका, तो थैंक यू सो मच। एक हमारे लिसनर हैं, उन्होंने दिल एक मंदिर से एक सॉन्ग की फरमाइश कर दी है। तो दोस्त ये तो बात सही है कि आपने जो पैगाम मुझ तक भेजा है वो ठीक है, लेकिन मैं बार बार यही कहूँगी कि ये हमारा फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, और हमारे फरमाइशी प्रोग्राम दिन में होते हैं, तो वहाँ पर अगर आप चाहें तो अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। यूँ तो शब्दों को लबों पर लाने का काम हर इंसान जानता है, ध्यान से सुनिएगा, यूँ तो शब्दों को लबों पर लाने का काम हर इंसान जानता है, फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि कोई इन शब्दों को बिना किसी एहसास के सीधे सीधे बोल देता है और कोई इन्हीं शब्दों में प्यार की चाशनी की मिठास मिलाकर और अपने दिल को खूबसूरत सा एहसास देकर, जी हाँ उन सभी सांचों में ढालकर सबके सामने पेश कर देता है या अपनी बात को रख देता है। शब्द तो अनमोल हो ही जाते हैं, साथ ही आपकी बातों का वजन भी कई गुना बढ़ जाता है। तय तो सिर्फ आपको ही करना है कि किसी का दिल तोड़ना है या फिर दिल से दिल को जोड़ना है।

जी हाँ दोस्त, जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा लेकिन वो इतने ज़्यादा गम में डूबे हुए हैं और उन्हें लगता है शायद कि उनकी ज़िंदगी में ही सबसे ज़्यादा गम है। मैं ये दोस्त ये नहीं कहूँगी कि आपने ऐसा क्यों लिखा, नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, बहुत अच्छा किया अपनी दिल की बात को आपने हमसे शेयर किया, लेकिन देखिए ये गज़ल मैंने आप ही के लिए चलाई कि आखिर इंसान ऐसा कोई है जिसे कोई गम ना हो। अगर कोई ऐसा हो तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका नाम बताइए, अगर आसपास है तो ढूंढ कर बताइए। मैं वादा करती हूँ आपसे कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है कि किसी को ज़िंदगी में कभी कोई भी गम ना सताए या फिर किसी गम ने उसको छुआ ना हो। एक हमारे लिसनर हैं और वो लिखते हैं, नमस्कार रेखा जी, मैं आपका कार्यक्रम रंगे महफिल सुन रहा हूँ और सच कहूँ तो आपकी आवाज़, प्रस्तुति और गज़लों का चयन दिल को छू रहा है। आपकी पेश की हुई गज़लें सीधे सीधे दिल में उतर रही हैं और पुराने सुनहरे दौर की यादें याद दिला रही हैं। दिल से धन्यवाद इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए। इसी तरह अपनी आवाज़ और गज़लों से श्रोताओं के दिलों को सजाती रहिए। अमरेंद्र सिंह इंदौर से लिखते हैं, तो थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक और मेरे पास मैसेज आया है भाई, उन्होंने जो लिखा है ना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लिखा है। वो लिखते हैं कि ऐसा कोई भी दिन नहीं जिस दिन तुम्हारी याद ना आए। भाई अब ये किसके लिए लिखा है ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं। एक और मेरे पास मैसेज

है, चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। कोई किसी की जुदाई में नहीं मरता, पर रब किसी को किसी से यूं ही जुदा भी नहीं कर सकता। राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़ खेड़ा से हमें लिखते हैं। एक और मैसेज चलिए पढ़ ही लेते हैं। इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है। देखिए ऐसा गजब तो ना करें कि आपके इस दोस्त को, जिसको कभी गुस्सा नहीं आता है, उसको गुस्सा आ जाए। और जिन्होंने ये मैसेज भेजा था, जो मैंने अभी अभी पढ़ा, इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है। तो भाई प्लीज़ अपना नाम लिखकर तो मुझे ज़रूर भेजा करिए, कम से कम मुझे पता तो चले कि ये बातें, ये शब्द, ये लाइनें आखिर हमारे किस लिसनर ने लिखी हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिल्ली और NCR में और पूरे भारत में हम जुड़े हैं आपसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर। और पूरे भारत में ही नहीं, बल्कि अब आप हमें कभी भी कहीं भी, यानी कि विदेशों में भी सुन सकते हैं ऐप के जरिए। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल, जिसकी आवाज पहुंचती है दिल से दिल तक। एक और प्यारा सा गीत आप सबके लिए है।

जी हाँ, हमारे पास मैसेज आया है और उन्होंने भी हमारे प्रोग्राम की काफ़ी तारीफ़ की है और लिखा है, आरजे जब रेनबो पर बात करते हैं तो श्रोताओं को बहुत अच्छा लगता है, वरना सिर्फ गाने प्ले करने का क्या मतलब। बिल्कुल दोस्त, गाने प्ले सिर्फ किए जाए तो हाँ फिर अच्छा कम लगता है, अगर बातचीत के ज़रिए संगीत सुना जाए तो उसमें चार चांद लग जाते हैं और उसे सुनने का मज़ा अलग होता है। बिल्कुल सही कहा है आपने। एक और मेरे आगे भी लिखा है मैंने आगे पढ़ा अभी तो मुझे पढ़ने के बाद हंसी खुद ब खुद आ गई, आपकी हंसी तो अप्रतिम बहुत लाजवाब है लेकिन आमने सामने देखने को कितना आमने सामने देखा जाए तो कितना मज़ा आता होगा ना भाई। आप कई बार दोस्त ऐसा भी होता है कि हम जब कोई चीज़ सुनते हैं ना तो वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती है, और अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि सामने आने पर भी उस इंसान को उसकी आवाज़ जो सुन रहे हैं, ऑन एयर सुन रहे हैं, उसको आमने सामने बैठकर भी वही आवाज़ बहुत खूबसूरत लगे। एक और मेरे पास मैसेज आया है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। आरजे आरसी जी उन्होंने भाई ठीक है, आपने मेरे प्रोग्राम की बहुत तारीफ़ की है लेकिन जो शुरू में फर्स्ट लाइन लिखी है ना वो क्यों लिखी है मुझे तो ये समझ में नहीं आया। और हाँ, अगर मेरे पास वक्त होता तो आपकी समस्या को सुलझाने की मैं ज़रूर कोशिश करती। दोस्त ये अननोन लिखा है और बिहार से मेरे पास मैसेज आया है, तो कोशिश अगली बार कर लूँगी क्योंकि टिक टिक करती घड़ी ना काफ़ी कुछ कह रही है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, बातें और गीत गज़लों की जो लाइन है वो बहुत लंबी है। और आगे एक और मेरे पास मैसेज है प्रकाश तिरसुनिया का, भानु प्रताप छत्तीसगढ़ से, आज सभी श्रोताओं के भेजे गए मैसेज को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ रही हैं। कई बार हम देर रात तक सुनते हैं पर फिर भी मैसेज शामिल नहीं किए जाते हैं, कभी भी प्रोग्राम के अंत तक एक दो मैसेज पढ़ के प्रोग्राम समाप्त हो जाता है, लेकिन आज आप सभी मैसेज ले रही हैं। तो दोस्त मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी के मैसेजेस लूँ, आप सभी की बातों को शेयर करूँ। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं, शुभ रात्रि रेखा मैडम जी, गीत फिर छिड़ी रात फूलों की बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने गायक गायिका के नाम भी पहचान लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, वैसे तो हम हंसते हैं मुस्कुराते हैं, कई बार बहुत हंसते हैं मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर की बात कोई जान पाता है या नहीं ये हम खुद नहीं पहचानते। कुछ लोग होते हैं हमें से जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द पहचान लेते हैं, कुछ लोग हंसते हंसते बस यही कह देते हैं कि आपकी जो हंसने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, और उस पर हम यही कहेंगे कि हम हंसते तो हैं लेकिन सिर्फ

0: दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म तो इतने हैं कि ठीक से सोया तो क्या, रोया भी नहीं जाता। फिर भी हम मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, बस इसी बात का हमें अपने आप पर गर्व रहता है। एक और मेरे पास मैसेज आया है, लेकिन इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है, तो चलिए इसी बात पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास। बने रहिए हमारे साथ।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: हाय
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: वेलकम बैक दोस्तों, और एक और मेरे पास मैसेज आया है। जी हाँ, ये भी अमरावती महाराष्ट्र से ही है, और उन्हें भी हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, लेकिन उन्होंने देखिए अपना नाम नहीं लिखा है। एक और मैसेज मेरे पास, चलिए एक और मैसेज, मतलब उन्होंने ही लिखा है कि आपकी जैसी एक आरजे पूजा रेनबो मुंबई पर थी, उनका प्रोग्राम भी पूरा हंसी में होता था। 6 साल प्रोग्राम सुना, लेकिन 1 साल हुआ रेनबो पर से उन्हें गायब हुए, और आज और आगे की लाइन जो है ना, आपने अपने आप ही जोड़ दी। भाई कोई भी कारण हो सकता है उनका रेनबो पर ना आने का, इस पर अंदाज़ा लगाना तो भाई बिल्कुल गलत होगा। तो आखिर टिक टिक करती घड़ी हमें बहुत कुछ कह रही है, और कह रही है कि जाने के लिए आना और आने के लिए जाना बहुत ज़रूरी है। फिर किसी मोड़ पर फिर से मुलाकात होगी, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। और फिलहाल अपने दोस्त आरजी आरसी को दीजिए इजाज़त, शब्बा खैर। और चलते चलते एक और प्यारी सी गजल कह लीजिए, गीत कह लीजिए, लेकिन दिल के आसपास रहने वाले शब्द ये जरूर कहेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में

परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोदुलिदिस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मुंबई पहुंचे। मुंबई हवाई अड्डे पर

होगी। दोनों नेता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 147 रन बनाए थे। 148 रन के लक्ष्य के जवाब में ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 ओवर में 5 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं का। तो यूं ही जुड़े रहिए और हमारे इस प्रोग्राम यानी जीरो आवर्स के साथ, और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: आय हाय,
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आयोग के संचालन के लिए 5 सदस्यीय पैनल को मंजूरी दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए उचित कानूनी ढांचे का अध्ययन, मूल्यांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। अमरीकी सेना ने कहा कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच की। इस जहाज पर अमरीकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि MT सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई और उसका

मार्ग बदल दिया गया। ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरानी जहाज पर नाकेबंदी शुरू किए जाने के बाद ये लगभग पांचवा पोत है जिस पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए। आज अहमदाबाद के नरेंद्र

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम सुहानी रात का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: याद से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, मछली पालकों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य के योगदान की पहचान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आयोग के संचालन के लिए 5 सदस्यीय पैनल को मंजूरी दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए उचित कानूनी ढांचे का अध्ययन और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। अमेरिका की सेना ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच की। इस जहाज पर अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि MT सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई और उसका मार्ग बदल दिया गया। ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरानी जहाज पर नाकेबंदी शुरू किए जाने के बाद ये लगभग 5वां पोत है जिस पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 19वें ओवर में जीत हासिल कर ली। मनीष पांडे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम भुलाए ना बने का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बोनक में, जिन्हें यकीनन भुलाए नहीं भूला जाएगा। जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास केंद्र पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला लिया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज पुनः मतदान होगा। दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार को घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोल्ला को मैदान में उतारा है, जबकि CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आयोग के संचालन के लिए 5 सदस्यीय पैनल को मंजूरी दी है। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच की। इस जहाज पर अमरीकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने

नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया है। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज पुनः मतदान होगा। दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार को घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार तिबांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रज्जाक मोल्ला को मैदान में उतारा है, जबकि CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। अमरीका और ईरान के बीच तनाव के बीच अमरीकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर को रोककर उसका मार्ग बदल दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार MT सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई। इस पर ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का संदेह था। अमेरिका ने इस साल अप्रैल में ईरानी जहाजों पर नाकाबंदी लागू की थी। इसके बाद से अब तक 91 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदला जा चुका है, जबकि 4 जहाजों को रोका गया है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 19वें ओवर में जीत हासिल कर ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया है। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज पुनः मतदान होगा। दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार को घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देबांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोल्ला को मैदान में उतारा है, जबकि सीपीआईएम ने शंभूनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर को रोककर उसका मार्ग बदल दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई। इस पर ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का संदेह था। अमेरिका ने इस साल अप्रैल में ईरानी जहाजों पर नाकाबंदी लागू की थी। अमेरिका का कहना है कि इस नाकाबंदी से ईरान को रोज करीब $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कोयल सी तेरी बोली
1: है?
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष ID मिलती है। यह ID आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही ID दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।